0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
0: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति से खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: होंगी आमने सामने और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमेरिका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
5: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
4: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
7: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं। अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द। तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा। हम जानते हैं खेल क्या है। यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a two-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's seventh official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
10: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Carlos for their bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense, space and a fast-growing economic relationship with bilateral trade crossing $15.82 billion.

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
5: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
4: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: TNC अप्लाई।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
8: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
7: पर पापा।
8: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
9: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
10: क्या मेरी कसम?
9: मिस कर दिया तो रीलोड।
11: चाय चाय चाय।
9: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

हेलो जी, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग है आप सभी का। स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। श्रोताओं, एक बार फिर से एक नई सुबह में हाजिर हो गए आपके रेडियो सर पर लेकर ढेर सारी बातचीत जो रहने वाली है 10 बजे तक इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आई नो आपकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन हो चुकी है, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों की तो कड़क चाय भी बन चुकी होगी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, ऑल द बेस्ट। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, और आप टिफिन बना रही है ना मैम, आप बनाती रहिए, मैं आपके लिए बढ़िया गाने बजाऊंगा। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 8:23:15, और आज है 13 जून की सुबह। हाँ जी, दिन है आज सैटरडे का, यानी शनिवार की बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है। अच्छे मन से और अच्छे तन से जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अच्छी सोच के साथ जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, तो वो दिन हमारा और भी ब्यूटीफुल और भी खास हो जाता है। फिलहाल मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी बदलनी है ना, तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, उसके बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, है ना। तो पहले अपने आप को चेंज करिए, अपनी सोच को चेंज करिए, फिर आपकी ज़िंदगी तो यार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और ऐसी ही सुंदर बातों के लिए हम जो है आपको यहाँ पर एंटरटेनमेंट का डोज देते रहेंगे, और साथ में अच्छे गाने भी देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई को बिल्कुल नहीं घुमाना है। अभी हम लौट कर आएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातचीत। आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, ये मौसम का जो हाल है वो भी आपको बताऊंगा। यार आज गर्मी रहने वाली है या आज भी हल्की फुल्की बारिश रहने वाली है, क्या है आज के वेदर की पूरी जानकारी आपको पता लगेगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ये है सैटरडे की सुबह, आप हैं आनंद के साथ, सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, वेरी गुड मॉर्निंग। और भाई साहब, चलिए शुरू करते हैं आज का सफरनामा।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
4: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम दिस इज बिंदास मॉर्निंग आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। ये है सैटरडे की सुबह, अच्छे गानों के साथ कर रहे हैं आज की बेहतरीन शुरुआत।

0: एब्सोल्युटली आपने बहुत ही अमेजिंग गाना सुन लिया है। वेरी गुड मॉर्निंग जी, प्यार तो हमें आपसे है इसीलिए तो हम आपके रेडियो पर डेली आ जाते हैं मंडे टू सैटरडे आपसे ढेर सारी बातचीत करने। एंड ये है सैटरडे की सुबह। मैंने कहा जी कैसे हालचाल है, आई होप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और फर्स्ट क्लास होकर अपनी मॉर्निंग को और भी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे विद आरजे आनंद। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, बातें वही जो आपका दिल चाहता है। और आज की सुबह ढेर सारे संदेश मेरे पास आए हैं, ऑफ कोर्स आपके मैसेज को शामिल करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटे से प्रोग्राम की ओर आपको लेकर चलेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है आज की सुबह, हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत शहर के अंदर लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको अपने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में लेकर जाने वाले हैं। और वहाँ की कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा, मन आपका प्रफुल्लित हो जाएगा। तो आइए जरा बिना किसी देरी के आपको लेकर चलते हैं सीधा कानपुर शहर के अंदर।
1: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
2: और हूँ आपकी दोस्त प्राची।
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। आप सभी का बहुत स्वागत है।
2: दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गांव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
2: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
1: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पे नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देशी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गाँव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया, इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात की शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख आ देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात की कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ। सुनिए, छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी

0: के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
1: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
0: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
1: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम दोनों की तरफ से
0: नमस्कार।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जल्द ही मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: था मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7066002430।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड मुरादाबाद।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

क्या सॉन्ग है यार, मतलब मजा आ गया इस गाने को सुन के। एंड सच बताऊं तो कुछ गाने इतने प्यारे होते हैं ना यार, जो मतलब दिल के बहुत करीब होते हैं, और उन्हीं में से कुछ गाने हैं जो हमारे दिल के और आपके दिल के बहुत ही करीब हैं। गुड मॉर्निंग है जी।

श्रोताओं, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन सुनी, यानी कानपुर का एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य जो वहाँ पर क्या कुछ फेमस है, क्या पॉपुलर है, उसके बारे में अभी आपने जाना। और अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, जहाँ पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, सैटरडे मॉर्निंग है, ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में, जो हमसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ढेर सारे संदेश साझा करने के लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। श्रोताओं, अगर बात करें आज के दिन के बारे में, तो देखिए हर दिन का इतिहास बहुत खास होता है। 13 जून की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मुझे लग रहा है कि आपके साथ डेफिनेटली साझा करनी चाहिए आज की सुबह, तो बिल्कुल वक्त है अब उन जानकारियों को आप तक पहुंचाने का। आपको बता दें, सन 1420 में जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर आज ही के दिन बैठे थे श्रोताओं। और आपको बताते चलें, आज ही के दिन और आज के दिन सन 1993 को किम कैम्पबेल कनाडा की पहली प्रधानमंत्री बनी थी श्रोताओं। और आपको बता दें, एक और खास चीज आज ही के दिन हुई जो आज के दिन को और भी स्पेशल बना देती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी खास ऐसी वाक्य होते हैं, बहुत सारी ऐसी खास चीज़ें होती हैं जो हमारे दिन को और हमारे इतिहास को दोनों को स्पेशल बनाती है। और मैं भी आपसे कहता हूं कि आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी कर्मों की किताब को उठाइए और कुछ बेहतरीन लिख डालिए, जिससे आपकी सुबह और आपका दिन दोनों ही बेहतरीन हो जाएं। कुछ तो अपना मिशन बनाओ यार, है ना। जब तक हम अपना मिशन नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने आप को किसी लक्ष्य के प्रति नहीं रखेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा यार। चलिए बात कर लेते हैं और आज के दिन क्या कुछ खास रहा। एंड आज दिन तमाम सारे और भी सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनका जन्मदिन आज हम सेलिब्रेट करते हैं। और आज क्या और स्पेशल सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल इंटरनेशनल डे पर हम बात करेंगे भी जरा सी देर में आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे श्रोताओं की जो मैसेज हैं ये भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपको बता दें, 2008 में चीन और ताइवान ने विमान सेवा शुरू करने पर संबंध में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे श्रोताओं आज के दिन। और आज ही के दिन दीपिका कुमारी, जो एक भारतीय महिला जी हैं, मतलब ये तीर दाज है, इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। एंड इसके अलावा पीयूष गोयल जी का आज ही के दिन जन्म हुआ। एंड आपको बताते चलें, आज ही के दिन प्रेम धवन, जो हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार हैं, उन्हीं का जन्म हुआ 1923 को आज ही के दिन। श्रोताओं, ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। और अभी फिलहाल बात कर लेते हैं हम और क्या कुछ खास हो रहा है हमारे आसपास में। तो देखिए, आसपास में बहुत कुछ खास चल रहा है, जैसे कि हमारी स्टेशन क्लॉक में वक्त होने को है सुबह के, मतलब 9 बजने को है राशि देर में। एंड उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्रुति झा, लिखती हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आपका स्टेशन सुन के मन प्रसन्न हो जाता है, आप बहुत ही प्यारी बातें करते हैं, और आपको हमारी तरफ से आपके सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग पहुंचाती हूं मैं, थैंक यू सो मच मैम। हमारे पास मैसेज पहुंच गया है प्रेम कुमार जी का, ये लिखते हैं, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह सिर्फ मैं आपको सुन पाता हूँ, संदेश तो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि समय की थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमने आपको देखिए मैसेज कर दिया है समय निकाल के। आपका बहुत ही अच्छा लगता है प्रोग्राम, आप यूं ही अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें, थैंक यू सो मच सर। रिहाना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं आज की सुबह इसी कड़ी में, और एक और मैसेज हमारे पास पहुंच गया है रिंकू जी का। रिंकू जी लिखते हैं, आनंद जी जिंदगी जो है हमें प्रॉब्लम्स का सामना कराती रहती है, लेकिन हमें प्रॉब्लम से नहीं डरना चाहिए, हमें जिंदगी में हर एक प्रॉब्लम का डट कर सामना करना चाहिए। हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने, बहुत ही खूबसूरत बात कर दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक खूबसूरत गीत और सुनेंगे, उसके बाद जल्दी से आपको लेकर चलेंगे अगले घंटे की तरफ, जहाँ आपसे और भी ढेर सारी बातचीत होंगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज की सुबह आपको एक नया मौका दे रही है उन लोगों से भी सीखने का जो आपकी ज़िंदगी में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, कभी करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। तो भाई, जो लोग आपको वैल्यू नहीं देते ना, मुझे ऐसा लगता है उनको भी वैल्यू नहीं देनी चाहिए यार। अब वो टाइम गया कि जब हम बोले नहीं, अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता है तो आप उससे प्यार करते रहो भाई, क्यों करो, बी प्रैक्टिकल एंड बी नेचुरल।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
8: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
9: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
10: बिंदास मॉर्निंग। वेलकम बैक है जी, कहते हैं ना बाबू जाए जिंदगी जबरदस्त होनी चाहिए, मस्त होनी चाहिए, आज के जमाने का डायलॉग है। जिंदगी छोटी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए और जिंदगी जीने लायक होनी चाहिए यार। वेरी गुड मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन, आई मीन आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड शो आपका मॉर्निंग मैगजीन वाला जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। हाँ जी, आप सभी को एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है जी। कैसे हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है ना? चलो बहुत ही बढ़िया, आपका टिफिन पैक हो गया है, आप रेडी हो गए हैं, अब आप अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, कुछ लोग बैठ के निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। सो बहुत ही बढ़िया यार, मैं भी आ गया हूं, आप भी फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ निकलो यार। देखो आज की सुबह ना, आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है बॉस, आप मतलब आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर आज की सुबह आप ये खूबसूरत नजारा देख पा रहे हो ना, तो मैं मानता हूं कि आपसे लकी कोई हो ही नहीं सकता बॉस, है ना? तो बस इस चीज को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे यार। क्या कुछ खास कहता है आज 13 जून की तारीख में, क्या स्पेशल चल रहा है आज की तारीख में? आज की तारीख क्यों स्पेशल है वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया इतिहास के जरिए, पर अभी और हमारे आसपास क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, हमारे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हमारी रियल लाइफ के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर हम बड़ी स्ट्रेस में कई बार आ जाते हैं, सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं ना थोड़ी सी दिन में। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, कुछ कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे 9837896896 पर, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आने वाला बेहतरीन गाना जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी झकास, अंचो मित्रा नकाश। देखो ये नकाश अजीज बहुत ही बेहतरीन गाते हैं, साथ में अंचो मित्रा साथ देने वाली है। आर राजकुमार से गाना निकाल रहा हूँ, प्रीतम का म्यूजिक, साड़ी के फॉल सा। क्या बात है,
11: साड़ी के फॉल सा, कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
10: चलो जी ये नहीं करता मैं, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग,

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
4: बिंदास मॉर्निंग, बिंदास।
0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। यह है आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप चाहे जिम करके आ रहे हैं या आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आप चाहे दिल्ली रोड हो या स्टेशन रोड, या हो आप गगन पे, या हो आप जीरो पॉइंट पे, या हो आप कांच रोड पे, आप कहीं भी हो यार, आप जहां भी है ना, रेडियो की वॉल्यूम फुल करनी है आपने और फ्रीक्वेंसी को याद कर लेना है 89.6। यही है वो मैजिकल फ्रीक्वेंसी जहां बातें होती हैं आपकी और मेरी, दिल से दिल तक। एक बेहतरीन गाना, इसी गाने के बाद मिल रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग।

क्या बात है यार, सुनिधि चौहान की बेहतरीन आवाज और ये बेहतरीन गाना सुन के तो सच में मैं फ्लैश बैक में चला गया। बचपन में अक्सर हम मेले में जाते थे ना मम्मी पापा के साथ, तो वो छोटा सा बेबी पिंक फोन आता था, है ना, आपको अपने से कई लोगों ने उसको डेफिनेटली इस्तेमाल किया होगा। उसमें से जैसे बटन दबाओ ये गाना बज जाता था यार, मतलब बहुत ही बेहतरीन, वो एक फ्लैश बैक मेमोरी ताजा हो गई। हाय, गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:15। आप आनंद के साथ हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। देखो यार, जिंदगी में ना सब कुछ बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे। पैसे को बचाना बहुत जरूरी है, पैसे को सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह पर पैसा पैसा करते हैं और पैसे के लिए ही सब लोग काम करते हैं, है ना। कुल मिला के पैसा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो भैया ये पैसा बोलता है, वो तो सभी को पता है ना। तो आज की सुबह आप मुझे जरा पैसे बचाने के तरीके बताओ। कितने लोग हैं जो अपनी सैलरी में से पैसा बचाना तो चाहते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से भी सेविंग कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से भी पैसा बचा लेते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में हो, पैसा बचाने वाले या फिर वो बंदे जो बस मेरी तरह कहते रहते हैं नहीं यार अगले महीने पक्का सेविंग कर लूंगा, नहीं इस महीने पक्का पैसे बचा लूंगा, बट लास्ट होते होते पैसा बचता ही नहीं है यार, पता ही नहीं चलता किधर से किधर चला जाता है। एक्चुअली ना हम बड़े फालतू सौख भी पाल लेते हैं जिसकी वजह से हमारा पैसा खत्म हो जाता है। आप मेरे को बताओ यार, मैसेज करके 9837896896 पर व्हाट्सएप करके पैसे बचाने के कौन कौन से तरीके हम फॉलो कर सकते हैं, आपके पास है कोई पैसे बचाने का तरीका, सेविंग करने के क्या सही तरीके हैं। मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप डेफिनेटली पैसा सेव कर सकते हैं, और मैं भी अब वही फंडे अपनाकर अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा सेव कर रहा हूं। बाकी आप मुझे बताओ, आपके पास कोई यू नो अल्टीमेट यूनिक आइडिया हो सकता है, वो आइडिया किसी और के काम आ जाए यार, लाखों लोग आपकी यू नो वॉइस को मैसेज को सुनने वाले हैं। सो प्लीज टेल मी यार, आपके पास कोई अल्टीमेट तरीका हो, आप कैसे अपने पैसे को बचाते हो, कैसे आप सेविंग करते हो, पैसे बचाने के कौन कौन से फंडे फॉलो करते हो, जरा मुझे बताओ। अभी मैं यार पिगी बैग लेकर आता हूँ या लेकर आती हूँ, उसी में पैसे डालते रहती हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं यार, आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओगे तो मेरे को पता चल जाएगा यार। मैसेज करने के लिए आपको क्या करना है, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, विच सिटी, कहाँ से हैं आप, और मुझे जरा व्हाट्सएप करके बताओ आज की सुबह पैसा बचाने का कौन कौन सा तरीका आप लोग फॉलो करता है बाबा। मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ खास जानकारियां, कुछ अल्टीमेट खबरें लेकर आता हूँ अभी जरा सी देर में।

0: हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से आपने एंजॉय के लिए, मैंने तो जम के डांस किया यार, बहुत मजा आया। मतलब मैंने बैठे बैठे इतनी सारी एक्सरसाइज कर ली, मैं आपको बता नहीं सकता यार।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या मेरी कसम,
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय,
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07052।
5: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

हाँ जी, आपके मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे, उसके लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे प्यारे व्हाट्सएप आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। पहले हॉली हॉली ये गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, दे दे प्यार दे से एक नंबर ट्रैक, ठीक है। नेहा कक्कड़ साथ में गैरी सिंधु बाजेवाज दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा गाना है, तनिष पाक्षी का म्यूजिक है, गाना बहुत ही अल्टीमेट है। इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और आपसे भी कहना चाहते हैं, आप भी अपनी गड्डी हौले हौले चलाओ यार।

क्या बात है यार, कसम से बता रहे हैं यार, ऐसे गाने सुन के तो मतलब मजा ही आ जाता है यार। सुबह सुबह इतने बढ़िया गाने सुनने को मिल जाए तो बाबू शाह जिंदगी सबकी झकास हो जाती है जी। वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे बातें होती हैं दिल से दिल तक। मैं आपको बता दूं, आप इस वक्त जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद के साथ। और अभी हम बात कर लेते हैं, देखिए भाई साहब, अपने मुरादाबाद में जो अपने नए वाले डीएम साहब हैं यानी कि राजेंद्र पेंचिया जी, बहुत ही अच्छे अच्छे इनिशिएटिव यू नो लेकर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब एब्सोल्युटली अल्टीमेट चीज़ें यार, बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ें हो रही हैं शहर के अंदर। और अभी जैसे वृक्षारोपण को लेकर भी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, एंड उसको लेकर भी जो हमारे डीएम साहब हैं वो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण के लिए पहुँच ही रहे हैं। तो जो शहर में नई नई गतिविधियाँ हो रही हैं, नई नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत ही अलग लेवल पर यार। मुझे लग रहा है कि स्मार्ट सिटी तो हो ही गया है, लेकिन अभी स्मार्ट ग्रीनरी से भी भरने वाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ऐसी चीजें चलती रही ना तो मजा आ जाएगा, लेकिन उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हमें और आपको भी देना है। चीजों को बढ़िया तरीके से सेट करके रखना है, अगर कोई चीज कहीं पे लगाई गई है तो उसको वैसे ही मेंटेन रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी और हमारी है ना। देखो यार, काश ऐसा हो पाता कि हम अपने फ़ोन पर बिना इंटरनेट के भी कुछ देख पाते, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ जी, जल्दी आप अपने स्मार्टफोन पर फ्री में लाइव टीवी चैनल देख पाएंगे। इसके लिए आपको ना तो किसी इंटरनेट की ज़रूरत होगी और ना ही किसी प्लान को लेने की नीड पड़ेगी। जी हाँ, सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही डायरेक्ट टू मोबाइल D2M ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लागू करने वाली है। इसके लिए 19 से ज़्यादा शहरों में ट्रायल भी किए जा रहे हैं। एंड आपको बता दें, प्रसार भारती के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस सिस्टम को लागू करने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। क्या बात है, वेरी नाइस। ये मतलब आप बिना इंटरनेट के भी लाइव टीवी एंजॉय कर पाएंगे, एब्सोल्युटली बहुत ही अमेजिंग और अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन है ये, एंड बहुत ही अच्छी बात है यार। आपको बता दें भाई साहब, दुनिया भर में ठप हुआ फेसबुक इंस्टाग्राम, लाखों यूजर्स हुए परेशान। एग्जैक्टली, यू नो इस ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में जहां हमें इतनी ज़्यादा हैबिट होगी, इतनी एडिक्शन होगी ये सोशल मीडिया पर। एंड थोड़ी देर पहले मैं भी देख रहा था, मेरा इंस्टाग्राम खुद भी वर्क नहीं कर रहा। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये हुआ है, एंड मतलब मेरे साथ तो हुआ गाइज। मैंने भाई अपनी इंस्टाग्राम को डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड किया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भाई। मतलब मेरे को लग रहा था ये क्या हो गया है, जो मतलब हुआ ये था, फेसबुक और इंस्टाग्राम मतलब जो है आज कई देशों में उस पर मतलब वो अभी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, जिसको लेकर थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। एंड इस ग्लोबल आउटेज के चलते दुनिया भर में इनफैक्ट कई देशों में यूज़र्स को इन प्लेटफॉर्म को जो है वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इवन भारत में भी कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से हमें वो डायरेक्टली फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, मतलब एकदम जो हम स्क्रॉल करते रहते हैं ना उसमें कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है।

ऐसे कुछ हुआ आज भी? Well, अभी तो सबका इंस्टाग्राम ऑफकोर्स सही चल रहा होगा गाइज, एंड आई होप आप लोगों का बढ़िया चल रहा हो। मेरा तो ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, बाबू छाएगा। बड़े बड़े शहरों में ना छोटी छोटी बातें अक्सर होती रहती हैं। भाई जो मैंने पॉज लेके बोला है ना, मैं बता नहीं सकता मैंने कितना लंबा चौड़ा पॉज मारा है। आगे बढ़ते हैं, चलो फिलहाल अब आपको मैं एक और खास चीज बताने वाला हूँ। आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई ये बात है, इसके बारे में डेफिनेटली बात करनी बनती है, बट अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद हम आपसे इसके विषय में चर्चा करेंगे। आपसे आज मैंने ये भी पूछा है कि आप मुझे व्हाट्सएप करके प्लीज़ बताओ, प्लीज़ टेल मी कि आप पैसे बचाने के कौन कौन से तरीके अपनाते हो, कैसे आप पैसे को बचाते हो, कैसे आप सेव करते हो, प्लीज़ टेल अस, बिकॉज आपका एक आइडिया हो सकता है किसी और के काम आ जाए। यार व्हाट्सएप करके बता सकते हो, और ढेर सारे संदेश मेरे पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग मैसेजेस के लिए। ये मैसेजेस डेफिनेटली शामिल होंगे भी जरा सी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। आपकी हेल्थ के बारे में डेफिनेटली बात करनी तो बनती है यार। कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को जैसी मतलब एसिडिटी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, और स्पेशली अगर आप गैस की दवा बहुत लंबे समय तक खा रहे हैं तो ये आपकी किडनी और फेफड़ों को प्रॉब्लम में डाल सकती है। एग्जैक्टली, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म से ये चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो है ना, कई बार ही होता है हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, हम तुरंत कोई भी मेडिकल स्टोर से गोली लेके खाने लगते हैं ना, फिर उसकी एडिक्शन भी हमें कई बार हो जाती है। तो हमें ये नहीं करना है पाची, ये दवाइयाँ आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ देंगी, लेकिन आगे चल के ये आपको बहुत बड़े नुकसान में और ख़तरे में भी डाल सकती हैं। आपको बता दें, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है एक रिसर्च की गई जिसमें पता लगा है कि गैस की दवाइयाँ अगर बहुत लंबे समय तक खा रहे हैं तो ये आपकी किडनी और फेफड़ों को जो है प्रॉब्लम में डाल सकती है। जी हाँ, मतलब बिना जानकारी के अगर आप कोई भी दवा खा लेते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। बिना इन्फॉर्मेशन के अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा ले लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए डॉक्टर से प्लीज़ ज़रूर परामर्श करें, अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको कोई इशू हो रही है तो एक बार ही अपने डॉक्टर्स को आप डेफिनेटली दिखाएं। कोई भी मेडिसिन, कोई भी टैबलेट बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जो मेरे पास है। नेक्स्ट लौट कर आऊँगा, नेक्स्ट टाइम में तो बताऊँगा, अभी आपको मतलब अभी आ रहा हूँ जल्दी से, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसके बारे में। आप कहीं मत जाओ, सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, शो चल रहा है बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर बिंदास बातें हो रही हैं। यस ऑफकोर्स, सुनिंदा शर्मा राइट हियर इन द हाउस। लेटेस्ट नंबर था यार 2023 में, तो इस गाने ने रॉक मचाया था यार। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

हरी संधू को एंजॉय कर रही थी अपना। क्या बात है यार, बेहतरीन गाना। वेलकम बैक है जी। मैंने कहा कैसे हाल चाल है भाई साहब, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? वेरी गुड मॉर्निंग है। हाँ जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे, RJ आनंद को। 89.6 MHz वो फ्रिक्वेंसी जिसको आपने सेट करके रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी और आपको बता देते हैं लोकल फॉर वोकल में क्या चल रहा है। तो आपको भैया देखिए कमाल की जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार 8 जून से 3 जुलाई तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत नगर निगम मुरादाबाद द्वारा शहर के सभी 70 वार्डों में नागरिक सुविधाओं को घर घर पहुंचने के उद्देश्य से विशेष जनसेवा कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड संख्या जो है कुछ यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड की है, जिसके अंदर जो है जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो बेसिकली एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है एक जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा, और जन चौपाल के माध्यम से नागरिकों को नगर निगम की विभिन्न सेवाएं, योजनाएं की जानकारी, जो है जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस जन चौपाल के माध्यम से। जैसे भी रिसेंटली रामलीला ग्राउंड में भी जन चौपाल हुई, जिसमें तमाम सारे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान मिला। तो इस तरीके से जो है एक बहुत ही अच्छा कैंप 8 जून से 3 जुलाई तक, ये बेसिकली एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है, सेवा पखवाड़ा अभियान। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे को व्हाट्सएप करके बताओ यार जरा कि पैसे बचाने के कौन कौन से फंडे आप फॉलो करते हो, यानी इतने सारे अल्टीमेट जवाब आए हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपको बता दें भैया, क्रिकेट प्रेमियों के लिए खबर है, 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा 2026 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2027 माफी चाहूंगा यार, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सही से एक बार फिर से सुन लो। 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जो है सजेगा क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच, 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तारीख की भैया घोषणा हो गई है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो तो डेफिनेटली आप तक पहुँचेगी ही, लेकिन उससे पहले आपके मैसेज की तरफ मैं मूव ऑन करना चाहूँगा, बिकॉज इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आ गए हैं यार। आज की सुबह हमारे पास पंकज जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से, लिखते हैं मैं पैसे बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में जो है सामान डाल देता हूँ, लेकिन ऑर्डर कभी नहीं कर मैं ऑर्डर कभी नहीं करता हूँ, बस देख कर यूँ ही खुश हो जाता हूँ, इसीलिए मेरे पैसे बच जाते हैं यार। ये मतलब कुछ अलग ही हो गया यार। मेरे साथ नेहा जी जुड़ चुकी हैं, मेरी सैलरी आते ही मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, क्योंकि पैसे तो जल्दी गायब हो जाते हैं लेकिन स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे पास पड़ा रहता है यार। मैं क्या बोलूँ नेहा जी, आप मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट से थोड़ी ज़िंदगी चलती है, पैसों से ज़िंदगी चलती है यार। मैं हम आपसे पैसे बचाने के तरीके पूछ रहे हैं। एक मैम का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग आनंद, मैं आपको बताना चाहती हूँ पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी सैलरी जो आती है ना, आप जब आपकी सैलरी आता है उसका बजट बनाओ, और आपकी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उन्हीं को लेकर आप आओ, और जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है उनको मत लेकर आओ, और उससे फिर आपका पैसा बच जाएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच, ये तो चलो मुझे सही लगा आपका यू नो जो आपने फंडा शेयर किया। ये श्रुति का मैसेज आया मेरे पास, थैंक यू सो मच श्रुति मैम। मैसेज पहुंचा है कोमल जी का, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप, मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूं और इस वक्त मैं आपको रेडियो पर सुनते हुए अपने ऑफिस पहुंच रही हूं। पैसे बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है अपनी सेविंग्स अकाउंट ज़रूर खुलवाएं, और जितना हो सकता है अपने घर में पैसे को थोड़ा कम रखें, क्योंकि घर में जितना पैसा होगा वो उतना ही खर्च होता चला जाएगा इसीलिए, और अपने बजट बनाकर ही चीज़ों को लेकर आएँ। जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है उनको बिल्कुल ना खरीदें, जो आपकी ज़रूरत की हैं उन्हें आप ज़रूर खरीदें, और अपना एक बजट बनाकर आप अपना अमाउंट जो है सेव कर सकते हो। ओके, एक मैसेज आया है, हाय गुड मॉर्निंग, रोहित बात कर रहा हूँ मैं अपने दोस्तों को उधार नहीं देता, अगर मैं उनको उधार दे दूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, इसलिए मैं अपने पैसे बचा कर रखता हूँ। भाई मुझे मारो, क्या ही हो रहा है ये। मेरे पास आरती जी का मैसेज आ गया है, ये लिखती हैं मुझे गायत्री नगर से, लिखती हैं आनंद जी सुप्रभात, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ सैलरी आते ही सबसे पहले 20% पैसा मैं अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और जो कि मैं बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती हूँ, और वो मेरा सेविंग अकाउंट में जा रहा है और वो मेरा पैसा खर्च भी नहीं होता है, क्या बात है। हमारे पास जुल्फी भाई का मैसेज आ गया है, लिखते हैं मैं हर खर्च का हिसाब अपने मोबाइल में

0: आप जरूर सेव कीजिए, बहुत जरूरी है। कविता जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, लिखती हैं, ऑफर देखकर जरूरी नहीं है कि आपको शॉपिंग करनी चाहिए, अपनी जरूरत को देखकर आपको शॉपिंग करनी चाहिए। अगर आप सही जगह पर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा भी सेफ होगा और आप भी अपने फ्यूचर को सेव कर पाएंगे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है सैलरी आते ही ना, मतलब बचत का जो हम ये सीन बनाते हैं ये तो खैर हो ही जाता है, लेकिन कई बार ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं बीच बीच में कि आप ना चाहकर भी अपने प्लान्स को मतलब कैंसिल करना पड़ता है। मुझे लगता है कि पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका है कि सैलरी आने से पहले ही जो है आप डिसाइड कर लो कि भैया आपने कौन सी चीज़ को लेना है और कौन सी चीज़ को आपने नहीं लेना है। अच्छा, पांच चीज़ें तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से अपने बजट को मेंटेन कर पाओगे और अपनी सैलरी में से कुछ प्रतिशत हिस्सा डेफिनेटली सेव कर पाओगे। बहुत जरूरी है पैसा बचाना। आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, यह है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। वेरी गुड मॉर्निंग है जी।
1: क्या चीज है पैसा, क्या बात है।
0: दे दनादन से इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। बात पैसों की हो रही है तो आपको है कुछ आइडिया पैसे बचाने के, आपके पास है कुछ तरीके, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद मी 9837896896 पर आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ये सारे श्रोता जुड़ गए मेरे साथ, लौट कर आते हैं फिर आपके मैसेज पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: क्या बात है यार, इसी स्वैग के साथ आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग। एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है, सैटरडे की सुबह गुड मॉर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं। भैया वीकेंड है, छुट्टी वाला दिन आने वाला है, मतलब सिर्फ छोटू सा वीकेंड है, कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलता। और संडे मेरे लिए होता है ढेर सारा काम, नॉट आराम, बहुत सारी लिस्ट आ जाती है यार संडे को। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इतने सारे काम हो जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं यार, एक ही संडे मिलता है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता यार। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद, ढेर सारे श्रोता जुड़ गए हैं मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 13 जून की सुबह, सैटरडे मॉर्निंग है। आजकल बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे आम मार्केट के अंदर आ गए हैं, अगर आप इन आम का सेवन करते हैं तो आपको बड़े सारे फायदे मिलने वाले हैं। मैंगो को अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं, अगर आम को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, अगर आप पूरे दिन में एक आम भी खाते हैं तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाला है मेरे दोस्त, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। अभी बताऊंगा उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले अभी आपके मैसेज पढ़ लेता हूं। मेरे पास मैसेज आया है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? आज अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता और महत्वपूर्ण आयोजन के लिहाज से काफी खास दिन है, और इस तारीख को राष्ट्रीय समाचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष दिवस माना गया है, और साथ ही ऐसे ऐतिहासिक फैसलों के लिए भी ये दिन बहुत ही खास होता है। रणवीर सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल मैसेज। एंड मैसेज मेरे पास पहुंचा है सहारनपुर से, हमारे प्यारे रेगुलर लिसनर है जोन रोजी पलविलीस, लिखते हैं आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार एंड हैप्पी वीकेंड आरजी आनंद, हाउ आर यू? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सर। लिखते हैं, जमाना क्या सोचेगा ये मत सोचो, क्या जमाना बहुत अजीब है। ओके, नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आई एग्री विद यू सर, क्या ही कर सकते हैं, जमाने की ये आदत बन चुकी है और इस आदत से लोग मजबूर हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई जाति नीची नहीं होती लेकिन इंसान हर जाति में होता है। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने, चलिए थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अपना ये ब्यूटीफुल मैसेज। आगे बढ़ते हैं, एक संदेश आया है मेरे पास ललिता कश्यप जी का, लिखती हैं, हेलो आनंद, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? एंड आज का मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है, एब्सोल्युटली मौसम ऑसम होना चाहिए। अच्छा मौसम की बात हुई है तो जरा फटाफट से वेदर अपडेट बता देता हूं। तो अभी जो राइट नाउ का वेदर है, अभी क्या करंट अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं। 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है आज, थोड़ा सा कूड़ी यू नो एक ऐसे गर्मी तो नहीं आपको लगेगी लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे भीगा भागा सा मौसम रहने वाला है। 29 डिग्री अभी दिखा रहा है करंट टेम्परेचर एंड ये धीरे धीरे 26 डिग्री तक पहुंच सकता है। चलो जी अच्छी बात है, अभी मिनिमम 29 है, मैक्सिमम 34 भी दिखा रहा है, देखते हैं 34 पहुंचेगा 26, आई डोंट नो। फिलहाल वेदर के साथ साथ बाकी मौसम ऑसम है यार, सब कुछ बढ़िया है। आई होप आप इस मौसम का आनंद ले पा रहे हो ना, वेरी नाइस। और बात कर लूँ अगर मैं आज की एयर क्वालिटी की, तो भैया एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरे से खाली नहीं है आज की एयर क्वालिटी, मतलब ये जो पोल्यूशन है ना जिसमें हम जी रहे हैं, बहुत खतरनाक है यार ये पोल्यूशन। हवा की अगर मैं बात करूँ तो भैया आज जो है हवाएं चलने वाली है 9 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से। तो चलो ये वेदर हो गया है, इस वेदर में आप एंजॉय करते रहिए और आप जहाँ भी जा रहे हैं सनस्क्रीन प्लीज जरूर लगाइए, बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेलो हाय बबली एंड साथ में गीता कश्यप, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लेकर आते हैं, बहुत मजा आता है, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, कड़क क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको आइडेंटिफाई करना है गाना, ये गाना कौन सी फिल्म का है? बेहतरीन ट्रैक, अखियां मिला के तूने दिल को चुराया, कौन से फिल्म का गाना है यही आपने मुझे बताना है। आज सैटरडे की सुबह उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर। आई रिपीट माय क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, कौन से फिल्म का है गाना? बहुत ही कमाल के स्टार कास्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है एंड बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरती से गाया है। अभी क्लू नहीं दूंगा, पहले आपके दिमाग की बत्ती गुलमीटर चालू करते हैं यार, देखते हैं आप कितने बड़े फिल्मी शिल्मी हैं। मुझे मैसेज करने का आपने, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो डोंट वरी यार, आप मुझे अपने मैसेज बॉक्स में जाके, टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए अपना नाम, स्पेस देके आपके शहर का नाम और स्पेस देके आपका सही जवाब, उसको सेंड कर देना है सेम नंबर पे 9837896896 पे। ठीक है जी, जरा ध्यान से सुनो, ये गाना कौन सी फिल्म का है? कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया प्रिया, अखियां मिला के तूने दिल को चुराया, लुटा लुटा लुटा मेरा जिया। चलो जी, मैसेज करके आपने मेरे को सही जवाब देना है और अभी अपुन लौट कर आएगा, फिर आपको बताएगा मैं आज, अगर आप मैंगो अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपको कौन कौन से फायदे देने वाला है। भाई बड़ा जबरदस्त मैंगो चल रहा है आजकल मार्केट में, प्लीज मैं कह रहा हूँ आप जरूर मैंगो लेकर आए यार, आम जरूर लेकर आओ, अगर आप आम नहीं लाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके घर में भी आपसे एक ही सवाल बोला जाएगा, सोच लीजिए आप, और वो क्या बोलेगा ये गाना आपको बताएगा, मैं नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छा गाना है, यू यू हनी सिंह का ट्रैक। हाँ, यू यू हनी सिंह साथ में
1: टाइम से पैर निकल।
0: हाँ, नुसरत भारूचा के ऊपर पिक्चराइजेशन, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक।

लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, बातें वही जो आपका दिल चाहता है। यह है सैटरडे की सुबह, यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। स्टे ट्यून्ड, प्लीज कीप लिसनिंग टू, ऐसी सुनते जाइए आपके शहर का अपना रेडियो। मिलता हूँ।

0: honey singer.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
5: आज 13 जून है, 2026 स्पेशल मॉर्निंग है, 13 जून की सैटरडे की सुबह, और आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं दो अमेजिंग सेलिब्रिटीज का। पहले तो हमने अभी जो गाना सुना तो साड़ी केयर नहीं करता, पिक्चराइजेशन था नुसरत भारूच एंड राजकुमार राव पे। आज राजकुमार राव का बर्थडे है, इज एक्सीलेंट पर्सन, एंड साथ में आज दिशा पाटनी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, और ये गाना दिशा पाटनी जी का मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। आज की सुबह उनका बर्थडे है, बागी टू का ब्यूटीफुल ट्रैक
6: अल्लाह मुझे दर्द के।
5: इस गाने से पहले वही हैप्पी बर्थडे दिशा पाटनी जी को, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, मेनी मेनी हैप्पी रन्स ऑफ द डे, एंड साथ में राजकुमार राव को भी FM मुरादाबाद की पूरी इंटर फैमिली की ओर से वही हैप्पी बर्थडे। अगर आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, किसी का भी, तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो डैशिंग हीरो राजकुमार राव एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिशा पाटनी के साथ। वही हैप्पी बर्थडे।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आप एंजॉय कर रहे थे। ओ साथ ही आई लव दिस ट्रैक, बहुत ही अमेजिंग गाना, बाकी टू से भी आपने एंजॉय कर लिया। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। सैटरडे की सुबह है, आई नो दैट सारे लोग निकल चुके हैं अपने ऑफिसेस की तरफ। वेलकम बैक है आप सभी को, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। देसी बातें होती हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि ये भैया आपके शहर का अपना रेडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं फटाफट से। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूछा था पैसे बचाने के तरीके बताओ यार, ढेर सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, 10:05 हो गए यार। पहले तो स्टेशन में जो वक्त हो रहा है ना घड़ी में वो बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अब जरा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो देखिए मैं आपको ये 5 टिप्स दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली इनको अपनी लाइफ में ऐड करके देखिए, कुछ ना कुछ तो हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। पैसे बचाने के 5 आसान तरीके, सबसे पहले तो ये कि भैया सैलरी आते ही आप जो है बचत करें, पहले से ही अपनी बचत निकालें, उसके बाद ही अपने खर्च को करें। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं, नंबर 2 मासिक बजट डेफिनेटली बनाएं, हर महीने का अपना खाना यात्रा जो आपके ज़रूरी खर्च हैं उनकी एक सीमा डेफिनेटली तय करें। तीसरा नंबर 3 फजूल खर्चों पर थोड़ी सी नज़र रखें, छोटी छोटी बेवजह की खरीदारी भी हमें महीने के अंत में एक मतलब एक बड़ा हमारा खर्च बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा बजट भी कई बार गड़बड़ हो जाते हैं। फोन नंबर टिप कि कई बार हम ऑफर को देखते ही नहीं है, बस हमें लगता है कि हमारी ऑफर को कई बार हम देखते भी हैं और देखते भी नहीं है, कई बार हमें लगता है नहीं यार ये तो हमें नहीं लेना, और कई बार जब हमें उसकी नीड नहीं होती हम ऐसे ऑफर्स देख के आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमारा उस चक्कर में सेल्स के चक्कर में हमें कि भाई ये सेल लगी वो सेल लगी ये ऑफर आया, इस चक्कर में कई बार हमारा बजट खराब हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेसिकली। एंड 5 नंबर रूल यही है भाजी कि अपने इमरजेंसी फंड्स डेफिनेटली आप बनाएं, इनको आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में इन चीज़ों को एनरोल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना एक इमरजेंसी फंड डेफिनेटली बना के रखें, हर महीने के थोड़े से पैसे आप अलग रखिए ताकि अचानक से आने वाली कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत अगर आपके साथ है तो आप उस पैसे को वहाँ पर खर्च कर सको, है ना। पैसा कमाना एक कला है लेकिन पैसा बचाना एक समझदारी है, जितनी जल्दी बचत की आदत डालोगे भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप्स। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में अगर आप मैंगो का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए। हम आम को फलों का राजा कहते हैं लेकिन आम फलों का राजा तो है ही लेकिन हमारी सेहत का सच्चा साथी भी है। जी हाँ, गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल आम सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत में भी कमाल करता है। दोस्तों आम में भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी आँखों और इम्यूनिटी हमारी जो होती है उसको मजबूत बनाने के लिए उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसके साथ ही आम जो है में भी मतलब आसान होता है, आपके आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और ये आपकी पाचन के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है और आपके शरीर को तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब ऊर्जा देता है। और साथ ही साथ अगर आप आम का सेवन करते हैं तो आपको ये ताज़ा तरीन भी बना देता है एग्जैक्टली। लेकिन याद रखिए किसी भी चीज़ को अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ उसको लिमिट में ही खाएं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आम फलों का राजा है लेकिन हमारी हेल्थ का भी बहुत ही बढ़िया सच्चा साथी है, तो मैंगो को डेफिनेटली शामिल कीजिए। विटामिन ए विटामिन सी डेफिनेटली आपको मिलेगा इसमें, तो अगर आप अभी तक मैंगो नहीं ले रहे थे तो डेफिनेटली लीजिए यार, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, 10:07 हो गए, लास्ट मौका है आपके पास, प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए ये गाना कौन सी फिल्म से मैंने आज की सुबह प्ले किया है आपके रेडियो सेट पर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, ये गाना कौन सी फिल्म का है। क्या बात है, लूटा मेरा जिया। व्हाट्सएप करके मुझे बताना है जो अभी गाना चल रहा है वो कौन सी फिल्म का है। यस, यही आज मैंने आपसे पूछा है कि भैया जो गाना मैं प्ले कर रहा हूँ वो कौन सी पिक्चर का है, आपने मुझे सही जवाब बताना है अपने नाम के साथ। ठीक है जी,
1: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया प्रिया, अखियां मिला के तूने दिल को चुराया।
0: यही है लास्ट मौका, जल्दी से बताओ ना पिया जिया, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं प्लीज व्हाट्सएप करो 9837896896 पर, ये मेरे स्टूडियो का व्हाट्सएप।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
6: यह है FM मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग और इस बिंदास मॉर्निंग को और भी बिंदास एंड झक्कास बना रहा हूं मैं, आपका होस्ट एंड दोस्त RJ आनंद। इस गाने के बाद बताते हैं कौन है हमारे आज के शो का लकी विनर।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक सुन रहे थे अभी आप रब राखता, इतना प्यारा गाना सुन के मजा आ गया ना, मुझे भी आनंद आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 10:16। आई नो दैट ये टाइम किसी और प्रेजेंटर का होता है, हमारा भी जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जाने से पहले बताएंगे कौन है आज के शो का विनर।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
0: चलो जी, वेलकम बैक है वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, सैटरडे की सुबह थी, अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, और आपसे मैंने पूछा था ये गाना कौन सी फिल्म से है।
3: कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया प्रिया, अखियां मिला के तूने दिल को चुराया, लूटा लूटा लूटा मेरा।
0: यस, और यही सबसे पहले जवाब मेरे पास जैसे लोगों के आ गए हैं, कुछ कुछ सही आए हैं, कुछ कुछ गलत आए हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें अक्सर हो जाती हैं। जोरदार तालियां, थैंक यू मीन्स अ लॉट, आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है। आज का मेरे पास सबसे पहले सही जवाब आया है शुभी का, इन्होंने मेरे को सही जवाब दिया है, ये फिल्म थी मुझे कुछ कहना है, एब्सोल्युटली स्टारिंग बाय तुषार कपूर एंड साथ में करीना कपूर। बहुत ही कमाल की फिल्म लगी मुझे ये, मैंने भी ये पिक्चर देखी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी और मतलब मजेदार मूवी है। तुषार और करीना की जोड़ी नो डाउट बहुत अच्छी लगती थी स्क्रीन पे देखने में, एंड बहुत ही अच्छी मूवी थी। इसी मूवी का ये गाना था जो मेरे को सबसे पहले सही जवाब दिया है मैम आपने, थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली फ्रॉम द फिल्म कंग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बाकी रिजवान खान साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी एकदम सही जवाब दिया था। रिजवान भाई लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, लिखते हैं जिस कदर महंगाई है उस हिसाब से अगर कोई अपनी फैमिली को अच्छे से चला रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा सही है, लेकिन पैसे बचाना तो सोचना आज के इस महंगे समय में थोड़ा सा अजीब भी लगता है। हाय अंत जी, ये तो आप सही कह रहे हैं सर। एंड साथ में ललिता कश्यप जी मेरे साथ जुड़ी हैं, एकदम बढ़िया से अपने स्पीकर पर वो सुन रही है, मुझे उसके पिक्चर शेयर कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच, एंड सही जवाब भी पहुँचा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि भाई जुड़ गए हैं कार रूट से मेरे साथ आज की सुबह। राजा कश्यप जी मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, लिखते हैं आनंद जी कैसे हालचाल है, गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग जी, आई होप आप भी अच्छे होंगे। और एक और मेरे पास मैसेज पहुंचा है, हाय हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, माई नेम इज प्रीतम प्यारे, हाय प्रीतम प्यारे, बड़ा प्यारा नाम है यार। रिहाना जुड़ गई है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। दुर्गेश सैनी जुड़े हैं मेरे साथ, एंड इसके अलावा अमन जी का मैसेज आया है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। एंड एक और मैसेज हमारे पास पहुंच रहा है, हेलो हेलो हाय कैसे हालचाल है आपके, बहुत ही बढ़िया जी, हमारे हालचाल तो बहुत ही अच्छे हैं। एंड एक और व्हाट्सएप मेरे पास पहुंच रहा है, गुड मॉर्निंग आनंद कैसे हालचाल है, हाय माय नेम इज निधि, हाय निधि गुड मॉर्निंग। नोनेश कुमार जुड़े हैं मेरे साथ राइट आंसर के साथ, मुझे कुछ कहना है फ्रॉम द फिल्म का ये गाना था आनंद। हेलो अंकुर जैन जी कैसे हालचाल है, अंकुर जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग अंकुर जी, नंबर के 4 digit 8803। मुझे कुछ कहना है सही जवाब पहुंचा रही है मेरे पास लक्ष्मी जी सूर्यनगर से, एंड इसके अलावा डॉक्टर सुरेश कुमार जुड़ गए हैं प्रेम नगर से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। थैंक यू गाइस, अभी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बट अपन अभी टाइम नहीं लेगा आपका ज्यादा, क्योंकि 10:19 हो गए, मेरे जाने का समय हो गया है। मिलते हैं वेरी सून इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हाय गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है भैया, गुड मॉर्निंग, राम राम जी भाई, एक बात बताओ आपकी वॉइस जैसी मेरी वॉइस कब होगी, मैं भी अपनी वॉइस आपकी तरह करना चाहती हूँ, आप क्या खाते हैं क्या करते हैं। ओ माय गॉड, व्हाट अ क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी दूंगा यार। चलो अभी के लिए निकलता हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा पानी पीते रहिए, बहुत जरूरी है पानी पीना, और ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत तो आपने कर ही दी है यार, और अपने सफर पर अगर निकल गए तो ऑल द वे बेस्ट, आप ऐसे ही जो है अपना ये पॉजिटिव जो ये वाइब्रेशन है ये देते रहिए, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, जकास रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है यार। मैं तो कहता हूँ यार, बस अपनी जिंदगी में ना एक चीज को अपना मिशन बना लो, वो है आपकी पॉजिटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखो यार, कौन क्या बोलता है आई डोंट केयर अबाउट दैट, है ना, आपको मस्त रहना लेना चाहिए अपनी लाइफ में। चलो अभी के लिए आरजे आनंद लेता है आपसे अलविदा, मिलेगा कल, कल तो यार संडे है, माफी चाहूंगा, कल नहीं मैं आपको परसों मिलेगा, मंडे को मिलेगा एक नई एनर्जी के साथ। अभी के लिए बाय बाय, सायोनारा, अपना ख्याल रखो ढेर सारा, हैव अ फैबुलस वीकेंड एंड वंडरफुल मॉर्निंग, बाय।

0: एक विलन का ही गाना अंकित तिवारी की आवाज में अभी आप एंजॉय कर रहे थे। ये आवाज अनकी कैसे आ गई भाई? इट्स नॉट रिकॉर्डेड, दिस इज लाइव यार। अच्छा, लाइव के लिए मैं टाइम बता देता हूँ। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 10:25, अभी तो लीव हो गया ना। अच्छा, एक और लाइव एक्सक्लूसिव वाला क्लू सुनो। आज 13 जून है, ये भी लाइव नहीं है बॉस, ये एकदम मतलब आई मीन ये रिकॉर्डेड नहीं, दिस इज लाइव यार। फिलहाल वेलकम बैक है। अभी मुझे पता लगा है कि जो हमारी प्रेजेंटर है वो तो अभी नहीं आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि यार खुशी भी छुट्टी पर है, तो अभी तो कोई है नहीं स्टूडियो में मेरे अलावा, तो फिर मैं हूँ जो आपकी सुबह को थोड़ा सा भौकाली आएंगे, मतलब आपकी सुबह को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आपके फेवरेट गाने चलाएंगे और आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। एक बार फिर से मुखातिब होंगे आपके साथ ढेर सारी बातों के साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, अभी लौट कर आते हैं, फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बात। आप कहीं मत जाओ, सुनते रहो एफएम मुरादाबाद।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
0: पाए सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: TNC अप्लाई।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद और ढेर सारी बातचीत करेंगे 12 बजे तक आपके साथ ही इस स्टेशन पर, जहां आपके फेवरेट गाने होंगे और आपसे बहुत सारी बातें होंगी इस स्टेशन पर। तो अगर आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं और ढेर सारे गाने सुनना चाहते हैं, ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम हैं आपके सफर के साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहां बातें होंगी दिल से दिल तक। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 10:28, ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आप अपने मन में ये ठान लें, अगर आप ये अंदर से अपने मन को मजबूत बना लें कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये लक्ष्य हासिल करना है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है और मेरा ये सपना है, मुझे यहाँ जाना ही जाना है, तो मैं यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट आप वो पाकर ही रहेंगे। अगर आपके अंदर जिद है ना खुद से लड़के अपने सपने को पूरा करने की, तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप 100% अपने सपने को, अपने जो आपने ड्रीम बनाया उसको आप डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं, है ना। और अगर आपने अपने मन में ही ये चीज़ कर ली कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता यार, मेरे बस की बात तो है ही नहीं, बस अपन गिव अप कर देते हैं, तो ये नहीं करना है आपने। थोड़ा सा पॉजिटिविटी का डोज लगाओ यार, जब इतनी दूर आ गए तो हो सकता है 2 कदम और चलोगे तो आपकी मंजिल आपके पास होगी, जिसका सपना आप कब से देख रहे हो सकता है वो मंजिल आपको मिल जाए। तो उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी और पॉजिटिविटी का जो तड़का है ना वो लगाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम भी आगे बढ़ाते हैं, आपको ऐसे मोटिवेशन डोज आपको देते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपकी शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलो एक काम करते हैं, अब जो है आपकी पसंद के गाने शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, आपको क्या सुनना है, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं और किस टॉपिक पे अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये भी मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। बट उससे पहले एक बढ़िया सा गाना लगा रहा हूँ, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑल टाइम फेवरेट अशी टू का गाना, आई लव दिस ट्रैक, आई एम श्योर आपने भी ये गाना डेफिनेटली सुना होगा, कई लोगों का फेवरेट होगा ये गाना, चाहूं मैं या ना। अरिजीत सिंह, पलक मुच्छल की आवाज, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।
4: मुझको बता,
0: थोड़ा सा गालू मैं भी,
4: चाहूं मैं या ना,
0: मेरी आवाज अच्छी नहीं है यार।
4: अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना,
0: क्या सॉन्ग है यार।
5: कितना अच्छा गाते हो
0: सच में। थैंक यू सो मच, मुझे पता नहीं था यार आप भी बहुत अच्छा गाती हो।

रेगुलर गाने ऑफ कोर्स आप सुनते हैं, शो है मॉर्निंग मैगजीन जहां पर बातें होती हैं। शो का नाम भी बहुत डिफरेंट है, मॉर्निंग मसाला। इसमें बातें ही हमारी होती हैं, मसाले इन्फॉर्मेशन के होते हैं, गाने आपकी पसंद के होते हैं, सब कुछ तो आपको मिलता है। देसी वाला है ना, फुल ऑन देसी स्वैग आपको देते हैं, क्योंकि पीतल नगरी में आपके शहर का ये रेडियो है कम्युनिटी जहां पर आपकी काम की बातें भी होती हैं ना। आप सुन रहे हैं आनंद को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, वेलकम बैक एक फ्रेश मॉर्निंग में एक फ्रेश एनर्जी के साथ। वी कम बैक एंड आप कुछ भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिए। लेकिन एक काम करते हैं ना, आज एक ऐसा गाना सुनते हैं आपका फेवरेट वाला, जो आपको बचपन में ले जाता है, आपको फ्लैश बैक की तरफ ले जाएगा। मतलब कोई एक ऐसा गाना बताओ मेरे को व्हाट्सएप करके जो आप सुनना चाहते हो, एंड सीरियसली वो गाना जब आप सुनोगे तो आपको फील होगा यार मैं अपने बचपन वाली यादें ताज़ा कर रहा हूँ, एकदम फ्लैश बैक में पहुंच जाऊंगा। यार आनंद, अगर मैं ये गाना सुनूंगा ना भाई या सुनूंगी ना बॉस, तो इस गाने को सुनते ही मैं अपनी मेमोरी टाइम में चली जाऊंगी, फ्लैश बैक में पहुंच जाऊंगी। तो आपके बचपन का वो कौन सा गाना है प्लीज टेल मी यार, जो आपको फ्लैश बैक में ले जाए। आज की सुबह थोड़ा डिफरेंट करते हैं ना, मॉर्निंग मसाला शो में थोड़े से अलग तरीके से इसको पेश करते हैं आपके लिए। तो आप मुझे वो गाने बताओ जो आपको फ्लैश बैक में ले जाए, जो आपका बचपन का फेवरेट गाना है, आप उसको सुनते हो तो थोड़े नॉस्टैल्जिया वाइब आपके अंदर आ जाती है, फ्लैश बैक में चले जाते हो, आपको पुरानी यादें जो है गाना आपकी ताज़ा कर देता है। आपने कभी रेडियो पे सुना हो, आपने टेलीविजन पे सुना हो उसको पहले, चित्रहार, रंगोली, कहीं पे भी, व्हाटएवर, जहां भी आपने उसको सुना हो, आप जब भी सुनते हो अब भी आपको ऐसे पुराना टाइम याद आ जाता है। कौन सा गाना है प्लीज बताना जरूर मुझे आज की सुबह। चलो शुरू करते हैं। मेरे पास मैसेज आया है रिधुमा का, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग आनंद जी, वेलकम बैक है आपको, हमने पिछले घंटे भी सुना, इस घंटे आप आए, थैंक यू सो मच। एंड आपकी आवाज़ और एनर्जी दोनों ही बड़ी फैंटास्टिक है, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने मैसेज कहाँ से किया ये तो लिखा नहीं है, वेल थैंक यू वेरी मच। एक गाने की रिक्वेस्ट की है, सर प्लीज़ प्ले माई पंजाबी ट्रैक, माई फेवरेट पंजाबी सॉन्ग, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा मैम, थैंक यू वेरी मच। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हेलो हेलो हाई, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है, मौसम अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, थैंक यू सो मच। ये बनारस सिंह का मैसेज मेरे पास आया है। एंड इसके अलावा मेरे पास मैसेज आ गया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है, मुझे एक प्लीज गाना सुनवा दीजिएगा, दिस इज माई फेवरेट ट्रैक, ऑल राइट। एक ट्रैक की रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंची है, यहाँ पर ये मैसेज आया है लतिका का, लिखती है गुड मॉर्निंग आनंद जी, सुबह सुबह आपने बहुत ही अच्छी बात कर दी है, बचपन के गाने सुनने की आपने बात करी है, तो बचपन में मेरा एक बड़ा फेवरेट गाना हुआ करता था जिसको मैं आज भी सुनती हूँ तो मेरे को बहुत मज़ा आता है, एंड ऑल टाइम मेरा फेवरेट गाना है ये, एंड बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी सन 2000 में, मैंने इस गाने को तब सुना था और मैं इसको आज भी सुनती हूँ। मतलब ये एक तो ये मूवी बहुत ही अल्टीमेट है, ऊपर से गाना जो आपने भेजा है सच में बड़ा कमाल का गाना है, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ये गाना प्ले करूंगा थोड़ी सी देर में। मैसेज पहुंच गया मेरे पास प्रेम भाई का, लिखते हैं गुड मॉर्निंग जी, बहुत ही अच्छे गाने की रिक्वेस्ट डाली है प्रेम ने, लिखते हैं प्रेम जी, आनंद जी ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ तो मैं अपने पुराने टाइम में चला जाता हूँ, एंड आई फील कि यार मैं एकदम मेमोरी मेरी ताज़ा हो गई है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो गाना, एंड प्लीज़ इस गाने को ज़रूर प्ले कीजिएगा। या ऑफकोर्स यार आपके गाने डेफिनेटली प्ले होंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ हम आपसे थोड़ी सी बातचीत भी करते रहेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको देते रहेंगे, एंड कुछ जानकारियाँ हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। फिलहाल एक पंजाबी गाने की रिक्वेस्ट आई थी, वो डेफिनेटली मैं निकाल रहा हूँ, एंड इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा गाना जो प्रेम जी ने पहुंचाया, ये डेफिनेटली प्ले करूंगा मैं। चलो गाइज एक काम करते हैं, अभी प्रेम भाई आपकी रिक्वेस्ट का तो गाना मैंने निकाल दिया है, बाकी मैम आप भी प्लीज़ ऐसे ही स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ, और बाकी अगर आप लोग भी कुछ सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई बचपन का गाना जो आपको आज भी फ्लैश बैक में ले जाएगा अगर आप सुनेंगे, तो प्लीज़ मुझे बताओ यार, व्हाट्सएप करो 9837896896 पर, कौन सा गाना है जो आपको बचपन की तरफ ले जाता है, फ्लैश बैक की तरफ ले जाता है, आपकी यादों को ताज़ा कर देता है। प्रेम भाई आपका ये गाना हम सभी को बनाएगा आज दीवाना, सीरियसली यार बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही प्यारा गाना, क्या लिरिक्स है इस गाने का, व्हाट अ सॉन्ग है, इसी को सुनते हैं, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाओ, आनंद को सुनते जाओ।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: चिकित्सा चो।

में तू डोल रे। फ्लैश बैक में ले गया गाना, स्कूल टाइम की यादें ताजा कर दी। ला ला ला ला ला। बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। क्या बात है, तारी जमी पर। ये मूवी थी बहुत ही कमाल की और गाना शान साहब ने गाया बहुत ही खूबसूरती से। अभी आपने सुना बम बम बोले और आज की सुबह आरजी आनंद भी आपसे बोले भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। देखिए यहाँ पर आज ना तो खुशी है ना रीना है, सब है छुट्टी पर और मैं हूँ आपके साथ स्टूडियो में। वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला शो आरजी आनंद के साथ, जहाँ पर बातें हो रही हैं दिल से दिल तक वाली। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं आप ही के फेवरेट प्रोग्राम में, स्वागत है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अभी फिलहाल आपके ढेर सारे संदेश हमारे पास पहुंचे हैं, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। देखिए हमारे भारतीयों में ना आदत है कि हर किसी को ना थोड़ी बहुत ज्ञान देने की आदत तो है यार, है ना, वो हम सभी में होती है, अच्छी बातें होनी चाहिए। लेकिन अगर आज की सुबह आपको एक मौका दिया जाए पूरी दुनिया को एक सलाह देने का, एक पूरे हिंदुस्तान तक अपना एक मैसेज पहुंचाने का, अपनी एक सलाह देने का फ्री में, कोई एक अगर आप एडवाइस किसी को देना चाहते हैं आज की सुबह मेरे रेडियो के जरिए, कोई एक सलाह अगर किसी को देना चाहते हैं तो वो कौन सी सलाह होगी, वो कौन सी एडवाइस होगी जो आपको लगता है कि आज रेडियो पर ना बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से यार आनंद आज

ये सलाह देना चाहता हूँ सारे हिंदुस्तानी को, जितने भी रेडियो लोग सुन रहे हैं, जितना भाई आपका ये रेडियो जहाँ तक भी जा रहे हैं, उन सभी को मैं एक आज की सुबह एक मैसेज, एक सलाह देना चाहता हूँ मुफ्त की। वो ये है, वो कौन सी सलाह होगी जो आप आज पूरे दुनिया को देना चाहते हैं मेरे रेडियो के जरिए, प्लीज बताओ यार। मोस्ट वेलकम है 9837896896 पर। हम भारतीयों की आदत है ना, अक्सर हम ज्ञान देते रहते हैं यार, सोशल मीडिया पे भी हमें बहुत ज्ञान मिलता है, मतलब यहाँ ज्ञान वहाँ ज्ञान, जहाँ जाओ वहाँ ज्ञान। आज की सुबह आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है आरजे आनंद, प्लीज डू टेल। आप मुझे बताओ मैसेज करके, अगर आपने आज पूरी दुनिया को एक सलाह देनी हो आज की सुबह, वो गोल्डन चांस मैं आपको दे रहा हूँ, तो कौन सी एडवाइस होगी, कौन सी सलाह होगी जो आप सब तक पहुँचाना चाहेंगे, लाखों लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे अपने दिल की वो बात, जरा बताओ यार। आज की सुबह आपको लग रहा था यार ये सलाह, ये एडवाइस मैं कब से सोच रहा था आनंद, मैं किसी को देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पा रहा था यार, बट थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। अभी हमने बम बम बोले जो गाना सुना भैया, ये किनकी रिक्वेस्ट पे था, मैं जरा फटाफट से चेक कर लेता हूँ इनका नाम। बम बम बोले, अच्छा ओके, ये रणवीर जी का मुझे मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग। एंड साथ में मुझे जानवी जी का भी मैसेज आया था, ये धर्म कांटा से मैसेज किया है इन्होंने, थैंक यू सो मच। दो लोगों की रिक्वेस्ट पे इस गाने को मैंने प्ले किया। और आज हम गाने थोड़े वो सुन रहे हैं जो आपको बचपन वाली यादें आपकी ताज़ा कर दें, आपको फ्लैश बैक में ले जाएं। वो गाने बताओ जिनको सुन के ना आपको मतलब बड़ा अच्छा लगता है, यार ये गाना सुनता हूँ ना मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, मुझे अपने स्कूल टाइम कॉलेज टाइम याद आ जाता है। आज हम उन गानों की बात कर रहे हैं, मैं इसको सुनता हूँ थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग मेरे को आने लगती है। मैसेज करके मेरे को बताने का जी, अभी फिलहाल ढेर सारे संदेश मेरे पास पहुँचे हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग यू लव एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आया है, आनंद सर गुड वाली मॉर्निंग, मॉर्निंग मसाला में आप कैसे हो, आपकी आवाज़ और अंदाज बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच ललिता जी। और इनको एक गाना सुनना है, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, बढ़िया सी छोकरी होगी, है ना, यही आप सुनना चाह रहे हैं, चलो ठीक है हम सुनवाते हैं। डेफिनेटली गाना आप तक पहुंचेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और बाकी मैं कह रहा हूँ आप वो गाने बताओ जो आपको फ्लैश बैक में ले जाएंगे, वो वाले गाने बताओ यार जिनको सुन के आपको मजा आ जाता है, जेन्युइनली आपको लगता है कि यार ये गाना सुनता हूँ तो मैं फ्लैश बैक में पहुंच जाता हूँ। आरजे आनंद बिल्कुल, मेरे पास ऐसे ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, ये गाना सुन के मैं फ्लैश बैक में पहुंच जाता हूँ, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वो गाना है जो हम सभी के दिल के बड़ा करीब है यार। फना फिल्म का ट्रैक, ऑफ कोर्स समझ गया ना, बहुत प्यारा ट्रैक, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास नदीम की, नदीम जी लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी वॉइस बहुत ही प्यारी है, शुक्रिया भाईजान। नदीम जी मुझे मैसेज करते हैं जयंतीपुर से, लिखते हैं आनंद जी ये ट्रैक सुनवा दीजिए, गाना बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसको सुन के अपने स्कूल टाइम में पहुंच जाता हूं। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक आपने शॉर्टलिस्ट किया है आज की सुबह नदीम भाई, और ऑफ कोर्स ये आपका गाना हम सभी को बना रहा है दीवाना। कोई गाना सुनना चाह रहे हो प्लीज व्हाट्सएप करो 9837896896 पे। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला, आनंद विद यू।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: पाए सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ। प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
8: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी से ये ट्रैक निकाल रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन गाना है। शानुदा की आवाज है। ललिता कश्यप की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास इस गाने को लेकर कि मुझे गाना सुनना है, मेरा फेवरेट गाना है। चलो जी, हम भी सुनते हैं इस गाने को, वॉल्यूम बढ़ा के आप भी सुनिए। कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज करिए जरा

0: ललिता जी की रिक्वेस्ट पे गाना चल रहा था, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला एफएम मुरादाबाद। आपने ट्यूनिंग किया है एफएम आपके शहर का ये बढ़िया सामुदायिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है भाई, जहां बातें देसी वाली होती है और दिल से दिल तक वाली होती है। वेलकम बैक वंस अगेन आप सभी का जी, गुड मॉर्निंग। शनिवार की सुबह है, 13 जून की तारीख है आज, और इस वक्त आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, जहां पर प्रोग्राम में आपके ढेर सारे संदेश मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 11:03। आपके जो मैसेज आ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, जरूर हम आपके इन संदेश को शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक छोटू सा ब्रेक सुन के जल्दी से लौट कर आता हूँ इसे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, बातें वही जो आपका दिल चाहता है। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: वेलकम बैक, वंस अगेन स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद

0: तमाम सारे श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं, जितने भी श्रोता गण हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है जी, एक बार फिर से सैटरडे की सुबह है, ढेर सारे श्रोता हमारे साथ अपने मैसेजेस साझा कर रहे हैं, अपने विचार प्यारे प्यारे संदेश साझा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरे पास मैसेज आया है, हाई गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है, दिस इज मी लतिका, हेलो गुड मॉर्निंग। ये मुझे मैसेज करती है कार्ट रोड से, और इन्होंने जो गाने की रिक्वेस्ट की है ना यार, ये गाना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है यार, मतलब इस गाने को सुन के मैं फ्लैश बैक में चला जाता हूँ। हाँ। मतलब मैं तो ये गाना मैनिफेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप जब ये गाना मैनिफेस्ट करोगे तो
1: कहाँ कहाँ होंगे,
0: इसके लिरिक्स सुनो यार, इतना प्यारा गाना है। थैंक यू लतिका जी।
1: हर बैंक के सारे लॉकरों में मेरे मेरे होंगे,
0: ब्यूटीफुल ट्रैक है यार, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, सुनो निगम साहब की आवाज।

0: पहुंचेगा।
1: ये गाना ऑफ कोर्स आप तक पहुंचेगा। सच में लतिका जी ये गाना मुझे तो बना रहा है आपका दीवाना, मतलब ब्यूटीफुल ट्रैक, चोर मचाए शोर का टाइटल ट्रैक।
0: और डिनर अमेरिका,
1: ये चोर निचोर भाई, ये मैनिफेस्ट मत करना गलती से भी।
0: मचाए शोर, ये चोर चोर चोर मचाए शोर।
1: चलो ये गाना ऑफ कोर्स आप तक पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं, और भी मैसेज आए मेरे पास। लतिका जी थैंक यू सो मच, जरा सी देर में ये गाना पहुंचेगा, इसने मेरी मॉर्निंग को फैबुलस बना दिया। अगला मैसेज किसका है? अरे वाह,
2: कानों में
1: क्या बात है।

0: यू तो
1: हम तुम
0: मिलने को मिलते रहे।
1: क्या गा रही है यार ये
0: लड़की। फिर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया।
1: अरे वाह, सच कसम से सच्ची ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाया आपने टीना, थैंक यू वेरी मच। मन खुश हो गया ये गाना सुन के, मतलब आपकी आवाज में बहुत ही अच्छा गुनगुनाया आपने, बड़ा अच्छा गुनगुनाती हैं आप। ये गाना निकल गया टीना की रिक्वेस्ट पर, ब्यूटीफुल ट्रैक। ये मैसेज आया था मेरे पास, हाय आनंद जी गुड मॉर्निंग, माय फेवरेट ट्रैक जो अभी इन्होंने गुनगुनाया बैकग्राउंड में चल रहा है। टीना ने कुंदनपुर से मैसेज किया है मुझे, ब्यूटीफुल ट्रैक। चलो जी, अच्छी बात है, जिसको जो मिल गया वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, ये गाना भी ऑफ कोर्स आप तक पहुंचने ही वाला है, और एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है अभी, फटाफट से पढ़ता हूँ। गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू, कैसे हैं आप? हाय, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, बस लिखा है कोई भी गाना प्ले कर दो अपना फेवरेट। ओके जी, थैंक यू सो मच। एक मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, चलिए 2 घंटे की ड्यूटी बदल गई है आपकी। और जी बिल्कुल रिजवान जी, थैंक यू सो मच, एक गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने डाली है। ऑफ कोर्स ये गाना मैं डेफिनेटली प्ले करूंगा थोड़ी देर में, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे सारे गाने बैक टू बैक आएंगे। 11:08 हो रहे हैं, और मैंने आपसे एक सवाल भी किया है कि आप अगर आज किसी को एक सलाह देना चाहते हो, फ्री का एडवाइस देना चाहते हो तो क्या होगा। रमेश का मेरे पास मैसेज आया, रमेश भाई मुझे लिखते हैं, ये मानसरोवर कॉलोनी से लिखते हैं, आनंद जी दूसरों को बदलने से पहले खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों को ज्ञान देते हैं और अपने आप ही उस बात को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं। 100% आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हेलो गुड मॉर्निंग, सुहानी बात कर रही हूं मैं। हाय सुहानी, गुड मॉर्निंग। सुहानी ने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा है, मम्मी पापा के साथ वक्त गुजारिए, बिताइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है लेकिन आपका जो वक्त है वो वापस नहीं आ सकता, बस मैं यही सलाह देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अमित का मैसेज आया है मेरे पास खुशहालपुर से, लिखते हैं, जिंदगी में किसी से इतनी उम्मीदें मत रखो कि खुद की खुशी खत्म हो जाए। वाह, यही सलाह देना चाहूँगा आज आपकी मुरादाबादी को। क्या मैसेज करो यार, गजब, एक ब्यूटीफुल ट्रैक मेरी तरफ से सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है मॉर्निंग मसाला शो, आनंद के साथ सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग।

एक्चुअली इस गाने में जो एक्ट्रेस है ना वो है दिशा पाटनी एंड साथ में आदित्य रॉय कपूर. दिशा पाटनी पर पिक्चराइजेशन है, आज उनका बर्थडे है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज राजकुमार राव का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम एंड साथ ही साथ दिशा पाटनी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, आज उनका बर्थडे है. ब्यूटीफुल कमाल की चार्मिंग गर्ल है, आज इनका बर्थडे है. सो पूरे FM एंटायर फैमिली की ओर से वेरी हैप्पी बर्थडे. साथ में राजकुमार राव का भी बर्थडे है, बॉलीवुड की डैशिंग हीरो. अगर आज की तारीख में आप में से किसी का बर्थडे है तो आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उन दो धाकड़ हीरो हीरोइंस के साथ. और अभी दिशा पाटनी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं इस गाने के साथ.

0: वेलकम बैक है। अभी आपने जो गाना सुना वो टीना जी की रिक्वेस्ट पे था, कुंदनपुर से उन्होंने मुझे मैसेज किया था। अभी ना एक योजना के बारे में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी स्कीम है एंड आई एम श्योर इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और बहुत बड़ी। इवन आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ऑफकोर्स आज आपको सुनना तो बनता है यार। वेरी गुड मॉर्निंग है, आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज मॉर्निंग मसाला। एंड आज इस कार्यक्रम को मैं होस्ट कर रहा हूँ, आपका प्यारा सा दोस्त आनंद। बड़ा कम मौका मिलता है ऐसे प्रोग्राम में आपके साथ ढेर सारी गुफ्तगू करने का मौका जो मिलता है वो बड़ा कभी कभी मिलता है। उस मौके को हम कैसे बुला सकते हैं, कैसे मतलब जो है छोड़ के जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच इन आउटस्टैंडिंग मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये गाना ऑफ कोर्स लतिका जी आपकी रिक्वेस्ट पे निकाल दिया है मैंने, इस गाने को डेफिनेटली हमारे लिसनर्स भी सुनेंगे एंड ऑफ कोर्स मैं तो सुन ही रहा हूं यार। और चलिए आपके मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी जी जुड़े हैं मेरे साथ, सैयद शारिक अली एंड साथ में महराज अंसारी, बाबू अंसारी लिखते हैं। आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? सैटरडे की मॉर्निंग मसाला शो में आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सॉन्ग प्लीज प्ले कर दीजिएगा, चालबाज फिल्म का गाना है, ये गाना मुझे सुनना है। ज़रूर सुनवाएंगे। बबली साथ में अनजाना एंड गीता कश्यप उत्तर जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? मुरादाबाद से रणवीर सिंह साथ में शारदा कश्यप पायल कश्यप एंड इनो को एक मतलब ये गाना सुनना चाहते हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना है, ये लिखते हैं ये गाना हमें फ्लैशबैक में ले जाएगा, प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। ज़रूर ज़रूर अभी सुनवाएंगे जी। एंड हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? नमस्ते जी, नमस्ते गुड मॉर्निंग, ये लिखते हैं हाय मेरा नाम बबली है, साथ में गीता कश्यप हैं और इनकी मम्मी है ममता जी, और साथ में ये एक गाना सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा सा, प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा इस ट्रैक को। ज़रूर मैं प्ले करूँगा। आपको पता है फादर्स डे भी आने वाला है वेरी वेरी सून। हेलो हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, एक ट्रैक प्लीज़ मुझे सुनवा दीजिएगा, दिस इज़ मी प्रियांशु, गुड मॉर्निंग प्रियांशु। सागर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। मेरे पास अररिया बिहार से मैसेज पहुंचा है फैसल जी का, मोहम्मद अफजल एंड साथ में अकरम जी, साथ में नफीस एंड प्रवीण। एंड एक और संदेश पहुंच गया है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है? दुर्गेश सैनी मुरादाबाद से मैसेज करते हैं, लिखते हैं सर ये गाना मुझे फ्लैशबैक में ले जाएगा, प्लीज इसको प्ले करिएगा। अभी तो लतिका जी की रिक्वेस्ट पे गाना आ रहा है, गाना सुनवा दीजिएगा सर, काला लिबास मुझे सुनना है। हाय वेरी गुड मॉर्निंग, मुझे बहुत पसंद है गाना। आनंद जी आप कैसे हैं? मोहसिन जी आई एम वेरी गुड, थैंक यू यार, आप बनारस से जुड़े आपका शुक्रिया। कश्मीर से महराजुद्दीन जी जुड़ गए, लिखते हैं आरजे आनंद जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है। गुड मॉर्निंग नाइमुल अकरम जी लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? और इनको एक गाना सुनना है, जरूर मैं सुनवाऊंगा। एंड साथ में लिखते हैं मेरा मशवरा है हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, वाह गजब।
1: लंच मेरा लंदन में और डिनर अमेरिका,
0: ये चोर। लेकिन इस चोर से पहले जरा ये वॉइस नोट सुनते हैं किसने मुझे पहुंचाया है।
2: आनंद सर नमस्कार,
0: नमस्कार,
2: सुनना है जाने मन चेहरा तेरा जादू, मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
0: थैंक यू सो मच बच्चा, बहुत ही अच्छा बोल रहे हो आप, चलो इनके लिए ताली और अभी बाकी के लिए गाना। अभी हम वापस मिलते हैं इस स्टेशन पे, आप सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आप सुन रहे हैं आनंद के साथ।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
4: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।

0: माय नेम इज खान मूवी का नाम
1: आई सन
0: बहुत ही प्यारा ट्रैक है। भूमि ने इस गाने की रिक्वेस्ट पहुंचाई है मुझे लाइन पार से। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल ट्रैक पहुंचाने के लिए भूमि। शंकर महादेवन, ऋचा शर्मा, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज, बहुत ही बेहतरीन गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे। इस गाने को सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी का एक बार फिर से वंस अगेन वेलकम बैक करते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग मसाला। भूमि मुझे लिखती है, हेलो आनंद, गुड मॉर्निंग, आई होप आप अच्छे होंगे और सुबह सुबह उठकर आपकी आवाज़ सुनी। आज मॉर्निंग की वाइब भी कुछ अलग है एंड मेरा ये गाना था आपने प्ले किया। थैंक यू वेरी मच भूमि फॉर कनेक्टिंग मी, थैंक यू वंस अगेन वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आनंद भाई और प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मोशन, डेफिनेटली आई विल प्ले योर सॉन्ग, थोड़ा सा इंतजार करो। आई रियली लव दिस ट्रैक, बाय द वे ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है जो तुमने पहुँचाया है आज इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों ने मतलब बहुत ही अल्टीमेट मैसेज किए हैं, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे पूछा था ना कि आप अगर आज की सुबह किसी को कोई सलाह देना चाहें, कोई एक एडवाइस देना चाहें ओरिजिनल वाली, तो आप क्या देंगे? एंड मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इतने फैंटास्टिक मैसेज आप कर रहे हो, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है।
2: की करेंगी नहीं मेरा मार दा
0: ये मौसम, बड़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस गाने की, फ्रॉम बनारस वाराणसी से ये प्यारा सा गाना, फेवरेट तो यार हम सभी का है ना, ऑफ कोर्स इतना बढ़िया गाया है काका पाची ने, तो यार इस गाने को सुनना तो बनता है सुनना।

काश मैं भी एक अच्छा सिंगर बन पाता, लेकिन नहीं हो सकता ये। आगे बढ़ते ही एक और व्हाट्सएप मेरे पास आया है, ये गाना ऑफ कोर्स अभी आप तक पहुंचेगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? मोहम्मद रफी एंड साथ में ये लिखते हैं सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ में मुझे गाना सुनवा दीजिएगा प्लीज़ आनंद जी। थैंक यू सो मच। अम्बाला हरियाणा से मैसेज आ रहा है रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत एंड गुरशब्द सिंह राहुल जी का जी जरूर। अगला मैसेज आया है मुरादाबाद दूलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, सोनी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह लिखते किसी भी गाने में शामिल करें तो आपकी पूरी फैमिली को इसी गाने में शामिल कर लेते हैं यार। एक मैसेज आया है, जय माता दी आनंद जी, राधे राधे, हार्ट टचिंग प्रेजेंटेशन आरजे आनंद, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच यार। लिखते हैं एक से बढ़कर एक एंजॉय कर रहे हैं आपके स्टेशन पे गाने, लाजवाब सॉन्ग सिलेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम लग रहा है। अजीत कसाना जी थैंक यू सो मच ये मैसेज करने के लिए। कार फ्रूट लदावली से मैसेज किया इन्होंने, थैंक यू वेरी मच। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आप भी कोई एडवाइस किसी को देना चाहते हैं आज की सुबह तो इमीडिएटली व्हाट्सएप कीजिए मुझे 9837896896 पर। देखते हैं किस किस की एडवाइस मेरे पास पहुंची है। एक एडवाइस आई है शिवानी की मुरादाबाद से। शिवानी लिखती है, हेलो आनंद, हाई, गुड मॉर्निंग, आपकी टॉकिंग ऑफ वे बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका कम्युनिकेशन, थैंक यू सो मच शिवानी जी। ये लिखती है, इस टाइम हम हनुमान मूर्ति की तरफ रामपुर जा रहे हैं, आपका शो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और लिखती है, मैं सिर्फ एक ही सलाह देना चाहती हूँ आपके रेडियो के माध्यम से कि रोज किसी एक इंसान को, ये लिखती है कि आप जो है चेंज करने का मौका दीजिए एंड अपनी तरफ से आप कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश जरूर कीजिए कि उसकी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिविटी एड हो और कुछ डेफिनेटली चेंज हो। बात तो ठीक है, लेकिन शिवानी जी उससे पहले मुझे लगता है कि खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है ना। मेरा दिल चेक किया। रोहित जी का मैसेज आ गया है, ये मुझे लिखते हैं, हेलो जी, सपने बड़े देखो लेकिन शुरुआत छोटे छोटे काम से करो और बिल्कुल भी शुरुआत करने से मत डरो। क्या बात है रोहित, बहुत ही प्यारा मैसेज। एक मेरे पास मैसेज आया है पप्पू जी का, ये लिखते हैं, मोबाइल की बैटरी की तरह अपनी एनर्जी को जो है मेंटेन रखो, अगर वो 20% से नीचे जा रही तो उसे चार्ज करो आज की सुबह, ये कहना। ये कैसी एडवाइस थी पप्पू भाई, समझ नहीं आई। चलो ये गाना सुनते हैं और इसके बाद वापस मिलते हैं। आपको गाना सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं सैटरडे की सुबह में, तो ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम है आपका। व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे अपना फेवरेट वाला गाना जो आपको फ्लैश बैक में ले जाए, थोड़ा पुराना गाना भी ऑफ कोर्स आपका फेवरेट हो सकता है, 90s का नॉस्टैल्जिया, जो भी आपको सुनना है, व्हाटएवर, आप मुझे मैसेज करो 9837896896 पर। अब मैं मैसेज पढ़ूंगा टेक्स्ट वाले, जो संदेश आ रहे हैं ना उनको भी शामिल करेंगे। चलो इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रैक है, 3, 2, 1, गो, एंजॉय करें।

जो गाना भी आप सुन रहे हैं, ये गाने की रिक्वेस्ट आई थी रिजवान खान साहब की हमारे पास, ग्राम बिजना से उन्होंने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी। थैंक यू सो मच, बहुत ही बेहतरीन गाना सुनकर मुझे तो बड़ा मजा आया है गाइज। ऑफ कोर्स आपको भी अच्छा लगा होगा ये गाना। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है, यानी कि स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है अभी 11:45, 11:45 12 सेकंड आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आप। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव, इतने प्यारे मैसेजेस के लिए थैंक्स अ लॉट यार। आप लोग जब बिंदास जुड़ते हैं हमारे साथ, बिंदास बातें करते हैं, तो ये माहौल, ये जो प्रोग्राम है, ये और भी जबरदस्त हो जाता है आपके प्यार से। सो बस ऐसे ही थैंक यू सो मच, देते रहिए अपना प्यार, और अभी आगे बढ़ेंगे आपकी मैसेज की तरफ, ढेर सारे संदेश आप पहुंचा रहे हैं।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
7: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
6: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
7: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: TNC अप्लाई।

चलिए आपको एक योजना के बारे में बताते हैं, ठीक है। आप हम एक काम की बात करते हैं, वो योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली भारत सरकार की एक बेहतरीन पहल है जिसका उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को रोशन करना। हाँ जी, मतलब आपको बता दें हर घर में जो है रोशनी पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। एंड आपको बता दें हर महीने 300 यूनिट तक इसमें बिजली मुफ्त प्रदान कराया जाता है। और बताया जा रहा है कि इसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की जो है वो सरकार की तरफ से लगाई जाती है, और जिसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है दोस्तों। तो मतलब कहीं ना कहीं अब ये सोलर पैनल जो है ये बहुत ही बेहतरीन जो है आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। इनफैक्ट ये पीएम सूर्य घर योजना, अगर आप इसमें रोल होना चाहते हो तो बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम एंड शर्तें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे आवेदक का जो भारतीय नागरिक होना बहुत डेफिनेटली अनिवार्य है, वो ज़रूरी है, कंपलसरी है कि आप हमारे भारत के निवासी हों। आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए मजबूत उपयुक्त होनी चाहिए, आपकी जो टेरेस है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको ये सोलर पैनल लगवाना है तो उसके लिए आपकी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, आपकी टेरेस, ठीक है। उसके बाद आवेदक का नाम और आपका बिजली कनेक्शन, स्मार्ट प्री मीटर, जो भी आपके पास मीटर वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वेरिफिकेशन होंगे, वेरीफाई होगा आपका। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप इस योजना के अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं। और आपने पहले किसी अन्य राष्ट्रीय सोलर योजना का लाभ ना लिया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अवेलेबल है। आप मोर डिटेल्स के लिए डेफिनेटली इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, www.pmsuryaghar.yojana पर जाकर आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, या आप खाली पीएम सूर्य घर योजना भी डालेंगे तो भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी इसकी डिटेल्स। तो प्लीज आप जाइए चेकआउट कीजिए, एंड आपको मोर डिटेल्स के लिए एक बार वेबसाइट डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए, सारी डिटेल्स आपको वहां मिलेंगी। पीएम सूर्य घर योजना के बारे में बात कर रहा था अभी मैं, अब आगे बढ़ते हैं एंड आपके मैसेज की तरफ हम रुख करेंगे। ढेर सारे मैसेजेस आपने कर दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्यारे प्यारे गाने भी पहुंचाए हैं। हेलो जी, छुपा रुस्तम मूवी का एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा मुझे प्लीज़। जी डेफिनेटली मैं ये गाना आपको सुनवाऊंगा। ये कश्मीर से हमारे पास संदेश पहुंचा है, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे से मैसेजेस के लिए। इतने सुंदर सुंदर संदेश आप पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, आपने बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन दी है आज, बहुत मजा आया आपको सुनकर, थैंक यू सो मच, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपको सुन रहा हूं। अरे वाह, थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया।

ये गाना कश्मीर से हमारे पास रिक्वेस्ट है इस गाने की। चलिए इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है। प्यार में दिल तो सब बता देता है बॉस। चलो जी बेहतरीन गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक मनीषा कोराले पर पचराइजेशन गाने का, बहुत ही खूबसूरत आवाजें हैं अलका याग्निक एंड कुमार शानू जी देंगे साथ। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, म्यूजिक कंपोजर हैं इसमें आनंद श्रीवास्तव जी। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है अमरोहा से, ये अमरोहा से निया कुरैशी जी मेरे साथ जुड़े हैं, लिखती हैं आनंद भाई नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते लिखती हैं एफएम मुरादाबाद में, सब कैसे हैं वो एकदम सब लोग बहुत ही बढ़िया ऑल गुड एकदम फैंटास्टिक। ये लिखती हैं प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, गाना सुनवा दीजिएगा तू चीज़ बड़ी है मस्त जी, डेफिनेटली। और अभी आपके टेक्स्ट मैसेज की तरफ फटाफट मूव ऑन करेंगे, बहुत सारे लोगों ने संदेश पहुंचाए हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है। हाय कार्तिक, ये लिखते हैं सर आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप क्या खाते हैं, आपकी जैसी आवाज़ मेरी कब होगी, मुझे भी अपनी आवाज़ ऐसी ही करनी है। अरे कार्तिक डेफिनेटली हो जाएगी भाई। ये लिखते हैं एक बात बताओ, आपकी जैसी मेरी वॉइस कब होगी और आप क्या खाते हैं, आपकी वॉइस बहुत ही प्यारी लगती है। प्ले माई सॉन्ग भाई, गाने का नाम लिख दो मैं डेफिनेटली प्ले करूँगा। ओके इन्होंने लिखा है हाले दिल, इनको गाना सुनना है, थैंक यू सो मच, मैं डेफिनेटली प्ले करूंगा। एक मैसेज और आ गया, संदेश हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आया है, हाय आनंद सर गुड मॉर्निंग, मैं वंशिका एंड आप कैसे हैं, एक गाना प्लीज प्ले कर दीजिएगा ओ मेरे दिल के चैन, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक डेफिनेटली प्ले होगा थोड़ी देर में। एक मैसेज आ गया, गुड मॉर्निंग हाय माय नेम इज, क्या लिखा है उन्होंने, प्रेम सागर, हाय प्रेम जी गुड मॉर्निंग। एक मैसेज और आ गया है, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग जी, एंड साथ में नेहा स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, लिखनी है आप कैसे हैं, हाउ आर यू आनंद, आई एम गुड आई एम गुड। चलो गाइस थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस के लिए, और अभी भी मेरे पास ढेर सारे मैसेज की बारिश हो रही है, ज़रूर हम इनको शामिल करेंगे। वक्त हो गया है 11:52, हमें आपसे जाने की इजाज़त भी लेनी है।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: वेलकम बैक। ये फिलहाल मेरा जाने का समय हो गया है, अभी आफ्टरनून हो गई है, मॉर्निंग से आफ्टरनून यानी कि 12:04। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, गुड आफ्टरनून। अब लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। बहुत देर और बहुत लंबी चौड़ी वाली बातें हो गई, बहुत देर से हम लोग बता रहे थे यार, बट बहुत मजा आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्टीमेट था ये पूरा सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग यू लव एवरीबॉडी। जिन लोगों के गाने या रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाई उनके लिए माफी चाहता हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी, दिल से मैं यू नो माफी चाहूंगा आपसे। जिन लोगों के मैसेज रह गए हैं या जिन लोगों के गाने नहीं प्ले हो पाए हैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट फॉर्चुनेटली मेरे पास जो टाइम था मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया आपके साथ। कुछ गाने छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोगों की फेवरेट होंगे, आई एम श्योर इसमें कोई ना कोई आपका फेवरेट हो सकता है। अभी के लिए लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, और ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरी कैपेसिटी और ज्यादा नहीं है। अभी जाके ब्रेकफास्ट भी करना है, ब्रेकफास्ट तो नहीं होगा, ना ही लंच होगा, अब सीधा ब्रंच होगा। तो फिलहाल अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, वीकेंड को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। सैटरडे है, धूप बढ़िया वाली हो रही है, मतलब हल्की फुल्की, बहुत तेजी धूप तो नहीं निकल रही है शायद अभी, और जाके एक्सप्लोर करता हूँ कैसा वेदर है। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, मस्त रहें, झकास रहें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, और बस पानी ढेर सारा पीते रहें। जी हाँ, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। अभी के लिए आरजे आनंद कहता है साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय करते रहिए वीकेंड को। ऐसे ही फैबुलस गाने के लिए प्लीज ट्यून इन टू FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, बातें वही जो आपका दिल चाहता है। फिलहाल के लिए लेता हूँ आपसे जाने की अनुमति, जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। अभी के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
1: और हूँ आपकी दोस्त प्राची।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गांव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
1: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
0: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सके।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद, मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देशी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गांव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मथ के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया, इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख खा देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात के कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ। सुनिए, छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गांव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम दोनों की तरफ से
1: नमस्कार।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जल्दी मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, इसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श, और फिर शुरुआत महीने में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल, और इसके लिए आज हम दोनों सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। नमस्कार भैया।
11: नमस्कार आरजी खुशी, आप दोनों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज हम भी आ जाते हैं जब आप इतनी प्यार से बुला रही हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही थी, नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए।
12: हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। SRS बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24%, 1,000 जीवित जन्म है। इसका मतलब है कि हर 1,000 जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 24 बच्चे अपना पहला जन्म नहीं मना पाते। यह 2023 से 1% कम हुआ है।
10: तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
11: नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौत के जीवन के पहले सप्ताह में ही होती है, और इनके प्रमुख कारण है समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
12: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो अब सबसे बड़ा काम हो गया, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुए हैं, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गवा देते हैं, जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
10: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि गोल्डन आवर या सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
11: बिल्कुल सही कहा आपने आरजी खुशी, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत ही अहम है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगना, सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
10: यानी ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
12: जी हाँ, इससे पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चों को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस सही चल रही है या नहीं यह देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कैलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला टीका माना जाता है। यह बच्चे की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचने में मदद करता है।
11: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बहुत सरल हैं, सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से, और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके ये सब मिलाकर नवजात बच्चे की जान बचा सकते हैं।
10: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे जानेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
4: माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है, ये बच्चे को निमोनिया डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
9: बिल्कुल ठीक, माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए चाहे कोई कुछ भी कहे, क्यों अनु जी?
4: बिल्कुल, जन्म के एक घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है।
13: भाई साहब, 6 महीने का होने से पहले माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी खाएगा तो बहादुर नहीं मरियल सिंह ही बनेगा।
9: जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए।
14: अब देखो मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ।
15: जी हाँ, 7वें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियाँ और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें, दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें।
9: और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
10: स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया सिंह दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकते हैं। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन टीके लगते हैं, क्या ये भी उतना ही जरूरी है?
11: बिल्कुल जरूरी है आरजे खुशी, जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
12: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
11: इन टीकों से बच्चों को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर ही करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
10: यानी बच्चों की मजबूती शुरुआत के लिए 2 बातें साथ साथ जरूरी है, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाली टीके।
11: बिल्कुल, मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चों के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मकता विकास की नींव है।
10: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
12: बिल्कुल, बच्चा भले बोल नहीं सकता लेकिन वह महसूस करता है। माँ की छाती से लगाना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पिलाना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसके लिए इसे गोल्डन आर कहते हैं।
10: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आर इतना जरूरी क्यों है?
11: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को माँ की छाती से लगाएं और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह बच्चों को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं।
12: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है, कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, यह बच्चे की पहली सुरक्षा है।
10: तो साफ संदेश, पहला पीला दूध फेंकना नहीं, बच्चों को देना है।
12: और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने की कोशिश करानी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है। माँ भी सीख रही होती है, बच्चा भी सीख रहा होता है। नर्स, आशा, दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
11: स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, माँ का दूध नहीं आ रहा। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसीलिए माँ दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
10: बहुत सी घरों में जन्म के बाद बच्चों को शहद, गुटी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन देवी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
12: नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी या बाहर की कोई चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
10: गर्मी में पानी भी नहीं?
11: पहले 6 महीनों तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर या किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह ना दे। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी होते हैं, इसीलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
10: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
12: हाँ, रोना भूख नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पिलाना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
10: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
12: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना है, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
11: पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और चूँकि देखभाल शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
10: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी है?
11: त्वचा से त्वचा का संपर्क का मतलब होता है कि बच्चों को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधा लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कंगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। खासकर कम वजन वाले समय से पहले बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी हो सकता है।
12: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए यह बहुत अच्छा है।
10: क्या पिता भी ऐसा कर सकते हैं?
11: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा का संपर्क दे सकते हैं। खास करके जब माँ को आराम चाहिए तो वह थकी हुई है, लेकिन इसका तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुला रहे, बच्चा दबे नहीं, वह आराम से सांस ले रहा हो, यह ध्यान रखना भी जरूरी है।
12: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू होती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, यह भी पिता की जिम्मेदारी है।
10: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
12: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
10: दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
11: सच्चाई ये है आरजे खुशी, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग से सलाह ना दे।
10: तीसरी गलतफहमी है, माँ का दूध कम होता है, तुरंत ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं।
12: सच्चाई, पहले स्तनपान सहायता ले, माँ को दोष ना दे, स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले।
10: चौथी गलतफहमी, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
12: सच्चाई, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सब की भूमिका है।
10: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
11: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बहुत सुस्त हो, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरे जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चों पर घरेलू प्रयोग नहीं करना चाहिए।
12: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
10: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
11: आरजी खुशी, ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि बच्चों का दिमाग, शरीर और भविष्य की शुरुआत देखभाल से बनती है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परि का सहयोग, ये सब कुछ भी शामिल है।
12: हर घर 5 संकल्प ले सकते हैं। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देंगे, माँ को अकेले नहीं छोड़ेंगे।
11: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएं।
12: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चों को जीवन की सुरक्षित शुरुआत होती हैं।
10: बहुत स्पष्ट बात है, बच्चों के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चों की मजबूत शुरुआत होती है।
11: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में कोई दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें और यह सीखने की प्रक्रिया है।
12: माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चों को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
10: साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवाने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चों को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
12: और छठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए, इंतजार ना करें।
10: इसी संदेश साथ आज का सेहत सही लाभ कई यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चों की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
12: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
11: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
10: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
12: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
11: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
10: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जब पूरा समाज स्वस्थ

0: उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सुजाता जी।
1: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
2: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
1: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
2: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
1: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
2: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
1: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
2: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए। उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं, तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए। पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोए बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
2: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच

0: इलाज मुफ्त में उपलब्ध है।
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको दो सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कन्फर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
1: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है। और ये न केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
1: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
0: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
1: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
0: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
1: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
0: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्ता होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते सकते हैं, और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
0: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
1: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
0: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
1: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हेनू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, और प्रोग्राम है आपका फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम का। एक बार फिर से ये लीजिए, अब आपके इंतजार की प्रतीक्षा खत्म करते हैं। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं हमारे प्यारे से दोस्त अखिल जी। कैसे हालचाल है सर आपके?
5: बढ़िया आनंद जी, बढ़िया। आपके कैसे हालचाल है?
4: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं अखिल जी, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं और गर्मियों में कैसी जा रही है आपकी दिन और रात?
5: गर्मियों में दिन में पसीना,
4: हाँ, रात में मच्छरों ने जीना कर दिया दुश्वार, मुश्किल नहीं, ये तो है यार। खैर श्रोताओं, मैं और अखिल जी आज आपके साथ इस प्रोग्राम में रहने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम हमने आपको बताया सोच बदलो, और आज हम किस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए जरूर आपको पता लगेगा, जैसे कि इसका नाम ही है सोच बदलो। अखिल भाई, आप पहली बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं और इसका नाम है सोच बदलो, तो कुछ मतलब नाम से कुछ लग रहा है आपको कि इसका क्या टाइटल ऐसा है, तो अंदर क्या होगा इस प्रोग्राम?
5: आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं कहता हूँ हालात नहीं बदलते हैं जब तक इंसान भी अपनी सोच नहीं बदलता है।
4: तो है,
5: जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे या किसी चीज को लेके अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तो अपने हम हालात भी नहीं बदल सकते।
4: गॉट इट, 100% सही कहा आपने, लेकिन हालात बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और आजकल हर इंसान परेशान है, कोई करियर को लेके, कोई रिश्तों को लेकर, और कोई खुद से हार चुका है। तो आज इन सब मुद्दों पर बात करना मुझे लगा बहुत जरूरी है। प्रोग्राम सोच बदलो है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता तब तक चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हम कर पाएंगे।
5: नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
4: वाह,
5: सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
4: करेक्ट,
5: कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।
4: वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बात कही है अखिल जी ने, और बिल्कुल सही बात है, जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं।
5: छोटी छोटी जो बातें होती हैं कभी
4: जी,
5: कभी
4: जी,
5: वो जिंदगी में की लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव ले आती
4: है। करेक्ट, और छोटी सी शुरुआत ही जो है हमें जीवन में वहां तक पहुंचा देती है जहां हम जानना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। एक सवाल, अगर सुबह उठते ही इंसान ये सोच ले कि आज भी कुछ खराब होगा तो क्या दिन अच्छा जाएगा?
5: बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है
4: जो हम बताते हैं।
5: बिल्कुल सही, वही दिमाग हमारी चीज ढूंढ रहा होता है।
4: और अभी फिलहाल मेरा और आपका दिमाग ढूंढ रहा है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होगा म्यूजिक वाला, तब तक हमारा दिमाग भी ढूंढता रहेगा गाना कहाँ है, गाना आ गया आपका फेवरेट गाना। एक छोटा सा गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। मैं और अखिल, आप कहीं में जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।

0: वेलकम बैक है। इस ब्यूटीफुल गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी अखिल जी, कुछ कह रहे थे आप अभी?
1: मैं यही कह रहा था कि आजकल लोग छोटी सी परेशानी में भी बोल देते हैं मेरी किस्मत ही खराब है।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं, सभी इंसान इस चीज पे बिलीव करते हैं और सभी बोलते हैं। मोस्टली हर इंसान जब भी स्ट्रेस में होता है या उसका कोई काम नहीं बनता है तो ये चीज को जरूर बोलता है। अखिल भैया, लाइन क्या बोली थी अभी आपने? वो
2: ऐसे बोल दो
0: जी भैया,
1: ओहो मेरी तो किस्मत ही खराब है।
0: और ये जो लाइन है ना, ये अखिल भैया आपने ही, मुझे लगता है दुनिया का हर दूसरा इंसान बोल रहा होता है। करेक्ट,
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए कोशिश होती है कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कस किए जाएं और ये वो टॉपिक्स हम लेकर आते हैं जो एक्चुअली हमारी और आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं।
1: अब देखो ना, अगर बारिश हो रही होती है तो कोई बारिश को देखकर ये बोल देता है ओह आज तो ट्रैफिक होगा, बारिश हो रही है, और कोई उसी बारिश को देख के कहता है अरे आज मौसम कितना प्यारा हो गया।
0: बस अपने अपने देखने का तरीका है, नजरिया है ना। लेकिन ये सच है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में हुई है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अखिल भाई
1: बिल्कुल सही बात कही।
0: चलो,
1: अरे आनंद भाई, कभी कभी ना अगर कुछ लोग इतने नेगेटिव मिलते हैं कि अगर आप उन्हें फ्री में पिज्जा भी दो ना तो ये कहेंगे आपसे अरे कहीं कोल्ड पिज्जा तो नहीं दे दिया, कहीं ठंडा तो नहीं दे दिया हमें।
0: मतलब पिज्जे के अंदर भी वो नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो फिर पक्का उन्हें सोच बदलने की जरूरत है। और श्रोता, मुझे ऐसा लगता है कि सोच अगली बात से डेफिनेटली बदल जाएगी। और कुछ लोग अखिल भाई इतने पॉजिटिव होते हैं, आप यकीन मानिए कि मतलब अगर उनके घर में उनका वाईफाई ना भी चले तो भी भैया उनको ये लगता है कि चलो आज वाईफाई ना चला ना सही, एटलीस्ट फैमिली से तो बतिया लेंगे भाई, फैमिली से तो बात कर लेंगे। और ये जो गेट टुगेदर वाला टाइम होता है ना, ये एक अलग ही होता है और यहीं पर निकल के आती है पॉजिटिविटी। अगर आपका, मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा श्रोताओं, अगर कोई काम आप कर रहे हैं और अगर वो नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल या वो नहीं बन पा रहा है तो आप सोचिए उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में, अखिल भाई ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से और वो हमें नहीं मिलती तो हमें लगता है यार ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, जबकि थोड़े दिन के बाद उससे भी बेहतर से बेहतरीन हो रहा होता है। फिर हमें लगता है कि यार अगर वो चीज हो जाती तो शायद ये नहीं होता।
1: बिल्कुल सही बात। तो जिंदगी कहाँ परफेक्ट होती है? जिंदगी परफेक्ट कहाँ होती है? नहीं होती ना जिंदगी परफेक्ट। लेकिन अगर सोच पॉजिटिव हो तो वो और सफर थोड़ा सा और आसान हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझे भी लगता है कि दोस्तों जिंदगी देखो परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकती, ना ही इंसान कभी परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक गाना जो मैं लगा रहा हूँ ये जरूर परफेक्ट हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। मैं और अखिल, प्रोग्राम है सोच बदलो। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। भैया बजाते रहो या गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो या बजाते रहो, बात एक ही, फिलहाल हम बजा रहे हैं गाना।

0: और इस बेहतरीन गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं मैं और अखिल जी आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। साथियों, आज का हमारा टॉपिक कोई स्पेशल नहीं है, बस हमने कुछ चीजों को उठाया है, कुछ चीजों को हम चुनकर लेकर आए हैं जिसपे हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो अहम और कड़क वाला मुद्दा बना हुआ है वो है आज के टाइम में सोशल मीडिया। क्यों अखिल जी? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें जिसकी भागदौड़ में छोटे से लेके बड़े तक और बड़े से लेके बुजुर्ग तक भी शामिल है। हर किसी को लग रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, हर किसी को लग रहा है मेरे अच्छे व्यूज आ जाएं। और मजे की बात तो यह है दोस्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी फोटोज डालते होंगे ये उम्मीद करके कि शाम तक तो 200 लाइक आ ही जाएंगे, और उस पे 2 लाइक भी ना आए तो आपका मन बड़ा उदास हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं आपको बोलूं तो मैं भी कभी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी डालता हूं तो मुझे भी लगता है यार शाम तक 500 लाइक तो आ जाएंगे, और जब 5 भी नहीं आती तो थोड़ा सा मन उदास होता है। लेकिन फिर वहीं पे हमें अपने मन को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। टाइम पे क्या करना है भाई, क्या हम 500 लाइक या 5 लाइक पे अपने आप को थोड़ी रख रहे हैं भाई?
1: बिल्कुल सही बात कही। और हमें सोशल मीडिया से अपने आप को कंपैरिजन करना है क्यों है?
0: एब्सोल्युटली अखिल भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन और हमारी फैमिली। अगर फैमिली खुश है, हम खुश हैं तो सब बढ़िया है। तो गाइज, यहाँ पर भी सोच बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे अखिल जी ने दुबई में जाके एक बढ़िया से फूड की फोटो डाली तो मेरे को ये लगे भैया मैंने नहीं डाली तो मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। अखिल भाई की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है।
1: तुमने दुबई बोल के ना कुछ पुरानी
0: मेमोरी याद दिला दी। वैसे मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, जो महान इंसान है, ये दुबई भी घूम के आ चुके हैं और दुबई में इन्होंने अरीना मरीना सब देखा है, एलेन और पता नहीं अबू धाबी कहाँ घूम के आए हुए हैं भाई।
1: दुबई तो अपने में बहुत ही अच्छी जगह है।
0: और लेकिन यार आज की डेट में पता है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है अखिल भाई?
1: क्या है
0: यार? मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जो है ना हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे आ गया है जैसे मतलब बिना टमाटर की सब्जी नहीं बनती, वैसी इंस्टाग्राम से जब तक खोलो ना ठीक है दिन की शुरुआत नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इंस्टाग्राम जो हमारी जिंदगी में आके मतलब इसने तहलका मचाया ना।
1: एक बात बोलूंगा तुमसे कि इंस्टाग्राम में देख के ना कभी भी अपने आप को ना अनसक्सेसफुल मत
0: कॉकरेज की बात कर लेते हैं भाई। कॉकरेज भाई को ले लो, इतने वायरल हो गए यार। तो मतलब कभी कभी लगता है यार फिर हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं?
1: मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो अगर हम किसी को देख के अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत
0: है। वो मतलब हमें सोच बदलनी चाहिए। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग है, हर किसी का डिजायर अलग है। तो जरूरी नहीं है जो अखिल भाई की लाइफ में चल रहा हो मेरी लाइफ में भी चल रहा हो।
1: और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ना लोग अपनी हाईलाइट ही दिखाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है पूरी कहानी वो किसी को नहीं पता।
0: पॉइंट तो है। और कभी कभी तो ऐसा होता है लोग सिर्फ दिखाने के लिए ही चीजें कर देते हैं भाई। तो दोस्तों आपको अपनी जो है ना सोच को एकदम सही रखना है। जो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो। आज भी आप YouTube पे एक इन्फॉर्मेशन डालोगे उसके इतने इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा सही क्या है और रॉन्ग क्या है। तो हमें सही डायरेक्शन में चलना है। और अभी एक और डायरेक्शन है जहां हमें जाना चाहिए मुझे और अखिल भाई को, वो है एक म्यूजिकल ब्रेक, म्यूजिकल डायरेक्शन, जहां जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स और रिलीफ दोनों मिलेंगे, हमारी जुबान को भी, हमारे गले को भी, और आपके कानों को भी मिलेगा सुकून। तो एक छोटा सा गाना, उसके बाद वापस आते हैं मैं और अखिल जी। हाँ, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये इंस्टाग्राम जितना प्यारा है ना उतना टेंशन का कारण भी बन गया आजकल की स्पेशली जेंजी का। कभी कभी तो मेरे अखिल भाई को भी टेंशन हो जाती है कि यार सुबह वीडियो डाली थी शाम तक आई क्यों नहीं, कल जोक बनाया था 2 महीने हो गए तक आया क्यों नहीं। तो इनको भी बहुत टेंशन हो जाती है।
1: इसके लिए तो मैं जरा आनंद को अकेले में पकड़ूंगा।
0: और फिर ये अकेले में पकड़ने गलत मतलब मत समझिएगा श्रोताओं, फिर बाद में कहते हैं बच्चा है तू मेरा। एक काम करते हैं गाना सुनते हैं फिर मिलते हैं।

0: ये गाना सुन के तो मैं अपनी चेयर से गिरने वाला था। अखिल भाई ने पकड़ लिया कि बेटा रुक जा, इतना डांस मत कर। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना बहुत ही मजेदार था ये। और इस गाने के बाद इसी बात पे आपका वेलकम कर लेते हैं जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद एंड अखिल के साथ। सो अखिल जी, आप कुछ अभी माइक के पीछे मुझे चार लाइने, चंद लाइने सुना रहे थे, जरा हमारे श्रोताओं के सामने पेश करें।
1: मैं बहुत ही सिंपल और ये कहना चाह रहा था, हर चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: लेकिन ये जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कौन सी सोने की बात चल रही है? जो रात को नींद पूरी नहीं हुई वो, या फिर आजकल जो महंगा हो गया है वो? थोड़ा सा विस्तार से बता दें क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज में।
1: अच्छा आनंद, तुम्हारे पास कितना सोना आज बता दो लोगों को।
0: मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे ही सोना होता है, सैटरडे एंड संडे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दो दिन ही होते हैं। सैटरडे रात को जागता हूँ, संडे को सोना सोना करता हूँ, और उसके बाद भी हो नहीं पाता है क्योंकि भाई इतना काम पड़ा होता है ना वीकेंड पे, वो भी कम्प्लीट करना होता है।
1: जो तुम्हारा सोना है ना वो एक्चुअल में जो दूसरा सोना है उससे ज्यादा कीमती है।
0: करेक्ट यार, और अगर वो सोना कम्प्लीट नहीं है आपका तो फिर सारे सोने बेकार है, सब अनसक्सेसफुल है। करेक्ट, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल सही है। हाँ। वो असली हेल्थ ही आपकी सोना है ना।
0: और अगर आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, तो आपके चेहरे पे जो सोने जैसा निखार आएगा ना, हाँ। भाई साहब हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। करेक्ट। चलो जी, ट्रैक से नहीं भटकेंगे, सोच बदलो में हम थोड़ा सा फन और एक्टिविटीज ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अभी अखिल जी, आपने जो वो चार लाइने कही थी, वो लाइने मैं जरा आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा। हाँ, हर चमकती चीज
1: सोना नहीं होती,
0: सोना नहीं होती,
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल, इस बात में मैं भी कहना चाहूंगा, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है श्रोताओं। तो जो ये कंपैरिजन, इसको अपनी लाइफ से हटा देंगे तो कितना बढ़िया होगा अखिल जी,
1: है ना?
0: लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हम इंसानों की आदत है, फितरत है, हम ये हटा ही नहीं सकते हैं।
1: हाँ।
0: ये कंपैरिजन करने वाली आदत। वेल, आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं?
1: मैं तो ये कहूंगा कि अपने को ना किसी और की कहानी से मत नापिए।
0: हाँ,
1: आपकी जो अपनी जिंदगी है ना उसकी टाइमिंग अलग है।
0: टाइमिंग अलग है यार, हर किसी की लाइफ के पैरामीटर सेट है,
1: एक अलग ही टाइम लाइन चल रही है, तो वो अच्छी चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसे कंपैरिजन में ही निकाल दें या गांव दें।
0: अगर सोशल मीडिया आपका इनर पीस खराब कर रहा है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही बात। और एक थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी करवाएं, इतना सारा डिटॉक्स चल रहा है।
0: डिजिटल डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं।
1: थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना लगा दीजिए, वही डिजिटल डिटॉक्स है।
0: हाँ, मैं गाना जरूर लगाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी हम गाने सुनवा रहे हैं, तो श्रोता हमें सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया है, सारे गाने सुना के जाएंगे क्या?
1: थोड़ी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं,
0: थोड़ा मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक चीज और है अखिल जी, जिसमें हमें ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को जो है सेट करने की जरूरत है, और थोड़ी सी थॉट्स और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, वो है फेलियर। हर किसी की लाइफ में ये फेज आता है, मुझे ऐसा लगता है, छोटे बड़े बच्चे हर किसी के जीवन में आता है ना? तो लोग इतना फेलियर शब्द से क्यों डरते हैं, इतना अनकॉन्फिडेंट अनकॉन्शियस क्यों फील करते हैं?
1: मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो सोसाइटी है ना,
0: हाँ,
1: वो सिर्फ आपकी सक्सेस ही सेलिब्रेट करती है।
0: गॉट इट, 100% अग्री विद यू।
1: और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की बहुत ही लंबी कहानी होती है।
0: करेक्ट।
1: हमें तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो लोग डर रहे हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं। जब तक फेलियर्स से आपका सामने नहीं होगा तो सक्सेस का वो मजा भी आप नहीं ले पाएंगे।
0: इनफैक्ट जब आप फेल होते हो ना अपनी लाइफ में दोस्तों, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप फेल हो रहे होते हो तो आप ना उस वक्त बहुत कुछ सीख रहे होते हो। इतना आप सक्सेस में जब सेलिब्रेट करोगे तब नहीं सीख, इतना फेलियर वाले पीरियड में सीख पाओगे, बिकॉज वो जो फेस होता है ना वो आपको वो सारी चीजें सिखाता है, वो चेहरों से रूबरू कराता है जो एक्चुअली आप कभी आप उनको मिल भी नहीं पाओगे।
1: एक बार बताओ आनंद,
0: हाँ,
1: में फेल हुए, बिजनेस नहीं चला या रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या?
0: नहीं यार, ये एग्जाम, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर इन सब चीजों पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता यार कि हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर ना हमारी डायरेक्शन को बदलता है ना?
1: बिल्कुल सही, डेस्टिनी नहीं बदल सकता वो।
0: करेक्ट, तो वही है ना, आपकी अगर डेस्टिनी स्ट्रांग है, आपका आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप उस पर फोकस्ड है तो आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना? बट अगर लाइफ में आपको थोड़े से डाउनफॉल मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो फेस आ रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि यार अब मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए, क्योंकि आपको पता है ना आप कहां पर सही है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, और आपको पता है आपकी मंजिल कहां है, तो फिर बस आपको तो भैया अच्छी चीज के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आगे निकलना है, और वो कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: क्या बात
0: है ना,
1: क्या
0: इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेकर आओ और अपनी सोच को बदलो, देखो जिंदगी कितने प्यारे रिजल्ट देगी। कुछ ज्यादा मोटिवेशन नहीं भर दिया आज हमने लोगों में?
1: हाँ जी, ऐसा मोटिवेशन दे दिया, कल आ जाएंगे फोन के भाई साहब आ रहे हैं, हम भी एक आरजे बनने वाले हैं। आनंद,
0: कोई दिक्कत नहीं है जी, चेयर बिल्कुल खाली है, अखिल भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा करेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे और आपको यहाँ बिठाएंगे, टेंशन मत लो आप। फिलहाल अखिल भाई ने गाने की बात करी थी, तो गाना जो है आ गया है निकल के बाहर, और ये गाना बहुत अच्छा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आपने सुना है गाना?
1: सुना है।
0: कयामत से कयामत फिल्म थी आमिर खान साहब की, और ये गाना भाई साहब आज भी मजेदार लगता है मुझे।
1: और गाना गाने के बाद आमिर खान की तो मैं बात कहूंगा, आज क्या नाम कर रखा है
0: आमिर खान साहब ने, अरे गजब। और ये उदित साहब का भी कमाल है, उदित नारायण जी ने जब ये गाना गाया था तो भाई साहब उनकी भी रातों रात पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, उदित साहब की आवाज है ना।
1: देखा एकदम आपका जो थे जितने भी फेलियर्स थे सभी एक उस गाने से सक्सेस।
0: एब्सोल्युटली यार, और आमिर खान की भी फर्स्ट मूवी थी क्यामत से क्यामत तक मूवी है, इसमें आमिर खान साहब को अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखना, उनका जो फेस है एकदम यंगर वाला, क्या लग रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, अगर हम इन्हीं पे बातें करेंगे तो पूरा स्टोरी निकल जाएगा, गाना नहीं सुन पाओगे, तो पहले गाना सुनो उसके बाद लौट कर आते हैं।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
4: पाए सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है,
3: जल्दी कीजिए। विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद, कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
5: कॉल 8826213131।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका की भी फर्स्ट मूवी थी क्यामत से क्यामत तक मूवी है, इसमें
7: जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है,

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और ये गाना भी आपने सुना कयामत से कयामत मूवी का, और बहुत ही कमाल की फिल्म थी और बहुत ही फैंटास्टिक लगे मुझे तो आमिर खान। और इसमें एक गाना है, मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर। अभी तक वो चेहरा मुझे तो नजर नहीं आया, लेकिन अखिल जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज टेल अस यार।
1: मैं एक्चुअली क्या है ना,
0: अभी हम बात कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
1: मगर आमिर खान साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है। एक मूवी थी यादों की बारात करके,
0: हाँ।
1: और उन्हीं के अंकल हैं, डायरेक्टर थे जो उस मूवी के थे, नसीर साहब थे। तो मतलब बचपन से ही इज लाइक इन एक्टिव, और इतना कहते हैं ना कि बचपन खून में है, तो वो खून वाली ही चीजें थी कि हाँ भाई खून में है एक्टिंग, और इतना अच्छा आज के समय में ऐसा नाम।
0: मेरी तो आमिर खान साहब से बात भी हुई है, एक्चुअली एक रेडियो स्टेशन का नाम तो नहीं लूंगा, तो आमिर खान साहब मुंबई के एक स्टूडियो में थे और मैं अपने घर से खड़ा फोन लगा रहा था। लाल सिंह चड्ढा इनकी मूवी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे। तो इन्होंने बोला था जो सबसे क्रिएटिव लाइन सुनाएगा मैं उससे लाइव बात करूंगा। तो मैं बस जस्ट रैंडमली मैंने फोन लगाया एक स्टेशन में, और वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। तो आमिर खान साहब ने बोला हाँ कौन बोल रहे हो, मैंने कहा आनंद, तो कह रहे, मैंने कहा मैं आमिर खान से बात कर रहा हूँ। आमिर खान ने बोला यस बेटा मैं आई एम आमिर, टेल मी आनंद कहाँ से हो, मैंने बताया और मेरे को आरजे बनना है, आई एम वेरी पैशनेट ये वो। तो आमिर ने बोला ठीक है मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करता हूँ, जो वहाँ का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे, कि और तुम्हें कुछ एक चांस दिलाते हैं। बट स्टेशन मुंबई में था तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर आमिर खान साहब ने बोला एक राइमिंग बनानी है लाल सिंह चड्ढा की मूवी के ऊपर, तो फिर मैंने बना दिया। मुझे बड़ा मजा आया भाई जब मैंने बनाया, तो ताली वाली सब बजाई, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अखिल भाई। वो लाइन थी कि जाना था मुझे बस के अड्डा, मुझे आज भी याद है, जाना था मुझे बस के अड्डा, लेकिन जैसे रेडियो खोला तो नजर आ गया लाल सिंह चड्ढा। इतनी तालियां बजाई आमिर खान, मतलब आमिर खान इज वेरी हैप्पी कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो क्रिएटिव। एक दो लाइन और बोली थी वो, शायद मेरे पास मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। और जब मैंने आमिर खान साहब से बात करी तो उस दिन पूरा दिन मुझे नींद ही नहीं आई भाई, लगा ही नहीं कि मैं कहां बैठा और कहां आमिर खान साहब से, मतलब जिनको पिक्चर में देख रहे उनसे हम बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत गोल्डन चांस।
1: हमारे साथ ये वाला वाकया हो गया कि पापा कहते हैं
0: बड़ा नाम करेगा, हाँ। बट मम्मी को बहुत खुशी हुआ था, मेरी मम्मी को मतलब फेवरेट है आमिर खान। और फिर एक बार मेरी अक्षय कुमार साहब से भी हुई है यार ऐसी, तो दूसरे स्टेशन के, मतलब मैं शुरू से इतना ज्यादा एक्टिव रहा हूँ चीजों में, तो मतलब आई फील कि यार हाँ ठीक है रेडियो पे अगर हम, और रेडियो में भी मेरा आने का मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटी से ही मिलना है, मतलब एक रियल कनेक्शन बनता है। जैसे मेरी बात उनसे हुई मैं खुश हुआ, ऐसी हमारे तमाम लिसनर जो हमसे बात करते हैं उन्हें खुशी मिलती है, तो ये एक अलग ही यू नो हैप्पीनेस होती है। और ये अखिल जी जो बैठे ना ये भी बहुत कमाल धमाल करके आ चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में, और ये एक बहुत अच्छे स्टेशन में साउंड इंजीनियर जो भी है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इनका प्रोफेशन क्या रहा है, बट इन्होंने अच्छा किया है।
1: मैं बताना चाहूंगा आमिर खान साहब को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है, बात भी हुई है। उनकी एक मूवी की शूटिंग हुई थी जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था,
0: तो दुबई
1: नहीं गुड़गांव में,
0: किंगडम ऑफ ड्रीम्स अच्छा ओके।
1: तो वहाँ पे ना इनकी शूटिंग थी पीके मूवी की,
0: पीके ओके, आमिर खान और अनुष्का,
1: हाँ अनुष्का शर्मा, और दोनों ही आए थे उस गाने को शूट करने के लिए, दोनों ही लोग आए थे। तो मैं मतलब मानोगे नहीं, रात में 1-2 बजे भी ऐसा लग रहा था कि सुबह के एकदम ताजा उठे हुए और वो शूट कर रहे थे, और उस बीच उनका एक
0: मतलब प्रोडक्टिविटी एकदम मॉर्निंग वाली थी,
1: इतना एक्टिव कुछ पूछो मत। और उस शूट में एक मजे की बात और थी कि उन्हीं के बेटे जुनैद खान वो उसमें असिस्टेंट थे।
0: ओ वाओ क्या बात है,
1: सॉन्ग के असिस्टेंट थे,
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो जानकर हमें बहुत खुशी हुई अखिल जी, थैंक यू सो मच, आपने ये कड़क अपडेट हमें बताई। और अगर हम कभी आमिर खान से मिले तो जरूर आपका मैसेज तक पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप हमसे पहले मिले तो हमारा पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल प्रोग्राम है सोच बदलो, और उनका पीके मूवी का इन्होंने जिक्र किया, तो एक मीम बहुत वायरल होता है, अच्छा हमें सिखाएगा, अच्छा हमें बता दिया है, आई एम श्योर आपने देखो ना। और ये मूवी की शूटिंग के दौरान ही मैंने इनके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इन्होंने इस मूवी में जो डायलॉग बोल रहे ना अच्छा हमें सिखा रिया है, ये वाला करने के लिए उन्होंने 100 पान चबाए थे भाई, ये वाले शॉट के लिए आमिर खान साहब ने, वो पान खाते हो और तब ये वाला वायरल होता, तो इस मूवी के लिए उन्होंने 100 पान को खाया यार। एक एक्टर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है सोचो आप,
1: बिल्कुल सही।
0: और दोस्तों सिर्फ एक्टर को नहीं, एक रेडियो जॉकी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं और ट्रैक पे हम लोग आ गए तो हमें वापस अपने ट्रैक पे जाना है। सो वेल ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के काम की, भाई हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है, रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल मीडिया पे, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अखिल जी आप फेलियर के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे।
1: मैं तो कहूंगा यही
0: जी भैया,
1: गिरकर उठना सीख लिया हमने, अब मुश्किलों से डर नहीं लगता,
0: वाह,
1: क्योंकि सपने शहर देखकर नहीं हौसले देखकर पूरे होते हैं आनंद।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, और हौसले अगर आपके मजबूत है ना तो फिर आपको कोई नहीं पड़ सकता, कोई नहीं हरा सकता, करेक्ट। तो बस अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, और जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए ना कुछ बढ़िया सोचना जरूरी है। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। आप भी अच्छा सोचिए, ऑफकोर्स आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। और आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हमारा सिर्फ यही मतलब था, यही मुद्दा था बताने का कि इन सब की वजह से ना हम बहुत भटकते हैं अपनी लाइफ में। सोशल मीडिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, फेलियर हो गया, ये सब चीजों के पीछे हम इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि भाई यही सब चीजें जो हमें दबा रही हैं और इन्हीं चक्कर में हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए, सोच बदलोगे तो आपके इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी, है ना भैया। और मुझे लगता है अगर आप सही दिशा में प्रयत्न करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे, तो आपको एक ना एक दिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी।
1: आनंद कभी अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपने आसपास वालों को बदल दूं?
0: यार आसपास वालों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को जरूर बदल लूंगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं भाई। बट हम सही काम करेंगे तो डेफिनेटली बदल सकते हैं यार,
1: बिल्कुल,
0: है ना। एक इंसान की सोच सब कुछ बदल सकती है, तो बस वही चीज है। बाकी अभी मैं और अखिल जी लेते हैं इजाजत, बहुत सारी ज्ञान और काम की बातें भी हो गई और फिल्मी शिल्मी वाली बातें भी हो गई, एंड जल्दी गुफ्तगू करने के लिए फिर किसी और मोड़ पर नए एपिसोड के जरिए आपसे रूबरू होंगे मैं और अखिल जी। तो अखिल जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ बिल्कुल आनंद, बस एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा मैं कि अगर खुद

0: हाँ वही यार, पूरा ही चला लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय कर दीजिए आप भी।
1: बाय बाय, रेडियो बजाते रहो,
0: गुनगुनाते रहो और सुनते रहो आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय
1: बाय।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
3: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
2: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
3: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
2: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
3: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए, डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
2: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
3: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
2: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
3: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, उस खून जितना ही बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
2: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
3: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
2: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
3: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉइज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
2: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
3: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था सारे बच्चों को। आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति आए तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
2: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
3: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो एचपीवी का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है। ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें एचपीवी वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
2: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
3: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्ठे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है। और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी एनएम बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
2: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
3: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
2: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
3: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एनएम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
4: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।

0: दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और प्रोग्राम का नाम है खेती किसानी। जी हाँ किसान भाइयों, राम राम आप सभी को। कैसे हालचाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन

0: असम के
1: बहुत बड़ी सफलता।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण
0: के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
4: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
3: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
7: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
6: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया।

0: ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
2: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आप
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय एक बार फिर से निकाला और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए शुक्रिया सर।
1: जी धन्यवाद सर।
0: जी सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि गर्मियों में गन्ने की फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है क्या सर?
1: जी हाँ, देखिए गर्मियाँ क्या है कि सभी लोगों के लिए जल आवश्यक होता है, और फिर बेसिकली जब गर्मियाँ चल रही हो तब तो वो जो है जल मांग जो है कई गुना बढ़ जाती है, चाहे जीव हो, चाहे जीव में कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या हमारी फसलें हो, या हमारे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, कई गुना हमारा वो बढ़ जाता है। तो जैसे गन्ने की बात करें तो गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, हल्की भूमि में सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है।
0: जी ओके, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जो ड्रिप सिंचाई का उपयोग भी लाभकारी हो सकता है क्या, और इससे पानी की बचत होती है क्या, और पौधों को पर्याप्त नमी भी मिलती है क्या?
1: जी देखिए, ड्रिप सिंचाई जिसको हम लोग बेसिकली बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, हमारे जैसे जहाँ पे जल की समस्या होती है, सिंचाई जल जहाँ पे कम होता है, और बाकी अगर अमूनता अगर देखा जाए तो हमें तो यही लगता है कि प्रत्येक किसान को ये चीजें धीरे धीरे अडॉप्ट करनी चाहिए।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि
0: हाँ जी,
1: एकदम
0: हाँ
1: से इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसमें पाइपलाइन पड़ती है, उसमें गन्ने की जो लाइन होती है उसी में ये पाइपलाइन डाल करके बूंद बूंद पानी डाला जाता है। इसमें अतिरिक्त जल जो होता है हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल हम पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको कोई जैसे वो फर्टिलाइजर देना है, जिसको उर्वरक कह सकते हैं, उर्वरक देना है, या कोई और हमको जो है पेस्टिसाइड या फंजीसाइड कुछ भी हमको देनी है, तो हम सिंचाई जल के साथ में उनको प्रेषित करके हम अपने फसल को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त जल भी हमारा बचता है और किसान की जो है कह सकते हैं

0: कि उनको जो है अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक बार हमारी पाइपलाइन डल जाती है तो हमेशा वो यूज कर किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, तो गर्मी के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ता है और फसलों से पोषक तत्व और नमी भी छीन लेता है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिसे समय पर जो है निराई गुड़ाई आवश्यक होती है।
1: हाँ जी।
0: कोई भी फसल हो,
1: हाँ जी, हाँ
0: गन्ने की ही नहीं बल्कि कोई भी फसल हो, समय पर निराई गुड़ाई आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवार नाशी, जिसको हम लोग जो है वीडिसाइड भी कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए।
1: जी जी।
0: और प्रयास करना चाहिए कि अगर हाथों से इस काम को कर सके, क्योंकि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, और हमारे अगर हाथों से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो उस स्थिति में हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खेत को खरपतवार मुक्त बनाए रखना ये जरूरी होता है, क्योंकि इससे जितना ज्यादा खरपतवार होगा उतनी ही फसल हमारी गुणवत्ता कम होगी और उसमें पैदावार भी घट जाएगी।
1: ओके अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए अर्थिंग अप जिसको हम लोग मिट्टी चढ़ाना भी कहते हैं।
1: हाँ जी, हाँ।
0: जब पौधे जो है हमारे बढ़वार की ओर अग्रसर होते हैं, इसमें कई सारी हमको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती हैं, जैसे कि हम अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब हमारा बरसात या वर्षा ऋतु आने से पहले अंतिम जुताई होने के बाद हम इसमें जो है अर्थिंग अप की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी जो होती है बीज की क्यारियों के दोनों लाइनों के बीच की जो खाली जगह होती है, वहां पे निराई गुड़ाई करके और जो इसकी मिट्टी होती है वो भुरभुरी किस्म की करके उसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है टिलर्स जिनको हम लोग कहते हैं वो ज्यादा निकलते हैं और मिट्टी चढ़ने से हमारा रूट एरिया मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल गिरती नहीं है, गिरने से बच जाती है। और यदि हमारी फसल गिर जाती है, ऐसा नहीं अगर हम करेंगे और हमारी फसल गिर जाती है तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप लगातार तमाम जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं, इसी बीच मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में संतुलित उर्वरक देना बहुत आवश्यक है क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए संतुलित जैसे हम लोग भी भोजन की थाली जो हम लोग लेते हैं तो उसमें भी हमको दाल चावल और रोटी सब्जी और सलाद अचार इत्यादि तरीके के हम लोग संतुलित चीजें खाएं। जितना ही संतुलित हम लोग रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ भी संतुलित रहेगी। इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है, जैसे गन्ने के लिए है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इत्यादि का संतुलित उपयोग करें, मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं, जैसा ही परीक्षण रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उर्वरक देना ही हमको लाभकारी रहता है। जिंक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी होने पर उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी ओके अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में कई प्रकार के कीट एवं रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए गर्मी चल रही है, इसमें टॉप बोरर पायरिल्ला दीमक इत्यादि कीटों का नियमित निगरानी रखें। अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो उसका समुचित उपचार करें, रोग ग्रसित पौधों को तुरंत हटाएं, कृषि विभाग की सलाह के अनुसार दवा का अवश्य प्रयोग करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्या किसान भाई ट्रेस मल्चिंग अपना सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे जो किसान भाई जानते सब हैं, जैसे पेड़ी गन्ना होता है तो उसमें क्या होता है गन्ने की सूखी पत्तियां होती हैं, तो उनको अमूमता लोग क्या करते हैं जला देते हैं, जलाने को उसको आसान समझते हैं, लेकिन ये हमारे लिए दुष्प्रभावित होता है। गन्ना पत्ती को अगर जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और जो है हमको जो है कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव आग की चपेट में आके नष्ट हो जाते हैं, हमारी मिट्टी की यानी कि खेत की ऊपरी सतह जो होती है आग के संपर्क में आके जो है कठोर हो जाती है। धीरे धीरे अगर हम नियमित ऐसा करते रहेंगे तो हमारी एक दिन भूमि बंजर हो सकती है, तो इसलिए हमको ट्रेस मल्चिंग अपनाना चाहिए। ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे गन्ने की सूखी पत्तियों को खेत में बिछाने से मिट्टी में जो है नमी बनी रहती है, हमको ज्यादा अंतराल पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर ट्रेस मल्चिंग नहीं करेंगे तो हमको जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे हमारे पृथ्वी में और हमारे जो है खेत की ऊपरी सतह पे पड़ेंगी तो उसमें जल हानि ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, ट्रेस मल्चिंग अपनाएंगे तो हमारी सूखी पत्तियां जो है उस डायरेक्ट सनलाइट को रोक लेंगी, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की नमी हमारी संरक्षित रहेगी। इससे क्या होगा कि अगर पलवार या जैसे कह सकते हैं ट्रेस मल्चिंग ऊपर पड़ी हुई है तो उसमें नीचे की

0: हैं, प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। चीनी मिलें क्या करती हैं, जब चीनी मिल प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होता है, तो वो यही कहती हैं कि जो भी प्रजातियां हैं जो प्रमाणित हैं या अनुशंसित हैं, उन्हीं को ही आप लोग सप्लाई के लिए चीनी मिल में आपूर्ति करें। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी रिजेक्ट वैरायटी को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उनको तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपूर्ति का समय आता है तब उनको दिक्कत होती है। तो हमारी अपील है समस्त किसान भाइयों से कि अपना जो है गन्ना क्षेत्र जो है वो प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही चयन करके बोएं, रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें, इससे उत्पादन और चीनी प्रतिशत दोनों ही वृद्धि होगी और दोनों को ही लाभ होगा, चाहे चीनी मिल हो चाहे किसान भाई हो, दोनों लाभकारी होंगे तभी ये जो है चल पाएगा। अगर किसान को लाभ होगा और चीनी मिल घाटे में चली गई तो वो ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो आप ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिनमें शर्करा प्रतिशत यानी कि जिसमें शुगर परसेंटेज भी हो और पैदावार भी अच्छी हो, तो दोनों के ही कोलेबोरेशन से ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। तो हमारी अपील है कि प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही किसान चयन करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो आप देना चाहें।
0: जी बिल्कुल, आइए कुछ हम महत्वपूर्ण सुझावों जानते हैं, समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे खेत में जल भराव बिल्कुल ही ना होने दें, जैसे कि हमारे आज के चर्चा के विषय में ही लिखा हुआ है कि हमारा जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यानी कि हमारी जो समर सीजन चल रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर है, धूप की किरणें बहुत तेज़ी से मतलब हमारे शरीर को हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस स्थिति में अगर हम जल भराव अपने खेत में कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जल भी गर्म होगा, और गर्म जल में अगर हमारा पौधा रहेगा तो स्ट्रेस में चला जाएगा और वो अपनी बढ़वार को खो देगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी बढ़वार कम होती जाएगी। जब आवश्यक हो तभी जल आपूर्ति करें, यानी कि तभी उसमें सिंचाई करें। अब व्यर्थ में जल भराव ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश ना करें, जल भराव हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। दूसरा है समय पर सिंचाई करें, जब आवश्यक हो तभी सिंचाई करें, संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, रोग और कीट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आपने अगर उसका निदान कर लिया और पड़ोस वाले खेत से उड़ करके आपके यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसलिए रोग और कीट का समय पर जो है उपचार जरूरी होता है, तो इसलिए उस पर नजर बनाए रखें। अगला हमारा है, कह सकते हैं कि गन्ना जो पत्तियां होती हैं उनको ना जलाएं, जैसे हमने पिछले अभी अपने प्रश्न आपके प्रश्न में जो है हमने बताया था,
1: जिक्र किया था
0: कि गन्ने की पत्तियां जो होती हैं उनको जलाया ना जाए, उनको आप मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कई सारी मशीनें आ गई हैं, मल्चर वगैरह आते हैं, उनको पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आपके खेत में बिखेर देता है, जिससे वो आसानी से कह सकते हैं डिकम्पोज हो जाती हैं। तो गन्ने की पत्तियों को प्रयास करें कि ना जलाएं, अगर आपको नहीं रखना है तो आप वो कंपोस्ट पिट बना करके उसमें आप डाल सकते हैं, जिसकी आप खाद बना करके फिर से अपने फसल में यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है एक महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि कृषि वैज्ञानिकों की जो है सलाह लेते रहें, जो भी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं आपके यहाँ पे, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी गण हैं या समिति के जो गन्ना पर्यवेक्षक गण हैं, उन लोगों से संपर्क में बनाए रहें और उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस महत्वपूर्ण सेशन में, इस श्रृंखला में आपने तमाम जानकारियां दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे, कोई एक प्रेरणादायक मैसेज जो आप देना चाहें?
0: जी देखिए, अभी जैसे कि हमारे शीर्षक में ही है कि ग्रीष्म ऋतु, तो सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, गन्ने की सूखी पत्तियां जो है नहीं जलाएं, मल्चिंग जो है अपनाएं, मल्चिंग नहीं आप कर सकते हैं तो उसको कंपोस्ट पिट में उसको आप डिकम्पोज करके अपनी पत्तियों से खाद बनाएं, जिससे आपको उर्वरक में या फर्टिलाइजर में आपको अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ मेरे पास सवाल भी है हमारे किसान भाइयों के, अगर आप चाहें तो उस पे भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: जी। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि मतलब एक बहुत ही अच्छे श्रोता ने हमें भेजा है, किसान भाई ने, कि गर्मी में गन्ने की सिंचाई कितने दिनों तक और कितने अंतराल पर हमें करनी चाहिए?
0: जी जैसे कि अभी हमने पीछे बता दिया है कि गन्ना होता है तो उसमें जितनी फसलें होती हैं, सबसे ज्यादा जल मांग अगर किसी फसल की है तो वो गन्ने की है, क्योंकि ये पूरी वार्षिक रहती है, पूरे वर्ष चलती है, इसमें कई सारी सिंचाइयां करनी पड़ती हैं।

0: अमूमता कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा, तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि तापमान ज़्यादा होने के कारण जलमांग बढ़ती है। जैसे ही हम जलमांग आती है तो वो कम दिनों के अंतराल पे ही हमको सिंचाई करनी पड़ती है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर अमूमता इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
1: जी, एक और किसान भाई का प्रश्न आया था कि क्या गन्ने की सूखी पत्तियां हमें जलानी चाहिए?
0: जी नहीं, अब ये सूखी पत्तियां हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं, इनको हम मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं, इनका हम जो है जैसे अभी कह सकते हैं कि डिकम्पोज करके हम लोग इसका जो है खाद बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो रोलर एक मशीन आती है उसमें रोल बना करके इनको हम लोग बेच करके अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक श्रोता और है हमारे जिन्होंने हमें प्रश्न किया है, डॉक्टर साहब की सर्वेक्षण में गलती होने पर क्या करें?
0: देखिए, अगर सर्वेक्षण जैसे कि अगर गन्ना सर्वेक्षण हुआ है, गन्ने की सर्वेक्षण के समय आप जो है अपनी स्लिप अवश्य लें। स्लिप में आप कोई भी गलती अगर पाते हैं तो तुरंत ही संबंधित कार्यालय या अधिकारी से संपर्क करें और उसको संशोधन करने के लिए आप अपील करें।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला, हमारे श्रोताओं को तमाम जानकारियां दी, पूरे विस्तार से आपने चर्चा करी। तो ये एक खास बातचीत खेती किसानी के माध्यम से आप सुन रहे थे, आप एक खास बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर विनय जी के साथ, और आज हमने तमाम विषयों पर चर्चा करी, जैसे हमने गन्ना सर्वेक्षण का महत्व जाना, किसानों की जिम्मेदारी पर हमने बात करी, गर्मियों में गन्ने की वैज्ञानिक देखभाल पर हमने चर्चा करी, सिंचाई ये क्या था सर, उर्वरक ओके, हमने श्रोताओं आज हमने चर्चा करी, साथ ही साथ सिंचाई, उर्वरक एवं कीट प्रतिबंधन के ऊपर हमने जो है तमाम चर्चा करी। और अभी मैं डॉक्टर साहब आपसे जाते जाते ये और पूछना चाहूंगा कि आप अगर कुछ और आपको लगता है कि किसान भाइयों को आपने बताना चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते?
0: देखिए, ये जो जानकारी जो भी आपको दी गई है, इसमें हमारा जो अभी जो मौसम चल रहा है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक रहन सहन के लिए है, चाहे हम हों, पशु पक्षी हों, हमारे जानवर हों या हमारी फसलें हों, क्योंकि ज्यादा तापमान में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता।
1: Correct.
0: तो दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, जब तक बरसात नहीं होगी ऐसा ही समय रहेगा, तो इसके लिए हमको अपना और अपनी फसलों का, अपने जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय पर जैसे फसलें हैं तो उनको समय पर पानी देना चाहिए, कोई कीट, कोई रोग या कोई अन्य व्याधि हमारे खेत में अगर हमको प्रदर्शित हो रही है तो उसका अतिशीघ्र हमको जो है उपचार करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया, और श्रोताओं हमें आशा है कि आपको ये जानकारियाँ बहुत उपयोगी लगी होंगी और आपके लिए सिद्ध भी होंगी। तो यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन से संपर्क कर सकते, हमारे व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, 9837896896 हमारे स्टूडियो का नंबर है जो आपके लिए अवेलेबल है, आप इस पे हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम जरूर डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। और मैं हूं आपका साथी आनंद, और अब आपसे लेता हूं अलविदा, अब आपको बोलूंगा टाटा बाय बाय, अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद सर, धन्यवाद,
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बाय बाय, टेक केयर,
2: बहुत बढ़िया।

0: BMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं अखिल और आज आया हूं हेलो फरमाइश लेके, क्योंकि आज हमारे साथ नहीं है रीना जी, आज वो हैं ब्रेक पे। तो हम आज उनकी जगह लेके आए हैं फरमाइश और आप लोगों के दिल की दास्तान। तो उठाइए अपना मोबाइल, कॉल करिए हमें 9837-896-896 पे और सुने अपनी फरमाइश का गाना। तब तक सुनते हैं छोटा सा गाना।

0: जुड़े हैं। चलिए करते हैं उनसे कुछ बात। नमस्कार, हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी। नमस्कार।
0: आपका नाम?
1: चंदन जी।
0: चंदन जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं शाम माली का काम करता हूँ।
0: और कहाँ से बोल रहे हैं इस समय?
1: ये मुरादाबाद जो है, काट रोड, झाजनपुर।
0: झाजनपुर से बोल रहे हैं।
1: जी जी जी।
0: और चंदन जी, इस समय कैसा मौसम हो रहा है?
1: मौसम तो इस समय बहुत अच्छा हो रहा।
0: मौसम अच्छा हो रहा है।
1: हाँ,
0: ऐसे मौसम में अगर आपको एक हाथ में हो ठंडा गिलास एकदम पानी का, और दूसरे हाथ में हो गरम गरम चाय एकदम अदरक वाली, तो क्या चीज लेना पसंद करेंगे आप?
1: अरे साहब, ठंडा ही पानी पसंद करते हैं ज्यादातर।
0: ठंडा पानी पसंद करेंगे?
1: वो भी हल्का
0: वो भी
1: हल्का ज्यादातर।
0: वो, सर आप पे तो चॉइस तो सर एकदम ठंडे पानी की है सर, हल्के पानी की नहीं है। या तो फिर आप ठंडा पानी पियो एकदम चिल वाला, या फिर बिल्कुल कोई चीज
1: ना
0: नहीं।
1: ना, ज्यादा हमसे पिया नहीं जाता, जुकाम हो जाते हैं।
0: चलिए साहब, ये तो रही मजाक।
1: पूरी गर्मी हो, हम नॉर्मल पानी, उसका मोटर चला के जब ठंडा पानी वैसा नहीं पिया जाता मेरा।
0: चलिए, तो क्या कौन सा गाना की फरमाइश है आपकी, और किस किस के लिए है, किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? किसी के लिए है?
1: सुना दीजिए। नदिया के पार का।
0: नदिया के पार का?
1: हाँ जी।
0: नदिया के पार का गाने, गाने के बोल बताइए। नदिया के पार तो मूवी है।
1: नदिया के पार का वो चल, कौन दिशा में लेके चला रही बकुरिया।
0: ओके ओके, चलिए आप ही की दिशा में आएंगे। किसी भी दिशा में जाएं तो आप ही की दिशा में आएंगे।
1: आइए साहब। अरे क्यों नहीं, अपने इधर ही है, रामगंगा बिहार के दोहरे घर, सीने
0: चलिए
1: के बराबर में। हाँ
0: क्या बात है, क्या बात है। तो चंदन जी, बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी, और हमें बहुत
1: जी।
0: अच्छा लगा आपने कॉल किया और अपनी फरमाइश हमारे सामने रखी।
1: नहीं साहब, लगाया तो बहुत दफे मैंने, एक दफे पहले मिला था, काफी दिन, 1-1.5 साल हो गया, और अब मिला मेरा कॉल।
0: ओके ओके, चलिए ठीक है चंदन जी। तो चलते हैं, आपकी फरमाइश का गाना सुनते हैं
1: ठीक
0: और
1: है ओके
0: मुलाकात
1: ओके
0: करते
1: साहब।
0: हैं। धन्यवाद जी।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: तो हमसे जुड़े थे चंदन जी, MDA से, अकबर के किले के पास से, और इन्होंने फरमाइश करी है कौन दिशा में, नदिया के प्यार मूवी के पार्स मूवी से। तो सुनते हैं एक बहुत बढ़िया सा नगमा, कौन दिशा में।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे मुरादाबाद एफएम, आपका ही अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और अब हमारे साथ जुड़े हैं एक नए श्रोता, चलिए करते हैं उनसे बात इस हेलो फरमाइश शो पे। हेलो फरमाइश।
1: हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है?
0: क्या बात है।
1: हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? खूबियां दुनिया से छुपाने की जरूरत क्या है?
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: खुशबू आती है अगर तेरे आशियाने से, तो फिर कपड़ों पर इत्र लगाने की जरूरत क्या है?
0: क्या बात कही साहब आपने। आपका शुभ नाम?
1: मकसूद हुसैन, जिला मुरादाबाद, ग्राम दीपुर से। नमस्कार सर।
0: नमस्कार साहब। मकसूद साहब, आपने तो ओपनिंग ही ऐसी कर दी इतनी अच्छी शायरी से कि बहुत बढ़िया दिन बना दिया आपने।
1: हाँ सर, दरअसल मैं जो है शेरवाजी से ही आता हूँ आकाशवाणी पर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको जब आते हैं इससे तो आप वहाँ पे ऐसा क्या करते हैं?
1: शेर है मेरे पास कुछ दिमाग में जो मेरे बनाए हुए हैं, मैं उन्हें जो है कभी कभी यूज कर देता हूँ सर, जो ताजा भी हो जाते हैं, भूल ना जाऊँ।
0: और वैसे क्या काम करते हैं आप?
1: खेतीवाड़ी काम होता है मेरे यहाँ।
0: आपकी तरफ कैसा है इस समय मौसम?
1: मौसम सर उमस भरी गर्मी पड़ रही है, काफी गर्मी है। दो बार नहा लिया, नहा के आया अभी तो सलामत रहे दोस्ताना हमारा, ये चल गया था।
0: अच्छा
1: हाँ, तो मन किया भाई चलो अखिल भाई आए हुए हैं तो जरा इनसे बात कर लें।
0: चलिए चलिए, आप कौन सी फरमाइश लेके आए हैं हमारे पास?
1: एक पारस मूवी में है लता जी का और मुकेश जी का, बहुत ही प्यारा गीत है, तेरे होठों पे दो फूल प्यारे प्यारे।
0: क्या बात है क्या बात है।
1: और सुनने वाले डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, रजा हुसैन है, हाजी गफ्फार खान साहब है रामपुर के, और मोहम्मद इशरत, मुकेश भाई, मेहराज भाई, इरशाद भाई, और साथ में आपके है और सभी आकाशवाणी की,
0: सभी को हमारा सलाम कहिएगा। और बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े, चलिए आपकी करते हैं इस फरमाइश को पूरी। सभी को हमारा सलाम कहिएगा। और बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े, चलिए आपकी करते हैं इस फरमाइश को पूरी।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद साहब। तो साहब इतनी गर्मी में भी हमसे जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि इस समय उमस बहुत है, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही, समय उमस है। तो चलिए इस उमस को दूर करते हैं इनके इस पसंदीदा ट्रैक को सुन के, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश जी ने।

0: जी हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। फिल्माया गया था संजीव कुमार जी पे और राखी जी पे, और गाना गाया है लता मंगेशकर और मुकेश जी ने। तो मतलब इतना अच्छा फिल्माया गया है ये गाना कि अभी मैं संजीव कुमार जी के बारे में मेरे को एकदम अचानक ख्याल आया, ये संजीव कुमार जी वही हैं, अगर आपको ध्यान हो, शोले मूवी में जो बने थे ठाकुर ठाकुर। तो ठाकुर तो ऐसा इन्होंने करेक्टर प्ले किया, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने शो। तो चलिए अब हम जुड़ते हैं अपने नए श्रोता से और सुनते हैं उनके दिल की फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, बढ़िया।
0: कहाँ से बोल रहे हैं इस समय?
1: रुद्रपुर से बोल
0: रहा हूँ। रुद्रपुर से बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो क्या सुनना चाहते हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: हमारी फरमाइश है गीत के बोल हैं दिल दीवाने का डोला दिलदार के।
0: क्या बात है, फरमाइश तो बहुत अच्छी है आपकी। और काम क्या करते हैं आप साहब?
1: सर हमारे पास हम डेयरी का काम करते हैं, गाय हैं और बकरियां भी हैं, मुर्गियां भी हैं और खेती बाड़ी भी है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप?
1: इस चीज के बारे में बोलूंगा, बताइए।
0: नहीं, कोई भी कोई अगर कोई अगर आप भी शायरी कुछ करते हैं या कुछ ऐसा?
1: नहीं सर, वो सब चीज मैं नहीं कर पाता हूँ।
0: चलिए, आप बहुत ही सिंपल लिविंग में विश्वास रखते हैं आप।
1: हाँ।
0: तो बहुत ही
1: कोई ऐसा चीज हो तो हम बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। बीमारी के बारे में गाय हुई के फायदे के
0: तो बताइए, कुछ कोई ऐसी कोई बात बताइए जो श्रोताओं को पता होनी चाहिए, और गाय के बारे में या जो आप जो व्यापार करते हैं उससे संबंधित कोई आप बात कहना चाहें तो। इतनी आप गौशाला चलाते हैं, इतनी गाय हैं, तो उसका इस समय गर्मी में कैसे उनका रखरखाव होता है, कैसे आप उनके लिए?
1: हाँ जी, गर्मी में छायादार जगह गाय को बांधना चाहिए और हवा का आना जाना लगा होना चाहिए उसमें, मतलब खुला होना चाहिए इसमें उनका बाड़ा।
0: ओके, हाँ जी।
1: और गाय को अगर नहलाना है तो सुबह को नहलाया जाए या फिर शाम को नहलाया जाए, दोपहर को बिल्कुल ना नहलाया जाए।
0: ओके, ऐसा क्यों?
1: और सर दोपहर को नहलाते ना तो गर्मी होती है, वो गाय ठंडा हो जाएगा, बीमार हो जाएगी वो।
0: अच्छा, सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात बताइए।
1: और गाय का दूध निकालने के बाद कम से कम आधे घंटे गाय को खुला रखना चाहिए किसी बहाने से।
0: अच्छा,
1: अगर गाय बैठ जाती है तो उसको सुनला हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: जो कि हम किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक बीमारी होता है, वो उससे दूध खत्म हो जाता है।
0: ओके,
1: और उसका इलाज बहुत महंगा पड़ जाता है, महंगा इलाज कराने के बाद भी कान में दूध आना बंद हो जाता है।
0: तो आपके कहने का मतलब है कि जब भी आप गाय का दूध निकाल लें तो उसके आधा घंटे तक उसे कम से कम खड़े ही रहने दें, किसी ना किसी बहाने उसे खड़ा रखें। या तो कोई चारा उस समय कोई चारा दे दें गाय दूध आने के बाद, तो शायद गाय चारा भी खाना वो करे।
1: चारा दे दें, दाना दे दें, मतलब चारा थोड़ा आसान रहेगा।
0: हाँ, कम से कम आधा पौन घंटा उसे इस तरीके से करें, एकदम आराम ना फरमाए। चलिए, तो बहुत ही अच्छी आपने एक इन्फॉर्मेशन साझा करी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमसे कांटेक्ट किया, हमने आपने अपनी फरमाइश हमें बताई, और आप भी एक लिसनर हैं रेडियो के।
1: सर हम तो बराबर फोन करते रहते हैं, आप हमारी पहली बार बात होती है, बाकी हमारी बात तो खुशी जी से होती रहती है।
0: हाँ, आपकी बात खुशी जी से होती रहती है। आज खुशी जी, आज के दिन खुशी नहीं रहती, रीना जी करती हैं प्रोग्राम खुशी जी की जगह, तो आज हाँ, तो आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं उन दोनों की एब्सेंस में इस प्रोग्राम को आज शो करूं।
1: सर बढ़िया तो है, कल से मेरी बहन यार से हमारी बात तो हो गई।
0: हाँ जी उमाशंकर जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा गाना सुना है। और चलिए आपकी करते हैं फरमाइश, प्ले करते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप उमाशंकर जी, कुछ कहना तो नहीं चाह रहे थे?
1: सर
0: कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप अभी?
1: नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि कम से कम इसी बहाने हमारी आपसे बात तो हो गई।
0: हाँ जी,
1: और कुछ न कुछ नए लोगों से बातचीत होने से नई जानकारी मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा, मैं शाम को शो आता है 9 से 10 दिल से दिल तक अखिल के संग, तो कभी हो तो उस पर भी जुड़ेंगे आपसे।
1: नहीं नहीं, 9 बजे वाले का मुझे पता नहीं था।
0: हाँ जी,
1: तो हेलीकॉप्टर से आपसे बात हुई तो जानकारी। सर इसमें क्या होता है 9 बजे वाले में?
0: इसमें आपको अपने कोई दिल की बात बतानी होती है।

0: अच्छा अच्छा
1: तो करिए, उसमें भी जुड़ेंगे आपसे। और चल दिए, तब तक सुनते हैं आपका ये फरमाइश वाला गाना।
0: अरे सर, सर हम तो मतलब रेडियो सुनते हैं 1 बजे तक, लेकिन हमको पता नहीं था इस बारे में कि हम तो बस सुबह 9 बजे जुड़ जाते हैं और फिर इधर जुड़ते हैं 12 बजे तक।
1: हाँ जी,
0: जुड़ते हैं 3 बजे से निशा क्रम में। अब 9 बजे वाले का मुझे पता नहीं था, अब आपसे इनसे बातचीत हो गई तो हम 9 बजे वाले में आज होगा कोई सब प्रोग्राम।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: हाँ, तो ठीक हो गया। हम आप
1: ठीक ठीक है उमाशंकर जी, करते हैं मुलाकात।
0: ठीक है, नमस्ते,
1: धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उमाशंकर जी, रुद्रपुर से जुड़े हुए, और इतनी दूर से इन्होंने फरमाइश भेजी है अपनी। तो चलिए लेते हैं इनकी फरमाइश का भी आनंद।

0: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
2: TNC अप्लाई।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

0: हाँ जी, तो वेलकम बैक है 89.6 मेगाहर्ट्ज पे मुरादाबाद एफएम पे आपका अपने शो हेलो फरमाइश में। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं दीपक जी गजौला से। हेलो फरमाइश, कैसे हैं दीपक जी?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और सुनाइए भाई।
0: बस बढ़िया है दीपक जी, आप क्या कार करते हैं गजौला में?
1: मैं भाई करता हूँ, रियल इस्टेट में वर्क करता हूँ।
0: अच्छा, आप रियल इस्टेट में वर्क करते हैं। जैसे आजकल का समय जो ऐसा चल रहा है कि रियल इस्टेट और सब जगह इतना महंगाई चल रही है, सब चल रही है, तो आप कौन से रियल इस्टेट में, कहाँ, कैसे, वहीं गजौला के या आसपास के कहीं?
1: मैं रियल इस्टेट कर रहा हूँ, एक स्मार्ट सिटी बन रही है गुजरात के अंदर, ढोलेरा स्मार्ट सिटी। अपने देश का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, जो चाइना की तरह, जैसे चाइना में एक शहर है संघाई की तरह, इसको हमारा देश के गवर्नमेंट बना रही है, इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में पूरा बहुत बड़े लेवल पे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हाँ, ये तो पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है अपने देश का।
0: कहाँ पर है ये, कहाँ पे स्मार्ट, कहाँ पे बन रही है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी?
1: ये ढोलेरा गुजरात,
0: ढोलेरा गुजरात में।
1: हाँ,
0: तो ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो
1: किलोमीटर पड़ता है।
0: हाँ जी, हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा रहा। तो और दीपक जी, बाकी इसके अलावा और क्या पसंद है आपको, क्या सुनना चाहते हैं आप गाने में?
1: बस जो आपको पसंद है वही सुन लेंगे आज।
0: चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमसे संपर्क किया, और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आपने बताया भी हमारे सारे लिसनर्स को, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो बहुत ही अच्छा लगा, धुलेरा प्रोजेक्ट के बारे में। और चलिए, हम अपनी फरमाइश का एक गाना प्ले करते हैं आपके लिए भी।
1: जी, थैंक यू,
0: धन्यवाद दीपक जी। तो ये थे हमारे साथ दीपक जी, जो जुड़े हुए थे गजौला से, और किसी प्रॉपर्टी उसमें करते हैं, सारा देखते हैं वहाँ पे काम, और धुलेरा प्रोजेक्ट, एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने हमें डिस्कस किया, और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई एक गाना प्ले कर दीजिए। तो हमारे पास अभी एक मैसेज भी आया था, इटली से आया था, हमारे एक प्रशंसक हैं जो इटली में हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं वहाँ पे भी, एग्रीकल्चर का काम करते हैं वो, आसिफ जी। तो उनकी भी एक फरमाइश थी कि अखिल जी एक गाना हमारी तरफ से भी प्ले कर दीजिएगा हमारे श्रोताओं के लिए। तो हमने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, आपके लिए भी प्ले करते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, जो उनकी भी फरमाइश है और हमारी भी फरमाइश है।

0: खेल मूवी से खत लिखा है तुम्हें, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये गाने के बोल थे। जावेद अख्तर साहब ने ये गाना लिखा था और अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया था। संगीतकार थे लता मंगेशकर जी और मोहम्मद अजीज़ जी, और जो डायरेक्टर थे, म्यूज़िक डायरेक्टर, वो थे राजेश रोशन जी। तो जब भी राजेश रोशन नाम आपको और साथ में याद आता होगा, हमेशा राकेश रोशन जी, दोनों भाई हैं, और राकेश रोशन जी जो ऋतिक रोशन जी के फादर भी हैं, वो इस मूवी के डायरेक्टर थे। तो अभी चलिए जुड़ते हैं, हमारे साथ एक नए कॉलर हैं और देखते हैं कहाँ से जुड़े हैं वो हमारे साथ। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप सर? क्या करते हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए हमारे लिसनर्स को।
1: पाकबाड़ा मुरादाबाद से बोल रहे हैं सर।
0: पाकबाड़ा मुरादाबाद से बोल रहे हैं
1: जी।
0: कैसा है इस समय वहाँ पे, थोड़ा सा मौसम बादल वादल है या नहीं?
1: नहीं, बादल वादल नहीं है, धूप काफी तेज है, थोड़ा कल रात मिली थी, गर्मी बतेरी है अभी।
0: इस समय गर्मी है
1: जी।
0: तो इस समय गर्मी में आप क्या काम कर रहे हैं?
1: फिलहाल तो लेट हुए हैं।
0: फिलहाल तो लेटे हुए हैं
1: जी।
0: पंखा चला के, कूलर चला के?
1: पंखा चल रहा
0: है सर। सही है अखिल साहब, बहुत बढ़िया। तो कौन से गाने की फरमाइश है आपकी?
1: साजन फिल्म के सामने चल रहे हैं सर।
0: कौन सी फिल्म का? साजन फिल्म का
1: जी।
0: शादी हो गई आपकी?
1: शादी हो गई, करवा दी 7 साल हो गई
0: सर। कितने साल
1: शादी के साथ में करवा दी थी
0: सर? सर ये तो दोनों एक दूसरे के प्राय हैं, ये तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाता है इंसान। कोई नहीं सर, आपकी एक फरमाइश तो पूरी हो ही गई है। आपको कितने साल हो गए शादी के?
1: 16 साल
0: जी। और कितने हैं? 16 हैं? हाँ।
1: तीन बच्चे हैं।
0: चलिए बहुत बढ़िया आदिल साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, सबसे बड़ी बात ये है। चलिए हम आपकी फिल्म साजन मूवी से कौन सा गाना आपने बताया? ठीक है सर, आप आराम से आराम फरमाते हुए इस गाने का आनंद लें, और बहुत ही अच्छा लगा हमें आपने आपने हमसे संपर्क किया।
1: ठीक है सर,
0: धन्यवाद अखिल साहब। तो ये थे पाकबाड़ा से अखिल साहब हमारे साथ जुड़े हुए, और इनकी फरमाइश है तू शायर है मैं तेरी शायरी। तो ज़रूर आराम फरमाते हुए इनकी ये फरमाइश को ही पूरा करते हैं।

0: तो ये था तू शायर है मैं तेरी आयश शायरी, फिल्माया गया था माधुरी दीक्षित के ऊपर और साजन मूवी से गाना था, अलका याग्निक जी ने गाया था, बहुत ही अच्छा फिल्माया गया था ये गाना। और अब हमारे साथ जुड़े एक नए लिसनर, चलिए करते हैं उनसे भी कुछ बात, उनकी भी सुनते हैं फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, आप क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं इस समय, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: चाकुलिया जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल से गणेश जी।
0: गणेश जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप बताएं आप कैसे?
0: बस बढ़िया साहब, और उधर कैसा है मौसम पश्चिम बंगाल में?
1: मौसम तो सर गर्मी का है और ज्यादा ही गर्मी है क्योंकि धान लगाने की तैयारियाँ हो रही है अभी।
0: अच्छा, और आप इसका मतलब किसानी से जुड़े हैं आप भी?
1: जी मैं एक किसान हूँ कहा जाए सर, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल जो है मतलब मक्का और धान करके कट चुके हैं, तो बस धान लगाने की तैयारियाँ हो रहा है। तो हम जैसे बारिश अगर हो तो बहुत जल्दी खेती बाड़ी होता नहीं, तो फिर अपना जो पंपेशन मशीन होता है उससे मतलब खेती करना पड़ता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गणेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे मैं श्रोताओं के लिए, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शायरी या कोई कोई भी ऐसी संबंधित जानकारी जो आप देना चाहें?
1: नहीं जानकारी तो बहुत है या ना, ये तो जैसे शेर होता है जैसे मैं तो शौकीन नहीं हूँ।
0: अच्छा,
1: तो बस सैंपल सी बात होंगे, बस अपना मेरे पसंद का गाना सुना दीजिए।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हम दिल तो पागल है गाने का बोले, मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी चुप चुप कर प्यारी की पहली नजर है।
0: ले गई ले गई दिल ले गई ले गई, ये तो बिल्कुल मतलब आज आपने गाना गा ही दिया। देखो आप कह रहे हो कि आप शायर, आपको शायरी नहीं आती, कुछ नहीं करना आता, और आप इतना अच्छा गाना भी गा लेते हैं।
1: नहीं
0: कभी कभी कभी ये कभी कभी आपका खतरनाक वाला है, कभी कभी इतना अच्छा गा लिया आपने।
1: गाना वही ऐसा चीज है जो मतलब आपने आपको थोड़ा अगर कोई मन पसंद गाना गुनगुनाते ना तो मन खुश हो जाता है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही, ये संगीत एक ऐसे ही एक ऐसी चीज है जिससे अगर लगाव हो जाता है ना तो कई सारे दर्द भुला देती है।
1: अब देखिए लगाव अगर भारत में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अभी रेडियो अभी सुनते हैं, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो देखने को नहीं मिल रहा है, सुनने को नहीं मिल रहा सर।
0: हाँ ये तो है,
1: लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो रेडियो सुनते हैं, अभी जो मोबाइल में रेडियो आ गया तो बहुत सुविधा हो चुका है सर।
0: हाँ सर, ये बहुत अच्छा हुआ है जब तक जब से डिजिटल हुआ है, और मोबाइल में भी आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो बताइए आपने हमारे मोबाइल में कैसे ऐप डाउनलोड करी, श्रोताओं को भी बताइए आज आपने कैसे किया था ये।
1: हाँ जैसे कि मोबाइल ऐप में जाके रेडियो जैसे कि मुरादाबाद लिखी आ जाएंगे, बस सिंपल सी बात है।
0: बिल्कुल सही कहा, आप प्ले स्टोर पे जाइए, मुरादाबाद FM 89.6 टाइप कीजिए और आपके पास एक ऐप आ जाएगी रेड कलर में, उसे जरूर डाउनलोड करें। और बिल्कुल गणेश जी की तरह, जैसे गणेश जी हमसे जुड़े हैं, हमारा FM सुनते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी हमसे जुड़ जाएंगे और अपनी फरमाइश का गाना हमारे साथ यहाँ प्ले करवा सकते हैं। धन्यवाद गणेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। तो ये थे हमारे साथ गणेश जी पश्चिम बंगाल से, और इस समय किसानी करते हैं और खेती बाड़ी में थे व्यस्त। थोड़ा सा अगर हमें हमारी पसंद का गाना सुनने को मिल जाए तो हम और भी खुश हो जाएंगे। तो आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, और एक किसान की खुशी में हर भारतीय की खुशी रहती है। तो चलिए ये गाना रहा गोपाल जी के नाम, उनकी फरमाइश पे।

0: 40 मिनट हो गया, पढ़ेंगे दो मिनट बाद उसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढोगे प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया। श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
2: नहीं मिला।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
7: चावला टायर्स और योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
8: 22 सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
7: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: TNC अप्लाई।

0: मुन्ना भाई MBBS का ये टाइटल ट्रैक था और बहुत ही शानदार ट्रैक, जिसे कहते हैं ना कि मुन्ना भाई चलो क्या देखते हैं भाई साहब, मरीज को एक बार देख लो, अगर मुन्ना भाई अपने सेल से देख लें तो मरीज एकदम झटपट सही हो जाता था। तो अब जुड़ते हैं अपने नए श्रोता के साथ और पूछते हैं कि वो कहाँ पर हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश
0: सर, कैसे हैं आप, कहां पर हैं और क्या नाम है आपका?
1: जी मोहम्मद रिजवान।
0: मोहम्मद रिजवान जी, कहां से बोल रहे हैं आप? मुरादाबाद में।
1: सिरसमा दुराया।
0: और इस समय कैसा है मौसम, क्या काम कर रहे हैं आप?
1: बहुत गर्मी है, काम कर रहे हैं चिनाई का।
0: तो गर्मी से तो आपको साहब लड़ना पड़ेगा।
1: हाँ लड़ना ही पड़ रहा है।
0: तो क्या फरमाइश है आपकी इस गर्मी में?
1: गर्मी में फरमाइश है दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ।
0: दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। किस किस के लिए गाना गाना चाहते हैं दोस्ती का आप?
1: एक पार्टनर हैगा साथ में, उसने फरमाइश करी है कि मुझे गाना सुनवाओ ये।
0: तो आपने उसकी आज फरमाइश पूरी कर दी?
1: हाँ उसकी फरमाइश पूरी करी है, मारूफ भाई है ये।
0: अच्छा अच्छा, तो अब आप मारूफ भाई से आपकी, अब आपकी भी कोई फरमाइश है जो मारूफ भाई पूरी करेंगे?
1: अब मारूफ भाई मुझे रोटी लाके पिलाएंगे, ठंडा करेंगे।
0: चलिए सही है फारूक भाई, आपकी ये फरमाइश को पूरा करते हैं। आपने मारूफ भाई के लिए इतना अच्छा गाना प्ले करा है, तो चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश।
1: ठीक है
0: सर। ओके जी। तो इतनी गर्मी में काम में अपने व्यस्त हैं फारूक साहब, और इन्होंने अपने एक दोस्त के लिए ये गाना डेडिकेट किया है, दोस्ती के गीत में गाता हूँ। चलिए सुनते हैं ये वाले गाने और करते हैं इनकी फरमाइश का एंजॉय।

0: तो अभी आप सुन रहे थे दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुम्हें बुलाता हूँ। ये फिल्माया गया था गाना ऋषि कपूर जी और मंदाकिनी जी के साथ, और फिल्म का नाम था शेषनाग। जो गायक हैं वो हैं मोहम्मद अजीज साहब, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे इसके वो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और जो ये अल्फाज लिखे गए हैं, लिरिक्स जो हैं वो हैं आनंद बख्शी द्वारा लिखी गई हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक नए हमारे लिसनर, चलिए उनसे भी करते हैं, उनकी भी कुछ दिल की बात, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। हेलो हेलो, फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार ईश्वर जी, कैसे हैं आप?
1: सर बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है और भी अच्छे हो जाते हैं सर। आप इतना प्रोग्राम काफी अच्छा पेश करते हो, पसंद आता है सर काफी।
0: और इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: सर मैं इस टाइम बैठा हुआ था, गर्मी काफी हो रही है, साथ में हवा भी चल रही है और प्रोग्राम सुन रहा था, कॉल लगा रहा था।
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप, कौन सी फरमाइश है आपकी?
1: सर मैं आज गाना सुनूंगा, मूवी का नाम है कल की आवाज, और सर में बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद। सर आज की फरमाइश में ये वाला सॉन्ग प्ले कर देना। और सर मौसम कैसा मुरादाबाद का?
0: मौसम भी नहीं नहीं मौसम भी ऐसी है जैसे आपकी तरफ है, इस समय गर्मी वाला मौसम है।
1: सर परसों रात बारिश हुई थी, अब तो फिलहाल गर्म मौसम है।
0: हाँ सर, और किसे डेडिकेट करना चाहेंगे ईश्वर जी ये गाना?
1: सर ये वाला गाना मैं आपको डेडिकेट, और मेरे स्वार से हैं विजय राठौर और मकसूद भाई हैं साथ में आप और हम।
0: ठीक है सर, तो चलिए आपकी फरमाइश का एक गाना प्ले करते हैं, सबसे हम दूर हुए।
1: थैंक यू, नमस्कार सर।
0: तो नमस्कार ईश्वर जी। तो ये जुड़े थे हमारे साथ ईश्वर जी रामपुर से, और इनकी फरमाइश है सबसे हम दूर हुए फिल्म कल की आवाज़ से।

0: जी हाँ, तो आप गाना सुन रहे थे फूलों सा चेहरा तेरा। मूवी का नाम है अनारी और गाना जो गाया है वो गाया है उदित नारायण जी ने। तो चलते हैं अपने नए लिसनर के साथ और सुनते हैं उनकी भी फरमाइश, क्या कहते हैं वो। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप
1: जी? सर मुझे, मैं शेख जफर हसन क्वाट जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं शेख साहब आप?
1: अच्छे हैं, मजे में हैं।
0: और इस समय वहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो तड़क चमक रहा, दरज रहा और इम्कान तो अब ही है, घेरा है पूरा आसमान। उम्मीद है कि आपको बारिश होनी चाहिए।
0: तो क्या फरमाइश लेके आए हैं आप ऐसे मौसम में?
1: तो मौसम में तो तबीयत खुश है। देखिए, हमारे एक दोस्त थे आपके, कुछ ही किलोमीटर पर है मुरादाबाद से, बीबीपुर।
0: हाँ जी,
1: बीबीपुर मुरादाबाद के मकसूद हुसैन, उन्होंने अभी आधा घंटा पहले कहा कि अगर फोन लग जाए तो दिल को हरा कर देने वाला शेर सुना दीजिएगा।
0: तो अब तो फोन लग गया आपका, अब तो आपको
1: दिल को हरा कर देने वाला प्रोग्राम बोलते सुन रहे हैं। तो मैं सुना देता हूँ दोस्त हमारे।
0: सुनाइए।
1: मिलाते हो उसी को खाक में, क्या दिल से मिलता है। मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है। मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इतना बढ़िया,
1: उसी से मिलता जुलता है। गाँव से सुन लीजिए।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: ये ठीक है, नहीं मरता कोई जुदाई में।
0: क्या बात है।
1: ये ठीक है, नहीं मरता कोई जुदाई में। खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने अपनी शायरी से अपने दिल की बात ही बोल दी आज आपने।
1: हाँ, कितना अच्छा बोल रहे हैं, वाकई आप उद्घोषक है।
0: क्या सुनना चाहते हैं आप? आप क्या सुनना चाहते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं शेख साहब, आपने तो वैसे भी बिहार से कॉल लगा रखी है, तो बिहार तो हमारा बिल्कुल पड़ोसी।
1: फिल्म फिल्म का नाम है आओ प्यार करें। इस गीत गाया था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने। बोले तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो।
0: क्या बात है।
1: आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं। लिपट बैठा तो फिर क्या होगा।
0: बहुत ही आपने अच्छा, बहुत ही अच्छा है उसमें गाया है और बहुत अच्छा था। चलिए आपकी ये फरमाइश सुनते हैं। और ऐसे भी नगमे हैं हमारे पास, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे भी नगमे हमें आपके बहाने सुनने को मिल जाते हैं।
1: जी जी, अनवर बिहारी और कजारा जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर कुमार।
0: पक्का पक्का पक्का, धन्यवाद साहब, शेख साहब धन्यवाद हमसे जुड़ने के। तो ये थे हमारे साथ शेख साहब, जो तुम अकेले तो बाग में जाया ना करो कि इन्होंने फरमाइश करी है। और मैं इससे एकदम सुनते सुनते मुझे एक और गाना याद आ गया कि एक अजय देवगन जी का गाना था, अकेली ना बाजार जाया करो। तो वो एक सिनेरियो उधर था और एक सिनेरियो देखिए आज के उसमें भी था कि ये गाना भी इस तरीके से था। तो चलिए सुनते हैं पहले शेख साहब की फरमाइश और उसके बाद करते हैं कुछ और गुंजाइश।

0: तो अभी आप सुन रहे थे तुम अकेले कभी ना बाग में जाया करो, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। और अब हमारे साथ जुड़े हैं एक नए श्रोता हेलो फरमाइश में, तो देखते हैं वो अपने बाग से कौन सा गाना बताना चाह रहे हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, कैसे हैं सर?
1: लक्ष्य में आप बताइए सर।
0: बढ़िया, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और इस समय क्या काम करते हैं आप, ये दोनों बताइए हमारे सर्विस में।
1: साहिल बोल रहा हूँ मुरादाबाद से।
0: साहिल जी मुरादाबाद से? तो साहिल जी आप
1: मुरादाबाद में ही जॉब करता हूँ सर। मैं
0: आप मुरादाबाद में ही जॉब करते हैं
1: जी?
0: तो बहुत बढ़िया है। और वैसे आप कहाँ रहते हैं, किधर है मुरादाबाद में?
1: सर मैं कोहिनूर तिराहा करूले पे रहता हूँ सर।
0: कोहिनूर तिराहा करूले पे
1: जी।
0: तो क्या फरमाइश है आपकी
1: सर? मूवी रहेगी इंसाफ द जस्टिस।
0: इंसाफ,
1: तुझे प्यार इतना किए जा रहे हैं, हर पल तेरा नाम किए जा रहे हैं।
0: क्या बात है, आपको कभी इंसाफ मिला है? अरे कैसा भी, कोई सा भी इंसाफ हो, जैसे गर्मी में ठंडे पानी की बोतल मिल जाए तो वो भी एक इंसाफ ही है।
1: ये तो हम तो यहाँ पे सर बहुत अच्छे से ठंडा पानी मिल जाए यहाँ पे कंपनी में, बस जाने की देर है और यहाँ पे बस बोतल लगाते और बस ठंडा पानी निकल जाता, बस उसको पी के इतना चैन इतना सुकून मिलता बहुत ज्यादा सर।
0: तो आपको इसका मतलब इंसाफ बराबर मिल रहा है
1: जी सर, ये वाला तो सर अच्छे से मिल जाए।
0: ठीक है साहिल साहब, चलिए आपकी ये फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनते हैं। ये मैं बढ़िया हूँ साहिल साहब, आप बताइए, आप सब बढ़िया, खैरियत है, घर में सब सही है?
1: जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है सर।
0: चलिए साहब, तो बहुत ही अच्छा लगा साहिल जी आज आप हमसे जुड़े, आप रेडियो सुनते भी हैं और आपकी इतनी।
1: जी मैं सर सुनता हूँ सर, और आप पे मेरी पहली बार ही बात हो रही है, और लोगों से तो होती रहती सर लेकिन आपसे पहली बार हो रही मेरी बात।
0: तो आज हमारी भी आपसे पहली बार ही हो रही है बात।
1: आपको मैं सुनता हूँ प्रोग्राम में, लेकिन पहले कभी बात नहीं हुई थी मेरी।
0: चलिए चलिए, ये तो आपने अच्छी बात कही, और आप मेरे को शाम
1: सर पहली बार मेरी बात हो गई,
0: और शाम को भी आप मुझसे सुन सकते हैं दिल से दिल तक, क्या एक शो होता है हमारा 9 बजे से 9 से 10।
1: सर वो तो हेलो मुरादाबाद चलता है।
0: हाँ सर, अब वो दिल से दिल तक है, दिल से दिल तक अखिल के संग।
1: अच्छा,
0: तो सुनेंगे वो भी, सुने उसमें भी आपको सुनेंगे एक दिन।
1: सर एक मोन से ज्यादा हो गया, उसमें बोलने लगाई थी तो उसको मैंने सुना नहीं था, तो इसलिए मैंने आपसे बोला हेलो मुरादाबाद आता।
0: हाँ जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अब आपकी फरमाइश का गाना सुनते हैं इंसाफ द जस्टिस मूवी से। धन्यवाद साहिल साहब। तो ये थे हमारे साथ साहिल साहब जुड़े हुए कोहिनूर तिराहे से, और इनकी पसंदीदा फरमाइश थी तुझे प्यार कितना किए जा रहा हूँ। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं इनका एक फरमाइश भरा सॉन्ग, तुझे प्यार कितना किए जा रहा हूँ।

तुझे प्यार इतना किए जा रहा हूँ, ये फरमाइश थी, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जी ने गाया है। मूवी का नाम था इंसाफ द जस्टिस। तो साहिल साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपके साथ चीज़ हुआ होगा। और अभी हम जुड़ते हैं अपने नए कॉलर के साथ। हमारे साथ एक कॉलर अभी जुड़े थे जिनका नाम आसिफ था और वो एक उर्दू के टीचर थे। उन्होंने अपनी एक फरमाइश हमें बताई थी, तो चलिए उनका भी एक बार फरमाइश वाला गाना प्ले कर देते हैं। बाय चांस अभी वो हमारे साथ, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, मगर उनकी फरमाइश हमारे पास है, तो क्यों नहीं, मेरे भैया मेरे चंदा, काजल मूवी से गाने की उन्होंने फरमाइश की थी, और चलिए सुनते हैं इस गाने को।

0: मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, ये काजल मूवी से गाना भी आप सुन रहे थे। और इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर, इस गाने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो थे रवि जी। सिंगर जो थी वो हैं आशा भोसले जी, और जो इसके मूवी के डायरेक्टर थे वो थे राम महेश्वरी जी। तो बहुत ही अच्छा गाना, और बहुत कहते हैं कि एकदम भाई को डेडिकेट करते हुए कि मेरे भाई मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। तो ऐसे गाने सुनने से अपने आपको भी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको अपने भैया चंदा जैसे भैया याद आ गए होंगे। अभी हमारे साथ एक नए श्रोता जुड़े हैं, उनसे भी हम जरा बात करते हैं क्या कह रहे हैं। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप ठीक हैं सर?
0: बढ़िया सर, बढ़िया। और क्या करते हैं दीपक जी आप?
1: जी हम बच्चे से काम करते हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: से बोल रहा
0: हूँ
1: सर।
0: कैसा इस समय मौसम है?
1: मौसम तो थोड़ी कल बारिश पड़ी थी, आज तो थोड़े बादल हैं।
0: आज थोड़े बादल हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद जगी होगी फिर से कि कहीं ना कहीं कुछ तो बरसेंगे ये।
1: हाँ उम्मीद तो जगी थी, अब काम से थोड़ा, अब यहाँ पे छुट्टी होने वाली थी, थोड़ी बारिश ज्यादा पड़ जाती तो हो जाती छुट्टी, छुट्टी नहीं होगी।
0: तो आप मुरादाबाद आते रहते होंगे?
1: हम भी आते हैं, पापा जी आते हैं, पापा जी रेडियो खरीद के लाते हैं बुद्ध बाजार से, सेकंड हैंड रेडियो।
0: सेकंड हैंड रेडियो खरीद के लेके आते हैं। अभी आप कैसे एफएम को सुनते हैं?
1: जैसे सर हम काम करते हैं तो एफएम पे डाउनलोड कर लिया, वो डेस्क पे लगा के हम वहाँ पे लगा देते हैं, डेस्क पे सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, आपने अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी। कैसे करी थी आपने, हमारे श्रोताओं को ही बताइए, आज आपने दीपक जी ने एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करी थी?
1: एक वो प्ले स्टोर पे जाना पड़ता है, उस पर एफएम मुरादाबाद बोल तो लाल कलर का ऐप आता है, एक उसे डाउनलोड कर लेते हैं।
0: क्या बात है, देखिए श्रोताएं सभी आप सुन रहे हैं कि दीपक जी ने भी किस तरीके से प्ले स्टोर पे जाके हमारी इस मुरादाबाद एफएम 89.6 को डाउनलोड किया है। तो उसी ठीक प्रकार अगर आप गाड़ी में भी सुन रहे हैं, तो गाड़ी में सुनने के बाद भी अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के सिंपल से प्ले स्टोर पे, चाहे आपके पास आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, अपने आप प्ले स्टोर पे जाएं और इसे हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और बताइए दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे अभी?
1: हाँ जी, मैं कह रहा था जैसा घर पे आ जाते हैं तो पापा के पास कम से कम 36 रेडियो हैं, तो एक ना एक बजाते रहते हैं घर पे,
0: तो घर पे कुछ ना कुछ बजता ही रहता है। मगर इसका मज़ा कुछ और ही है दीपक जी, जब घर पे चारपाई पे लेटे हो आप और बगल में आपके रेडियो रखा हो तो और उस पे आवाज,
1: यानी रेडियो को चालू करके जब नींद आती है उनको वैसे नींद ही नहीं आती है जब तक।
0: ये बात आपकी, इस बात से ना मुझे भी अपनी एक बचपन की बातें याद आ गई। मैं जब अपने बचपन में अपने गांव में दादाजी के पास जाता था तो वहाँ पे मेरे दादाजी को भी ऐसे ही एक रेडियो था उनके पास पुराना, एक बहुत बढ़िया सिल्वर कलर में, और वो अपने जब भी सोने से पहले अपनी चारपाई के पास मच्छरदानी, मतलब दो चीज़ें उनकी ज़रूरत थी, एक तो मच्छरदानी लगा होना और एक थोड़ी सी दूर पे टेबल पे रेडियो लगा होना जिस पे रेडियो पे गाने आते थे उस समय, और वो गाने सुनते थे। और मुझे भी वहाँ से एक तरीके से हल्का सा शौक लगा कि मैं गाने सुनने का, बहुत ही अच्छा लगा। और हमें तो आज भी ऐसे घर हैं जहाँ पे
1: अच्छे नहीं लगते, यानी कुछ मिला के जो गाना रेडियो पे बजता है उसमें अलग वो होती है खुशी, जो वैसे सुनते हैं उसमें
0: रेडियो पे आप गाने सुन रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ अपनापन लगता है कि हाँ कोई है हमारे साथ जो हमारे दिल की बातें सुना रहा है या हमारे को हमारे पसंदीदा गाने सुना रहा है। चाहे आप गाड़ी में बैठे हों, चाहे आप कहीं किसी मेडिकल स्टोर पे बैठे हों, चाहे किसी भी शॉप पे बैठे हों, और अगर आपके पास ये एफएम चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप मुस्कुरा के ये तो सोचते हैं कि हाँ अब मेरी पसंद का, इस आस में वो सुन रहे होते हैं कि अब मेरी पसंद का कहीं ना कहीं तो गाना आएगा ही। तो चलिए आपकी पसंद का गाना बताइए हमें कि हम कौन से आपकी पसंद का गाना चलाएं।
1: गाना है कुमार सानू और साथ में सरगम की आवाज में, उसका पिक्चर का नाम तो पता नहीं सर मुझे।
0: अच्छा
1: हाँ, हम आंखों की कसम तुझे प्यार करता हूँ, छुप छुप के मैं तेरा दीदार करता हूँ।
0: क्या बात कहिए। चलिए तब तक श्रोताएं आप सभी इस फरमाइश का आनंद लें और हम बताते हैं आने के बाद ये कौन सी मूवी का गाना था और किसने गाया था। धन्यवाद दीपक जी हमसे जुड़ने के लिए, और अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, पूरे परिवार का ध्यान रखें।
1: ठीक है, धन्यवाद
0: धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपक जी कुंदर की से, कहते हैं मुरादाबाद आते रहते हैं, बुद्ध बाजार में आते हैं और सेकंड हैंड एफएम खरीद लेते हैं, रेडियो खरीद लेते हैं। तो मुरादाबाद तो एक ऐसी जगह है दीपक जी, जहाँ से आप जो चाहें, इधर कोई भी, अब आज की तारीख में सारी चीज़ें ही अवेलेबल हैं। कोई भी तरह का आप इंस्ट्रूमेंट भी लेना चाहें या किसी तरह का आप कपड़ा भी लेना चाहें, तो किसी भी हर तरह इस समय मुरादाबाद में होता है। तो चलिए सुनते हैं दीपक जी की फरमाइश, तेरी आँखों की कसम।

तू झूठ बोलता है और तू झूठ बोलती है, मगर मैं तो यहाँ सच्ची बोल रहा हूँ साहब। इस मूवी का नाम है छोटा सा घर और सिंगर थे कुमार सानू साहब और संदना सरगम जी, म्यूजिक डायरेक्टर थे राजेश रोशन जी और इसे लिखा गया था समीर जी द्वारा। तो चलिए हमारा वक्त हो गया है चलने का, कि जिस तरीके से आप हम लोग से जुड़े रहे, आज FM से जुड़े रहे, और जाते जाते एक गाना अपनी पसंद का मैं आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए डेडिकेट करता हूँ और इसे प्ले करता हूँ। और कल ठीक इसी समय हम फिर मिलेंगे आपसे हेलो फरमाइश में 3 बजे। हमसे जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करें 9837896896 पर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: ये रात

0: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
1: और हूँ आपकी दोस्त प्राची।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है
1: दोस्तों। उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गाँव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
1: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
0: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद, मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देसी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब आपकी पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गांव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, कान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया। इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख खा देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात के कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ, सुनिए। छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गांव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम दोनों की तरफ से नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्दी मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: हेलो जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है आपके? हाय, कैसे हाल चाल है? दोबारा से बोल रहा हूँ यार। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, आनंद के साथ है। वेलकम बैक है आपका। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और इस वक्त आज की जो शाम है बहुत ही खूबसूरत है यार। जब ये बारिश हो जाती है ना तो शाम अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है। वैसे तो शाम होते होते सिटी की लाइटें ऑन हो जाती है। मुरादाबाद शहर स्मार्ट सिटी में अब जो है बदल गया है। और अगर आप दिल्ली रोड निकलो या आप कांट रोड निकलो, आपको नज़ारे ओए होए वाले लगेंगे। लेकिन अब मजे की बात यह है कि आज की शाम ना हमारे रेडियो पर भी ओए होए वाली बातें होने वाली हैं। आज की शाम हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है यार। मतलब ये जो बंदा है ना अपने आप में रॉकिंग है यार। मतलब देखने में लगता है बच्चा, लेकिन इसका काम है सबसे अच्छा। क्या टैगलाइन बनाई है मैंने, वेरी नाइस। वेल, आज की जो शाम है मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग ना अपनी सीट बेल्ट जरा बांध लो, मतलब कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज आप ना हंसते हंसते पागल हो जाओगे। आज की शाम आपको शेर व शायरी मिले ना मिले, लेकिन आज आपको ना बड़ा तगड़ा कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर मिलने वाला है। किसी इंसान का जो दिमाग है ना बहुत ही बारीकी से वो यूज करके लोगों को कैसे हंसाता है, उस क्रिएटिविटी पे आज बात करेंगे। और आज की हमारे शो में जो जान डालने के लिए एक लड़का है ना यार, वो मेरे जैसा यंग है, यंगस्टर है, आज के जमाने का लड़का है, आज का जेंजी से हम बोल सकते हैं, बट इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। तो मैंने बहुत सारी बातें कर दी है, बिना किसी देरी के इनको जो है आपसे रूबरू कराते हैं, मतलब इनसे आपको मिलवाते हैं। एंड वैसे तो जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में सुना, तो मैं बड़ा शॉक था, मुझे एकदम झटका लगा। मैं क्या भाई ये क्या सुन रहे हैं, क्योंकि इनका नाम है अंधेरा। मतलब आपको भी लग रहा होगा यार ये कैसा नाम है, बट वो तो वही बताएगा कि क्यों रखा गया उसका नाम ये, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या है उसके पीछे की USP, वो तो वही बताएगा। फिलहाल वेलकम टू FM मुरादाबाद मिस्टर अंधेरा, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
4: हाय,
3: हाय, हाउ आर यू?
4: How are you?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। देख के तेरे को लगता नहीं है तेरी आवाज है, ये दूसरी आवाज है क्या तेरी बॉडी के अंदर? पहले तो मुझे ये बता यार,
4: नहीं, नहीं,
3: क्योंकि
4: नहीं।
3: हम भी आवाजों की दुनिया में काम करते हैं भाई, बट तेरी आवाज सुन के ऐसा लगता है ये अंदर से कैसी वोकल यूज कर रहा है, ये क्या कहां क्या क्या लगा के रखा है गले में तूने, पहले ही बता भाई।
4: भाई कुछ नहीं लगा के रखा, बस बाय बर्थ ही है आवाज।
3: अच्छा,
4: एक्चुअली ऐसा है कि आवाज बड़ी हो गई।
3: अच्छा, तेरे को पता कैसे चला कि यार मतलब मेरे को आवाज की दुनिया में आना चाहिए या मेरी आवाज इतनी अच्छी है? कभी किसी ने बोला है ऐसा कुछ?
4: नहीं, किसी ने बोला ही नहीं, तभी तो आ गया मैं।
3: वाह, वेरी गुड। कोई बोलता तो फिर नहीं आता,
4: और क्या, वो उन्हें पता लग जाती ना कि लायक नहीं है।
3: ओ भाई क्या बात है, आप समझ रहे गाइस। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस्टर अंधेरा, वेलकम टू FM मुरादाबाद, एंड आई होप आप अच्छे होंगे भाई। बहुत टाइम के बाद अपन गुफ्तगू कर रहे हैं आज, और मैं चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताया यार, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर अपने बारे में हमारी मुरादाबाद को।
4: या हाय गाइस, आई एम मिस्टर अंधेरा एंड आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। और मैं लगभग 2 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ दिल्ली में, मुरादाबाद में। और मेरा द हैप्पी क्लब करके एक ओपन माइक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफी टैलेंटेड लोग आगे परफॉर्म करते हैं, लाइक शायरी, सिंगिंग, रैपिंग, स्टैंड अप कॉमेडी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है और भी लोग करेंगे,
3: और भी लोग करेंगे ऑफ कोर्स। सो यार ये तो बहुत अच्छा बता दिया तूने, एंड आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे यहाँ जा चुके होंगे, जो सुन रहे होंगे उनको लग रहा है अरे यार आज तो भाई आया है, कुछ मजा होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है यार, तुमने बहुत अच्छा अपना तारुफ कराया मेरी मुरादाबाद की जनता से अपने आप को। सबसे पहले जो मुझे लगता है मैं हर किसी से पूछता हूँ, ये बताओ मुरादाबाद में रेडियो आया है, रेडियो में तुम पहली बार आए हो तो कैसा लग रहा है?
4: मेरे को तो सही बहुत बढ़िया लग रहा है।
3: कैसा लग रहा है स्टूडियो, लाइट, ये सब? जो लोग सुन रहे हैं जो यहाँ आए नहीं उनको भी तो फील होना चाहिए ना यार।
4: इट्स वेरी प्रोफेशनल, मैं जब आपसे मिला मेरे को काफी बहुत बढ़िया वाइब आई यहाँ पे एंटर होती, बहुत पॉजिटिव वाइब है।
3: थैंक यू सो मच यार, और अंदर आके भी लग रहा है ना कि कहीं बढ़िया जगह बैठे हैं। चलो वैसे गाइस मजे की बात है कि ये जो कॉन्वर्सेशन आप रेडियो पे सुन रहे हो ना, ये आप देख भी सकते हो, डिजिटली कैसे बताएंगे लास्ट में। वेल अभी जो है भाई का इंटरव्यू हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी बीच एक छोटा सा गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। तो एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद वीडियो। और साथ में हमारे हैं मिस्टर अंधेरा। भैया अंधेरा कायम रहे, वो शक्तिमान याद आ रहा है मेरे।

0: को बहुत डर लगता है, और आज मेरे साथ साक्षात अंधेरा बैठा है। आई नो रोशनियां है मेरे स्टूडियो में, बट इसके नाम से मेरे को डर लग रहा है। भाई इस नाम के पीछे कोई यूएसपी है या कोई कुछ, मतलब क्या कैसे पड़ा ये नाम? आई नो तू ये भंडा नहीं फोड़ता है भाई, ये मेरे को अच्छे से पता है, लेकिन कुछ तो मोटा मोटा बता सकता है यार।
1: एक्चुअली बस ये बचपन से ही, मैं एक्चुअली क्या है डार्क रहा हूँ बाय स्किन, सो दैट्स व्हाई मेरे को बहुत चढ़ाती थी बचपन में कि कालिया कलू कालिया ऐसे करके नाम रख रखा था।
0: अरे तो वो मोटू पतलू में भी आता है, हेलो हेलो मैं हूँ तुम्हारा दोस्त कालिया और मेरे अंदर का कालिया बाहर आ रहा है। नहीं भाई मैं वापस पॉइंट आता हूँ। जी भाई चल भाई,
1: सो दैट्स व्हाई मैं सोचा कि चलो इस नाम से थोड़ी फेम मिली रही है तो क्यों ना रख ही लिया जाए।
0: क्या बात है, और तूने इसको अपनी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करके अपना प्रोफेशन में आ गया।
1: जब ये नाम रखा था मैंने तो तब डार्क कॉमेडी करना स्टार्ट ही किया था मैंने।
0: ऑलराइट,
1: फिर जब पता लगा कि जेल भी हो जाती है तो मैंने डार्क कॉमेडी तो छोड़ दी लेकिन नाम रह गया।
0: वेरी नाइस, और वही नाम तुमने आगे भी लिया है ना यार, दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया यार, वेरी वेरी अमेजिंग। और आज जो है मिस्टर अंधेरा जी हमें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, तो आपके बारे में बहुत सारी बातें हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। थोड़ा सा अब जो है मैं चाहूंगा कि तुम्हारी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा तुम्हें खुद को अच्छी लगती है और तुम्हें लगता है कि ये चीज मैं करता हूँ तो मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है।
1: बेसिकली मेरा यही स्टैंड अप कॉमेडी, जो भी मैं हंसाता हूँ लोगों को तो सबसे
0: ये तुम लोग पकड़ते कहाँ से हो? जैसे यार हम जब भी हम किसी कॉमेडियन को देखते हैं, किसी बड़े जैसे कपिल शर्मा देखते हैं या कुछ भी, तो उनके जो पंचेस होते हैं, उनकी जो लाइनें होती हैं बड़ी यूनिक होती हैं, और वो सब पब्लिक से ही लेकर आते हैं। तो यार हम भी पब्लिक में जाते हैं एज अ बीइंग अ आरजे, हमें भी वो चीज करनी पड़ती है निकालना कॉन्टेंट ये सब, लेकिन तुम लोग इतनी बारीकी से घुस जाते हो उसमें, वो कैसे कर लेते हो यार? मतलब करते करते आ जाता है
1: दिमाग है तो हो जाता है।
0: जब आप उस प्रोफेशन में होते हो तो आपके लिए बड़ा इजी होने लगता है।
1: हाँ मतलब आप हमारा क्या है ना, हम हर एक चीज में जोक ढूंढने लगते हैं। हम जैसे भी अगर हमारे किनारे में बैठा हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल ही रहा होगा।
0: मैं चाह रहा हूँ ना वो जो चल रहा है उसको बाहर निकाल के हमारी ऑडियंस पे भाई चेप दे। अब तू मेरी जनता वेट कर रही है, बस कोशिश करना कि शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल हो और बस वो वाला है ना, दिस इज वेरी डिफरेंट प्लेस यू नो, इट्स नॉट योर कॉमेडी शो
1: है।
0: सो थैंक यू वेरी मच यार। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मुरादाबाद की जनता को थोड़ा सा हंसाया जाए, कुछ नया और बेहतरीन हो जाए मिस्टर अंधेरा।
1: हमारे घर वाले अगर हम उनसे कुछ कह दें तो उन्हें तो यही नहीं पता होता कि एआई क्या होता है। आई क्या है
0: यार, ये तो तूने बिल्कुल सही बोला है भाई मिस्टर अंधेरा। ये जो एआई आई है ना, जब से मतलब इसने हमारे काम को बहुत इजी कर दिया, लेकिन हमारे घर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया, क्योंकि वो बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं, उनको वो ऋतिक रोशन वाला वो लकी अली साहब याद आ जाते हैं। वेल यार कोई नहीं, होता है यार कभी कभी। वेल मैं चाह रहा था यार मिस्टर अंधेरा, तुम्हारे जब सेशन में हम जाते हैं तो हम हंस हंस के पागल हो जाते हैं, और आज हमारे लिसनर को हमने जो है ये एक प्रॉमिस दिया है कि आज की शाम आप जो है लोट पोट के हंसने वाले हो, तो कुछ तो बढ़िया सा यार आज जो है आपने सुनाना है, क्योंकि आज जनता आपको सुन रही है भाई।
1: लाइक यू नो कि अगर कोई बाहर पीएम या कुछ कहता है कि आपको रिसोर्सेज बचाने हैं या फ्यूल को ऐसे आ रहे हैं कुछ आ रहे हैं, तो बाहर के लोग आराम से उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वही चीज हमारे मोदी जी इंडिया में कह रहे हैं, सो देखा है ना कि जैसे मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल बचाओ, तो अगले दिन साइकिल वाला पेट्रोल बचा रहा होता है घर की टंकी में।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: अभी मैं एक हफ्ते पहले मिला भी कि भाई तू कहाँ डाल के पेट्रोल साइकिल चलाता है, तेरी क्या साइकिल की पेट्रोल चूसती है?
0: Absolutely. मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, ये बात सच। अच्छा जब कोई इस तरह की चीजें आती है ना भाई, तो जोक्स और मीम्स तो तुरंत बन जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और जो लोग मतलब साइकिल को भूल चुके थे, और जब से ये वाला ट्रेंड आया वापस आ गए सब लोग साइकिल पे आ गए, उसके बाद साइकिल से फिर वापस स्कूटी और अपनी बाइक पे आ गए।
1: ट्रेंड तो आते ही रहते हैं, लाइक यू नो कि एक गिबली ट्रेंड आया था उस टाइम पहले, एआई का ही आया था आई थिंक, एआई के साथ गिबली वाला, मैंने भी डाला था कि
0: उसमें फोटोज चेंज कर रहे थे अपन ना,
1: चेंज कर सकते थे। मैंने भी सोचा कि
0: गिबली था क्या था, वो
1: गिबली था,
0: गिबली गिबली, ओके ओके।
1: मैंने सोचा था कि अपनी एक्स को जलाने के लिए मैंने डाला कि प्रॉम्प्ट मेक माय फोटो विद एनी गर्ल एंड मेक मी मस्कुलर, क्योंकि मैं पतला हूं, तो उसने गर्ल तो ले आया वो, बट मेरे को प्रेग्नेंट कर दिया
0: भाई साहब। ये तो कुछ ज्यादा ही अलग हो गया है। अच्छा यार मैंने एक चीज और सुनी थी मिस्टर अंधेरा, कि तुम ना थोड़ी लड़कियों वाली वॉइस भी करते हो आई थिंक, अभी ये बंद हो गया या अभी भी कंटिन्यू है, ये तुमने बिल्कुल खत्म कर दिया? टेल मी यार, यार रिव्यू पे मैं चाह रहा था थोड़ा अगर कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि मुझे आई रिमेम्बर याद है हम लोग एक वर्कशॉप करने गए थे, मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, उस स्कूल के अंदर ये बंदा भी वहां बैठ के परफॉर्म कर रहा था और हम वहां पे इनकी वर्कशॉप ले रहे थे बैठ के, तो तब ये तूने आई थिंक किया था है ना, तो वो क्या हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा ट्राई कर सकते लगता है ये अब आवाज में बेस बन गया है तो अब पॉसिबल नहीं है।
1: नहीं, बेस तो तभी तो ट्राई कर सकते हैं, डेढ़ साल हो गया कभी तो किया नहीं है।
0: ओके, इसीलिए कहते हैं टैलेंट को भी बोलना नहीं चाहिए, उसे पकड़ के रखना चाहिए, वो कभी भी काम आ जाता है भाई।
1: कर सकते हैं ट्राई, कोई इशू।
0: चलो कोई नहीं, फिर एक गाना सुनते हैं, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे। मैं और मिस्टर अंधेरा यहीं पर है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फटाफट डीएम कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टाग्राम, वेरी वेरी सिंपल, फॉलो कर लो यार, रेडियो वाला आना 95 के नाम से मिलता हूँ, या फिर हमारा ऑफिशियल आईडी फॉलो करो, या फिर मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको मिलता है, वहां पे आके फटाक से आप डीएम करो कुछ भी अगर आपकी

0: सरकार रेडियो की कसम खा के कह रहा हूँ, आज की शाम ना मैं हंसने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन मिस्टर अंधेरा ने हंसाने की जगह डाला मुझे। मतलब एक तो इन्होंने मेलोडी इतनी वायरल करा दी कि मैं क्या बोलूं। हाय वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां पर आनंद आपके साथ है और हमारे साथ है मिस्टर अंधेरा। आज की शाम को जो है हम अंधेरे से नहीं रोशनी से भरपूर कर रहे हैं अच्छी बातों के साथ, और थोड़ी सी इसमें चार चांद लगाने के लिए साथ दे रहे हैं मेरा अंधेरा जी। अच्छा मिस्टर अंधेरा, तुम्हारा नाम ही है, कुछ और भी नाम है जो तुम शायद बताते नहीं हो, या कुछ और नाम फैमिली में यार कोई तो नाम होता है, निकनेम भी होता है, कुछ तो ऐसा होगा तुम्हारा, या अंधेरा ही बचपन से लग गया है?
1: अंधेरा ही है, मतलब निकनेम क्या, मेरा रियल नेम तो कुछ और है पर मैं बताता नहीं किसी को।
0: अच्छा अच्छा, तो क्यों मतलब नाम ना बताने के पीछे कोई स्पेशल रीजन है, कोई स्पेसिफिक कारण, या फिर क्या मतलब, या घर वालों ने मना किया है, किसी ज्योतिष ने किया है मना, बेटा अगर बताया नाम तो सत्यानाश हो जाएगा करियर का, ऐसा तो नहीं है?
1: रियल नाम से यार कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा अंधेरा।
0: यार एक बात बताऊं, लेकिन इस चीज का ना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, मैंने सुना है जब आप अपना नाम बदलते हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी भी बदल जाती है, ये सच है ना? तो मैं भी सोच रहा हूँ आनंद से आनंदी रख लूं, शायद कोई अच्छी सी जीवन में बाहर आ जाए। वेल आनंदी से मुझे आया याद आया बैक टू पॉइंट, अभी हम बात कर रहे थे मिस्टर अंधेरा से कि यार तुम कुछ लड़कियों वाला भी मिमिक्री करते हो, आई नो दैट, आज ये मल्टी टैलेंटेड इंसान मेरे साथ है, तो क्यों ना इससे फिर सुन लेते हैं कुछ स्पेशल, देखते हैं। चलो भाई कुछ सुनाओ यार, क्या है, तुमने क्या किया था लास्ट टाइम परफॉर्म?
1: शनाया है,
0: शनाया, शनाया क्या कर रही है? वो आलिया भट्ट तो नहीं है ये?
1: नहीं नहीं,
0: स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शनाया,
1: कभी वही हो?
0: ओके, मैं धरती पे रहता हूँ शनाया जी, आप इतनी अच्छी आवाज में बात करोगी तो मैं भाग जाऊंगा स्टूडियो छोड़ के।
2: आनंद जी आपने मुझे बताया नहीं कि आप इतना अच्छा एफएम मुरादाबाद 89.6 MSZ, इतना बड़ा नाम है आपके एफएम का।
0: ये मैं आपको बताता हूँ मिस्टर, सॉरी मिसेस सनाया, आप जो भी है मिसेस है या अभी नहीं है, आई हैव नो आइडिया, ये एफएम मुरादाबाद 89.6 ये एक फ्रिक्वेंसी है और ये एक मेगाहर्ज होता है, मतलब बेसिकली एक फ्रिक्वेंसी के साथ ही टाई वर्ड होता है, तो ये हमारा बेसिकली जब आप उसको गाड़ी में ट्यून इन करोगे तो आपको ये नंबर चाहिए होंगे, जब आप जहाँ पैसा रखते हो ना उधर आप तिजोरी लॉक करते हो तो उधर कुछ कोड भी डालने पड़ते हैं, याद है सनाया जी? तो वो नंबर जब तक आपके पास नहीं होंगे ना तो आपका लॉक खुले नहीं, वैसे ये नंबर है, जब तक आप ये नंबर डालोगे नहीं ना गाड़ी पे हमें आप सुन नहीं पाओगे,
2: तो ये आपकी प्रोटेक्शन है,
0: एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन, आजकल उसके बिना कोई गुजारा ही नहीं है, हर जगह पे आपको जो है प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है, अपनी सेफ्टी अपनी सावधानी अपने रख के चलनी है।
2: आप भी अंधेरे के साथ रह रहे के डार्क होते जा रहे हो,
0: एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है। अब मैं चाहूंगा कि शनाया जी आप अपने ओरिजिनल अवतार में आ जाओ, मैं नहीं तो भाग जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। वेल टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा आपने बोला, एंड आई थिंक उस टाइम पे कुछ ज्यादा अच्छी आवाज थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई है, ये कह सकते हैं कि तुमने बहुत टाइम की बात ट्राई किया है।
1: मैंने बहुत टाइम के बाद ट्राई किया है, ऊपर से एक तो आवाज भी ज्यादा भारी हो चुकी है पहले से, तो उस टाइम में जब किया था तो उस टाइम में मेरी आवाज भी थोड़ी हल्की थी।
0: समझ सकता हूँ मैं, अब भारी हो गई है, लेकिन तुम अभी हल्के के हल्के ही हो, वो बात अलग है। सो आगे बढ़ते हुए गाइज मैं आपको फिर से बता दूं, मिस्टर अंधेरा हमारे साथ हैं, ये एक कॉमेडियन है, बेसिकली ये डार्क कॉमेडी करती है, आई थिंक इनका एक
1: बहुत
0: है ना, अच्छा सारी कर लेते हो,
1: वेरी
0: नाइस वेरी नाइस, किसी की मिमिक्री वगैरह भी करते हो क्या यार?
1: नहीं नहीं मिमिक्री तो नहीं करता।
0: ऑल राइट, अच्छा जो कॉमेडियन होते हैं ना मोस्टली मैंने देखा किसी ना किसी को पकड़ के उस पर जोक बनाते हैं या फिर उसकी मिमिक्री करके ही पूरा सेशन एंड कर देते हैं, तो आपका क्या रहता है जब आप ऐसा कुछ करते हो, तो अभी कुछ सुना रहे हो?
1: नहीं मैं मतलब बेसिकली मिमिक्री वगैरह करके तो नहीं करता हूँ,
0: लेकिन आप जब आपके शोज में जाते हो तो आप कौन कौन से टॉपिक पे बात करते हो जरा बताओ?
1: लाइक गर्लफ्रेंड, इंडिया के बारे में, सिटीजंस के बारे में, पेरेंट्स हो गए, और
0: चलो पेरेंट्स के ऊपर कुछ हो जाए यार, अच्छा से मतलब अच्छा वाला होना चाहिए, मतलब अच्छा तो अच्छा ये जो तेरे को अच्छा लगता है, मतलब जैसे तेरे को अच्छा लगे व्हाटएवर वो तू सुना सकता है मेरे लिसनर्स के लिए।
1: लाइक आपने अभी देखा होगा कि एक ट्रेंड आया था, ये गिबली ट्रेंड, एआई ट्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं, ब्लू ड्रम ट्रेंड।
0: ओके ये कौन सा ट्रेंड आ गया भाई, ये मेरे को नहीं पता।
1: अच्छा आपकी शादी हो गई?
0: नहीं भाई अभी तो मैं सिंगल हूँ।
1: सिंगल हो तभी तो?
0: हाँ इसीलिए ना मेरे को पता नहीं है, कुछ चीजें ना पता हो तो ही अच्छा रहता है यार। मैं तेरे को सच बता रहा हूँ। वेल आगे बढ़ते हैं, हाँ प्लीज बी कंटिन्यू यार, बताओ
1: शादी करो अब, आपको नीले ड्रम के बारे में पता लगेगा।
0: यार ऐसा है मुझे नीला ड्रम से मुझे याद आया, मेरे घर में एक बहुत बड़ा नीला ड्रम है, उसके अंदर हम हमेशा पानी भर के रखते हैं, जब भी ज्यादा गर्मी होती है तो उस पानी को यूज करते हैं, बिकॉज उसके अंदर वाटर ठंडा रहता है हमारा, आजकल गर्मियां इतनी है ना, टैंक के ऊपर जो पानी वो पूरा पक जाता है, गजब है यार गजब है। हाँ जी तो मिस्टर अंधेरा ने जो नीले ड्रम की कहानी शॉर्टली मेरे को बताई ना, मेरे को समझ में आ गया भाई, चाहे जो हो जाए शादी तो मैं करके रहूंगा यार, कहीं ना कहीं तो होगी मेरे सपनों की रानी जो कर रही होगी मेरी प्रेम कहानी का इंतजार। इंतजार से मुझे याद आया कि ये कुछ सुनाने वाला है मेरा यार, क्योंकि ये मिस्टर अंधेरा ना गर्लफ्रेंड को लेके बड़ी सारी कुछ ना कुछ करता रहता है खुराफातीज, और आजकल का प्यार यार प्यार नहीं हो गया, मतलब ऐसे लगता है मतलब जादू टोना बेबी टोना सब एक साथ में हो रहा है यार आजकल, तो ना समझ ही नहीं आ रहा है भाई साहब, कभी कोई भी ब्लॉक कर दे रहा है, कभी कोई भी दिल तोड़ के भाग जा रहा है, मतलब पता नहीं रुमाल हो गया, रोटी हो गया, क्या हो गया, प्यार हो गया, समझ नहीं आ रहा है भाई। इसमें कुछ है यार तेरे पास तो भाई सुना दे भाई।
1: मैं अपना ब्रेकअप की थोड़ी कहानी सुन सकता हूँ।
0: हाँ भाई,
1: ब्रेकअप कैसे होता है एक्चुअली? ठीक है, ब्रेकअप जब किसी का होता है तो लोग शायर बन जाते हैं। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया, मेरे तो खुल गया एकदम कि हाँ चलो गई पत्ता कटाई। वो मेरा एक्चुअली ब्रेकअप जो हुआ था वो मुझसे कहती रहती थी कि तुम मुझे समझते नहीं हो, मुझे समझते नहीं हो, हर लड़की कहती है। मैंने उस एक दिन गुस्से में कह दिया कि मैं तुम्हें कैसे नहीं समझता, तुम मुझसे आज खुशी पूछ लो, मैं उस चीज का जवाब तुम्हें दे दूंगा।
0: ठीक है,
1: उसने मुझसे कहा अगर तुमने नहीं दिया ना तो ब्रेकअप। वो भाई उस दिन ब्रेकअप बनाने का मूड से आई थी, उसने मुझसे कहा तुम इसका जवाब दे के बताओ। बिल्लू बग्गे बिल्ले यहाँ तक की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ तक की करेंगी, इसका मतलब क्या है?
0: उसने तेरे से पूछा? अच्छा, तो तूने इसका मतलब बता दिया?
1: नहीं भाई।
0: या फिर सीधा काके को पकड़ के ले आया था?
1: भाई क्या करता है, की करेंगी भाई बगलो।
0: यार ये तो आज तक खैर हमें भी नहीं पता, लेकिन गाना हमने बहुत बार सुना है यार ये वाला। अच्छा वेल, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया तेरा?
1: मैं जवाब समझ नहीं पाया ना उसे।
0: अच्छा ओके, मतलब वो मूड में आई थी फिर तेरी गर्लफ्रेंड। ऑल राइट, उसने सवाल ही ऐसा पूछा जवाब नहीं था तो फिर तुझे समझ आ गई कहानी अब खत्म हो गई है। भाई साहब बड़ा तगड़ा था लेकिन इसका स्टोरी। एनीवे गाइस, मजेदार बातें चलती रहेंगी इसके साथ हमारी, आप कहीं मत जाइए। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद जल्दी से लौट कर आ रहे हैं क्योंकि बातचीत के साथ साथ गीत संगीत अगर हो जाए तो फिर प्रोग्राम और भी जबरदस्त हो जाता है। एक बढ़िया सा गाना, उसके बाद लौट कर आ रहा हूँ, कहीं मत जाना। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
3: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
5: हेलो जी, क्या हाल चाल? भाई को थोड़ा मौका दे, उनसे कुछ अच्छा सा रैप सुनाए। तो भाई हम रैपर को बुलाता है और उससे कुछ अच्छा सा सुन के आता है। तो मिस्टर अंधेरा थोड़ा हमको टाइम देगा तू? चलो जी, अभी हम लौट कर आता है तो हम रैपर को साथ में लाता है। तो अभी मेरे साथ में केदीप आ गया है स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत करती मैं। वेलकम टू एफएम मुरादाबाद, जोरदार ताली बजाता मैं। तो कैसे हैं आप केदीप? इन द हाउस, हाय, हाउ आर यू ब्रो?
6: मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे।
5: थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी आप कितने बड़े हो? मतलब वैसे तो बहुत बड़े
6: हैं। अभी 22 का हूँ।
5: 22?
6: या आई हैव बीन इन दिस फ्रॉम 10 ईयर्स।
5: अरे वाह, वेरी नाइस। अभी आप मुरादाबाद में कहाँ रहते हो, क्या करते हो?
6: डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मगर मैं करता तो अंधेरा के अंडर काम करता हूँ।
5: अरे वाह, क्या बात है। अंधेरे में जो कोई काम करता है ना, उसका काम बहुत सफल होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपके बारे में थोड़ा सा बताओ, मतलब आप स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट यू डू?
6: राइट नाउ आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन हिस्ट्री एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, रिप्रेजेंटिंग माय धारचूला।
5: मैंने पहले कहा था ना, ये लड़का मुझे दूसरी दुनिया से लग रहा है गाइस, तो ये उत्तराखंडी लड़का है। तो आप उत्तराखंड में मतलब कौन कौन है आप? पहाड़ी है, गढ़वाली है, कुमाऊं है?
6: बेसिकली उत्तराखंड को तुम डिवाइड करो, गढ़वाल, कुमाऊं, हम सारे उत्तराखंडी हैं।
5: आई नो सारे उत्तराखंडी है, लेकिन एक सबका एक जोनर होता है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कुमाऊं में है, कुछ जौनसारी है, कुछ पहाड़ी है, कुछ उत्तराखंडी में, तो अलग अलग लोग आते हैं। उत्तराखंडी तो पूरा है ही है, तो समावेश है उत्तराखंड का, लेकिन उसमें अलग अलग लोग रहते हैं ना।
6: हाँ, ऑब्वियसली हर जगह पे, जैसे हम यूपी में ही देख रहे हैं, अलग अलग जगह है। अब उनको डिवाइड करके बोलेंगे तो कितनी चीजें बन जाएंगी, बट एज वी स्टैंड यूनाइटेड तो ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए।
5: ओके ओके, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया और मेरे को वो कर दिया, जागो प्यारे जागो। ठीक है, सो मैं तेरे को उत्तराखंडी बोलू?
6: जो बोलना है बोलो, केदीप बोलो, केदीप बोलो,
5: केदीप केदीप, ठीक है ठीक है। सो अभी तुम इधर स्टडी कर रहे हो या पूरी फैमिली के साथ रहते हो साथ में?
6: या मैं बचपन से इधर ही रहता हूँ।
5: अच्छा, इधर ही रहते हो, ऑल राइट, चलो बहुत ही बढ़िया। तो अभी तुम क्या सुनाने वाले हो? तुम वैसे रैप वैप जो करते हो, अभी मैंने सुना मिस्टर अंधेरा से कि ये आपका मतलब पार्ट टाइम रहता है या आपका हॉबीज है, कैसे इसको आप मतलब यू नो
6: एज अ हॉबी भी मान सकते हो अभी राइट नाउ?
5: ऑल राइट, एज अ हॉबी, मतलब अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा सपना नहीं है बड़े से रैपर बनने का, बट ये है कि अभी एक हॉबी के तौर पे इसको आप कर रहे हो, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है जब करते हो तो।
6: हाँ,
5: ऐसा ना, वेरी नाइस। कभी पापा वगैरह के सामने किया है?
6: हाँ, करा था जस्ट अभी, तो मतलब लास्ट मंथ
5: किया था। तो उन्होंने क्या अप्रिशिएट किया?
6: नहीं, जीरो रिएक्शन, जब कुछ कर लूंगा तभी होगा।
5: हाँ, वही होता है यार, हर इंडियन फादर्स का ये रहता है। कोई बात नहीं, पानी चाहिए आपको? खांसी हो रही है?
6: नहीं नहीं, इट्स गुड।
5: ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्यों, तो कुछ सुनाओ यार हमारे लिसनर को, आप कोई बढ़िया सी रैप सुनाओ।
6: तो रिसेंटली मैंने एक गाना अपलोड करा था, ब्लू बर्ड, इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीवन जो खुद को ब्लू बर्ड मानते हैं।
5: ठीक है,
6: ब्लू बर्ड इज बेसिकली अ पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर हिज ड्रीम, और वो दुनिया की भीड़ भाव में खो चुका है। तो फिर इट्स अ मैसेज टू हिम कि उस चीज से बाहर आना है, यू हैव टू कम फ्रॉम दैट बबल एंड कुछ करना है लाइफ में।
5: ओके,
6: सो इट बिगिंस लाइक, जब तक तुझ पे नहीं है सक्सेस तक देता नहीं है ध्यान कोई, बेटर मेकर राइट चॉइस, खुद के लिए फाइट बॉय, गो एंड गेट अ लाइफ बॉय, लाइफ बॉय तुझे देती जॉय बॉय, साउंड ऑफ लिपेशन, गो एंड गेट अप, इट्स योर टाइम बॉय, ब्लू बर्ड ना ब्लू स्काई, धीरे मेक टाइज विद योर एसी का थिंग वाइज, कीप अ चिन हाई, लिसन एंड गिव फाइट, जरूरत नहीं फर्स्ट आई या हार जाए, माइट डाय बट डाय लाइक माइट डाय, प्ले लाइक माइट गाय, ओपन वाइड 8 गेट, समन करू सारे भाई, असारे भाई है तब भाई मेरे साथ कर सारे वाइब, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ब्लू bird flying high away from the cruel world, it's a story of a blue bird flying high away from the cruel world. So yeah, that's it.
5: वेरी नाइस यार, दैट्स वेरी नाइस, देख के लगा नहीं था इतना अच्छा भी गाता होगा यार ये, तो बड़ा मतलब छोटे वैक्यूम में बड़ा धमाका वाला कमाल कर दिया यार भाई तूने, वेरी नाइस। अच्छा, अभी जो तुमने परफॉर्म किया खुद से किया है, क्रिएट?
6: या
5: ये किसी का सुना हुआ है, ये किसी ने किया हुआ है?
6: खुद का है,
5: खुद का है। अरे वाह, इसको थोड़ा सा बता सकते हो इसका जो आपने परफॉर्म किया है? बहुत सारी ऑडियंस को अगर नहीं समझ आ रहा तो क्या कहना चाह रहा है ये रैप बेसिकली?
6: ओके, लाइक स्टार्टिंग लिरिक्स है, जब तक तुझ पे नहीं है सक्सेस तब तक देता नहीं है ध्यान कोई, बेटर मेकर राइट चॉइस, खुद के लिए फाइट बॉय। इट्स अ प्लेन मैसेज टू अ पर्सन हु इज फाइटिंग, हु वांट अ फाइट फॉर हिज ड्रीम। तो भाई कर भाई, जब तक तेरे पे नहीं है कुछ तो सामने वाला बोलते रहेगा, और जब तेरे पे कुछ हो जाएगा तो वो शान तेरी तारीफ करेगा,
5: तालियां भी बजाएगा पीछे
6: बैठ के। स्ट्रेट मीनिंग कि जब तक तुझ पे नहीं है सक्सेस तब तक देता नहीं है ध्यान कोई, बेटर मेकर राइट चॉइस, खुद के लिए फाइट बॉय, गो एंड गेट अ लाइव बॉय, लाइव बॉय तुझे देती जॉय बॉय, साउंड ऑफ लिबरेशन, गो एंड गेट अप, इट्स योर टाइम बॉय, ब्लू बर्ड इन अ ब्लू स्काई, धीरे मेक

0: एज यू दो इसी का थिंग वाइज की पिछन हाय लेस स्टैंड एंड गिव जरूरत नहीं फर्स्ट आए या हार जाए माय डे
1: क्या थे वेरी नाइस सर बहुत ही बढ़िया वंस अगेन मजा आ गया मुझे गाइस भाई का रैप सुन के मैं एक पानी की बॉटल इसको देता हूँ गले में खिचखिच दूर हो जाएगी और आप ये गाना सुनो इसको सुनते ही वापस आते हैं

0: हमारे साथ स्टूडियो में केदीप है. वेलकम बैक. वंस अगेन यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर भाई को हल्की हल्की खांसी हो रही है. शायद बारिश का असर है, या फिर कह सकते हैं मिस्टर अंधेरा के साथ रहने का असर है. आई डोंट नो, ये तो इससे पता चलेगा. वेल, हाउ आर यू ब्रो? मजा आ रहा है तुम्हें स्टूडियो में आके? पहली बार आए हो?
1: यस सर, बहुत क्रेजी वाइब है.
0: पहली बार आए हो?
1: यस सर.
0: जो रैपर्स लोग होते हैं उनको इस तरह की वाइब चाहिए होती है. आपको कैसी लग रही है? टेलिस
1: बहुत बढ़िया है, कभी आऊंगा रिकॉर्ड करने कुछ.
0: हाय हाय हाय, वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम. अच्छा, मैं अभी माइक के पीछे बात कर रहा था तो ये मेरे को बता रहा था कि पिथौरागढ़ करके इसने मुझे जिक्र किया, वहाँ पे कोई एरिया बता रहे थे ना भैया.
1: yeah.
0: वहाँ पे तो आपने बताया आपकी लैंग्वेज खुद की है बेसिकली.
1: yeah.
0: ऐसा तो मतलब ये कहाँ पर, आप पिथौरागढ़ में कौन सा एरिया है जो आप बता रहे थे अभी?
1: बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड. उसके अंडर जो है हल्द्वानी के ऊपर जाते रहेंगे तो पिथौरागढ़ आता है.
0: पिथौरागढ़ सबको पता है.
1: पिथौरागढ़ के अंडर फिर आता है मुनस्यार. हाँ. जो जाते सबसे ज्यादा लोग जानते हैं.
0: हाँ.
1: और उसके बाद आता है धारचूला.
0: धारचूला, ऑलराइट. हाँ. तो मतलब धारचूला में अलग लैंग्वेज है.
1: हाँ, बेसिकली धारचूला में हमारे लोग रहते हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं. बेसिकली आई एम अ ट्राइबल.
0: ओके.
1: तो हमारी कम्युनिटी को बोला जाता है RUNG, रंग.
0: ऑल राइट.
1: तो हमारी खुद की लैंग्वेज है, उसे भी रंगी बोला जाता है.
0: अरे वाह, वेरी नाइस. और आपने जो स्टूडियो में रंग भरे हैं उसके लिए मैं भी आपको रंगी नहीं बोलूंगा. मजा आ गया है भाई, थैंक यू सो मच. अच्छा, तो अभी तुम और कुछ भी सुना रहे हो यहाँ पे?
1: हाँ, क्यों नहीं.
0: ठीक है, एक और बढ़िया सा सुना दो यार, कुछ ऐसा. तो गाइज आप भी तैयार हो जाइए.
1: देंगे धोती खोलिया लौंडे बावे मस्ती खोर, तेरे जैसे 32 और हमसे ना तू बातें छोड़. अकेले में करता हूँ खोज, गएंगे साथ तो होती है मौज. बोझ को कलश में डाल के दिया है घोलो, लेता हूँ इसी की डोस. लिखू मैं स्ट्रीट ना लिखू मैं सॉस, कॉर्ड टाइड ये दे देती मौत. लिखता मैं घाटी और इसी की बोल, पूछता देवता बजा के टोल. बदलाव संगीत लाएंगे दौर, आएंगे वापिस जो गए थे छोड़. तोड़ूंगा सारे स्टीरियो थॉट्स, ये गुजे आवाज पिंजरे से तोड़. छोटा मैं घर का लड़का, ध्वनि को सुन के मारता तड़का. भाई से चढ़ा था रैप का चस्का, तब से तलब न लड़का थमता. पापा के पैसों से खर्च चल का, मन के खुद का करता धरता. कितने साथ फर्क नहीं पड़ता, लांगू मैं दूरी बना दू जो रास्ता. ऑल माइट मेरी कलम चले करे वॉर क्राय, कितने संकी घोड़े करे स्मूथ राइड. वाइड विजन मेरा करू वादी गाइड, मैं बंदा पहाड़ी फ्रॉम रंग ट्राइब. यो,
0: क्या बात है यार, क्या बात है. वेरी वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया, गजब यार. आप लोग इतने एक सांस में बोलते हो, आपको गले में दर्द नहीं होता यार? कभी कभी हमें भी दर्द होने लगता है बोलते हैं तो.
1: होता है
0: बट वो प्रैक्टिस हो जाती है ना. वेरी नाइस यार, आपको तो मुझे लगता है करना चाहिए. आप अच्छा कर रहे हो, आपका फ्लो बहुत अच्छा है. एंड ऑल द वे बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आई होप आप अच्छा करो और अगली बार जब रिकॉर्ड करो तो पापा बोले वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया. वाह वाह वाह, वेरी नाइस. वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार ब्रो, अच्छा लगा. एंड जाते जाते अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हो अपने जैसे भाइयों से, तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे?
1: मैं जस्ट एक मैसेज देना चाहूंगा.
0: प्लीज श्योर.
1: इफ यू आर परसुइंग एनीथिंग और तुम्हारा कोई ड्रीम है तो मैं चाहूंगा कि वो तुम करो भाई. किसी का वेट मत करो कि कोई आके तुम्हारी हेल्प करेगा या फिर वो करेगा तो मैं करूंगा. जस्ट गो विद द फ्लो, करो जो मन की है. और इससे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मुरादाबाद के अंडर तो मेरे से आके कांटेक्ट करें.
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मेरे को भी चाहिए सर. मैं आपसे कांटेक्ट जल्दी करूंगा, आप चिंता ना करें. वेरी वेरी सून. सो थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा. एंड ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड लोगों की हमें तलाश होती है. आप भी अपना कोई भी टैलेंट है तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या तो आप आरजी आनंद को कर सकते हो, ऑफिशियल पेज पे कर सकते हो. हमारा इंस्टाग्राम है एफएम मुरादाबाद 89.6 और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से. वहां पर आपको ये कॉन्वर्सेशन देखने को भी मिलेगी वेरी वेरी सून. एक काम करते हैं, मिस्टर अंधेरा को वापस बुलाते हैं. हेलो मिस्टर अंधेरा, वेलकम बैक यू वंस अगेन. आपको डर तो नहीं लग रहा ना? वैसे आपका नाम ही अंधेरा है, मुझे डर लगना चाहिए. अरे यार क्या बात है, बहुत अच्छा लगा तुमने ये बात बोली. लेकिन तुम्हारे साथ जो छोटे बैगी में बड़ा धमाका था, बहुत ही कमाल का था, सुपर फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा लगा. एंड आई एम श्योर अब जो है मेरा और आपका जाने का समय हो रहा है, लेकिन जाते जाते आप कुछ बढ़िया सा सुना दो. और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा था आज, क्योंकि तुम हमेशा जब परफॉर्म करते हो यार तो तुम्हारे सामने ढेर सारी ऑडियंस होती है, लेकिन यहाँ तुम परफॉर्म कर रहे हो तो कोई नहीं, लेकिन इसके माइक के बाहर इतने लोग तुम्हें सुन रहे हैं, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो.
2: बाय द वे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था आज का. आई नो कि यहाँ पे ऑडियंस नहीं थी, लेकिन ऑडियंस मेरे को बाहर बहुत ज्यादा सुन रही है. थैंक यू सो मच जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं. एंड आई होप आप लोगों को जो भी मैंने आज किया वो आपको पसंद आए.
0: ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट.
2: सो मच आरजे आनंद को मेरे को यहाँ बुलाने के लिए.
0: यार ये बड़ा रैंडम था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मतलब रात को मेरे दिमाग में एक थॉट आया, सुबह मैंने इसको मैसेज किया और ये दोपहर में यहाँ आ गया.
2: रात को अंधेरे में आया.
0: एग्जैक्टली यार, मतलब तेरा नाम अंधेरा है तो अब ये टैलेंट भी अंधेरे में निकलना चाहिए भाई. वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट मिस्टर अंधेरा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टॉक करके. गाइज आपको थोड़ी सी हंसी आ रही होगी कि इसका नाम बड़ा डिफरेंट है. एंड आई डोंट नो कि अपना नाम रिवील नहीं कर रहा है. मैं जल्दी इसके पापा से बात करके आपको बताऊंगा इसका नाम है क्या. ये तो ये नहीं बता सकता है, दिक्कत ये ना, पापा का पता भी तो पता हो, वो भी नहीं पता चलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा. वेल अगर आप मिस्टर अंधेरा को जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप कैसे जान सकते हैं वो ये आपको जरूर बताएगा. मंडे होता है ना, मंडे ब्लूज होते हैं, मंडे का दिन होता है हेडेक होता है थोड़ा सा, लोग ऑफिस से घर आ रहे हैं इस टाइम पे, रात का समय लोग ऑफिस से घर जा रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ में समय बिताएंगे, बहुत हेडेक रहा आज के दिन, मैं समझ सकता हूँ गाइस आपका, मेरी जैसा हाल होगा, उनके लिए कुछ कहना चाहते हो, कुछ दो लाइनें जो वो हंस जाएं?
2: कुछ नहीं भाई, अपना करते रहो जो कर रहे हो, और क्या मतलब
0: कोई जोक है आपके पास पे उनको हंसाने के लिए?
2: बीवी से लड़ाई कर लो और क्या है, सबसे बढ़िया मूड बन जाएगा तुम्हारा।
0: मतलब कहना क्या चाहते हो, एक तो ऑफिस में इतनी ज्यादा सुन लिया, अब घर पे ही वो यही सुने यार,
2: और क्या बहुत भाई खत्म करो किस्सा।
0: भाई देखो ऐसी बात है ना, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसकी शादी होने दो, उसके बाद ये पूरा अच्छा हो जाएगा, मैं आपको रिटर्न में बता रहा हूँ। वेल गाइज, बहुत अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके, आपके ब्रदर आपके, थैंक यू वेरी मच। और एक लड़की बहुत शांत होकर उसने हमारा पूरा शो सुना है, वेरी वेरी शाई गर्ल चुपचाप होकर सुन रही है शांति के साथ और मुस्कुरा रही हमारी प्यारी ऑडियंस बनके। कौन है ये, इसका नाम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट टाइम जरूर आपको मिलवाएंगे। फिलहाल अंधेरा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू वेरी मच। बट अगर कोई ऑडियंस आपके साथ आना चाहती है, आपके सेशन में आना चाहती है, तो कैसे वो आपसे कनेक्ट हो सकती है, थोड़ा बताओ क्या सोशल मीडिया आपके पेजेस हैं? यू नो
2: हमारे दो सोशल मीडिया है, बाय द वे मेरा पर्सनल मिस्टर डॉट अंधेरा करके इंस्टाग्राम, एंड हमारा यूट्यूब पे द हैप्पी क्लब करके है, और इंस्टा पे भी द हैप्पी क्लब डॉट MBD करके है, जहाँ पे किसी भी कोई भी टैलेंटेड परफॉर्मर है जिन्हें परफॉर्म करना है, अपना टैलेंट आगे बढ़ाना है मुरादाबाद में, सो
0: वो आपसे कोऑर्डिनेट कर सकता है ना। तो आपके सेशन कब होते हैं, संडे मंडे?
2: संडे
0: Every Sunday. कल था मतलब तुम्हारा?
2: Yeah, कल था हमारा।
0: Alright, very nice है। तो हर संडे लोग आते हैं?
2: Yes sir, रोज हर संडे हमारे शोज होते हैं, और इसमें काफी अच्छी ऑडियंस आती है, लगभग हमारे पास 50 प्लस गैदरिंग का एरिया है, वहाँ 50 ऑडियंस आती है।
0: वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा इतनी कम एज में इतना अच्छा यू नो इनिशिएटिव लेके उस पर काम करना, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहो और एक अच्छा नाम और एक अच्छा काम हासिल करो। काम तो ऑफकोर्स आप कर ही रहे हो, एंड फ्यूचर में दोबारा भी आप मुरादाबाद में जरूर आओगे, मतलब मेरे रेडियो पर जरूर आओगे, मुरादाबाद से तो है ही ये इंसान। अच्छा मिस्टर अंधेरा, एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, अभी स्टडी चल रही है ना?
2: हाँ जी अभी स्टडी चल रही है।
0: क्या चल रहा है तुम्हारा?
2: CS।
0: देखो यार ये पढ़ाई के साथ साथ अपना कॉमन सेंस भी यूज कर रहा है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज कर रहा है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि टैलेंट हर किसी में होता है, जरूरत है उसे सही समय पर पहचानने की और उसे तराशने की और उस पर काम करने की। अगर आपके अंदर भी कोई अच्छा टैलेंट है तो ये रेडियो प्लेटफॉर्म आपके लिए है, प्लीज आप डेफिनेटली यहाँ पर आइए। आप शेरो शायरी करते हैं, आप भाई की तरह कॉमेडी करते हैं, आप कॉमेडियन हैं या आप रैपर हैं, जो भी आप अच्छा करते हैं, व्हाटएवर, ये आपके ऊपर है, तो आप मुझे अपना टैलेंट जरूर बताइए। हो सकता है आज मिस्टर अंधेरा की जगह कल आप यहाँ पर हो, ठीक है? तो मिस्टर अंधेरा को छोड़ के आते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, लाइटें ऑन करनी है, कसम से इसने पूरे घंटे अंधेरा करके बिठा रखा है, वो बात अलग है कि वीडियो में आपको रोशनी मिल जाएगी देखने को, शायद उसकी एडिटिंग का कमाल होगा। वेल मिस्टर अंधेरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा ब्रो,
2: आप आए,
0: लवली मीटिंग यू, एंड बाकी मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ लाइफ में हंसना बहुत जरूरी है, आजकल की जिंदगी बहुत बिजी वाली हो गई है, स्ट्रेस बहुत है जिंदगी में लोगों की, तो आप जैसे लोग हैं जो थोड़े से सो कोल्ड गम कम कर देते हो आजकल की जिंदगी के।
2: इफ समबडी वांट्स कि मुझे स्टैंड अप शोज देखने हैं, सो मेरे से कांटेक्ट करें, प्राइवेट शोज भी करता हूँ मैं, मतलब प्राइवेट वैसे वाले नहीं जो रात को होते हैं, मतलब शादी वादी वाले।
0: अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं कुछ प्राइवेट शोज ऐसे होते हैं कि चार्जेस बहुत अलग होते हैं, उसमें सिर्फ कुछ ही लोग आ पाते हैं। समझ सकता हूँ मैं। वेल कोई बात नहीं, आपका तो पब्लिक शो रहता है ये?
2: मेरा तो पब्लिक शो,
0: यू आर अ पब्लिक फिगर बॉय। चलो बहुत अच्छी बात है गाइज, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत भूलिए, जल्दी मिलेंगे आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आप सुन रहे थे आनंद को, शाम में हमने बातें कम और गाने ज्यादा बजा दिए आज की शाम, सॉरी यार, लेकिन कभी कभी ना गीत संगीत भी जब ज्यादा होता है तो मजा आ जाता है ना, मंडे है, मंडे को जो है अच्छे से सेलिब्रेट करते जाओ। फिलहाल कुछ अच्छे गाने छोड़ के जा रहा हूँ, मिलूंगा फिर आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, अपना ख्याल रखिए एंड मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आर्जी आनंद कहता है बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है इस वक्त, वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे FM मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू FM मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
5: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
4: थैंक यू सर,
5: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
4: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
5: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल। ठीक है, आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
4: क्या बात है।
5: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
4: जी जी, प्लीज।
5: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
4: ब्यूटीफुल।
5: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
4: वाओ।
5: उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
4: क्या बात है।
5: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या?
4: जी,
5: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
4: हाँ जी।
5: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
4: हाँ जी।
5: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
4: Alright.
5: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
4: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
5: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
4: जी जी।
5: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
4: जी
5: हैं।
4: जी जी जी।
5: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
4: जी जी जी जी।
5: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
4: ओके सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद जिसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
5: हाँ डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
4: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
5: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
4: ऑलराइट,
5: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
4: जी हाँ जी,
5: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
4: जी।
5: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह। अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
4: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
5: बेबी को 2 to 3 आवरली, इनिशियली 2 to 3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं उनको नहीं पता होता है। वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
4: जी।
5: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
4: Okay.
5: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
4: हाँ जी,
5: उसमें
4: हाँ
5: हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
4: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
5: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा,
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: है ना,
4: बिल्कुल।
5: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
4: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिसे पता,
5: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोस ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
5: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है,
4: ठीक है, बहुत
5: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25 to 27 degrees मेंटेन करके रखो। डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो, ठीक है। और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
4: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आज का लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
5: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
4: जी,
5: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
4: हाँ जी हाँ जी,
5: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
4: हाँ जी हाँ जी,
5: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
4: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
5: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
5: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेरेंट्स पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
4: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच। वेल, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा। श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जाते जाते?
5: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
4: हाँ जी।
5: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है।
4: जी जी।
5: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है।
4: हाँ जी हाँ।
5: ठीक है। या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीज देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी
4: जी,
5: तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए
4: जी,
5: कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें।
4: बिल्कुल सही कहा।
5: कि अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
4: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं।
5: थैंक यू।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और

0: नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है।
1: आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली है, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने एक क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जन कल्याण से जोड़ने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 7 मंजिला इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुजुर्गों को समर्पित यह अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र होगा। केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशलिटी जेरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा ओपीडी संचालित की जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर

0: वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा सुशासन और जनकल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम, प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के।

0: विकास के, जन कल्याण के।
1: कीमतों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम पड़ा है। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने दीप विहार क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नई दिल्ली में नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% की छूट की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों से मुलाकात की और जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों से समस्याएं सुनी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार रोहिणी के प्रत्येक नागरिक की सुविधा और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि किसी भी शहर का वास्तविक मूल्यांकन केवल उसकी भव्य अवसंरचना से नहीं बल्कि नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली जीवन गुणवत्ता से होता है। उन्होंने कहा कि विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए जो नागरिक जीवन को अधिक सुगम और बेहतर बनाते हैं। इसलिए रोहिणी में सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गुप्ता ने नवनिर्मित शौचालय सुविधा और मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाहरपुर गाँव में नवनिर्मित सड़कों को भी जनता को समर्पित किया। दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे पिछले एक महीने में बिजली खरीद की लागत भी लगभग 31% बढ़ी है। श्री सूद ने संवाददाताओं को बताया कि इस वृद्धि के बावजूद दिल्ली सरकार के प्रयासों से उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव कम पड़ा है।
2: सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्धता है कि कंज्यूमर पर बिजली के दामों का यथासंभव असर नहीं पड़ने देंगे। देश भर में बिजली कानूनों के चलते पीपीएसी की कॉस्ट लगातार हर महीने अलाउ की जाती है। उसी के अंतर्गत पिछले 14.5% जो 31 मार्च तक था, ईंधन की कॉस्ट वेस्ट एशिया संकट के कारण अब इस महीने 2.4% की बढ़ोतरी उसमें दी गई है। इसलिए हम पूरी तरह इस पे निगाह रखे हैं, जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष भारत के युवाओं के सपनों को साकार करने वाले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस सेवा काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक कौशल से जोड़ा गया जिससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि देश में रिकॉर्ड संख्या में बने नए भारतीय प्रौद्योगिकी

वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रनाथ सिंह ने आज दीप विहार क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़कों और नालियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बवाना विधानसभा क्षेत्र में बेहतर और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को भारत की बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताएं लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह उपलब्धि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी और वैश्विक स्तर पर उसकी रणनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मालवीय नगर और सैदुलाजाब में आग लगने की घटनाओं के दौरान बहादुरी और तत्परता से कार्रवाई करने वाले नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम भी शामिल है। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस को और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन जवानों ने राष्ट्र की सेवा में अद्भुत साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए iGOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें परीक्षा कर्मयोगी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं को सुचारू, सुरक्षित और मानवीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। इसमें नीट स्नातक पूर्व परीक्षा भी शामिल है। कार्यक्रम में संपूर्ण परीक्षा को कवर करने वाले 4 मॉड्यूल हैं। दिल्ली में कल यमुना स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर 500 से अधिक गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी और सामाजिक संगठन राजधानी के यमुना घाटों की सफाई करेंगे। यह आयोजन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगा। दिल्ली के जल और सिंचाई मंत्री परवेश साहब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने यमुना के घाटों और तटों को स्वच्छ रखने में जनता से भी सहयोग की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% छूट की घोषणा की है। परिषद ने बताया है कि यह छूट उन करदाताओं को प्रदान की जाएगी जो अपने संपत्ति कर का भुगतान 30 जून या उससे पहले कर देंगे। NDMC ने अपने क्षेत्र के सभी संपत्ति धारकों से इस लाभकारी योजना का लाभ उठाते हुए समय पर संपत्ति कर का भुगतान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि NDMC क्षेत्र के करदाता परिषद के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल अथवा परिषद द्वारा अधिसूचित अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों के जरिए भी अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज ने लगभग 4 दशकों के अपने विशिष्ट सैन्य करियर में सेना की युद्ध

0: क्षमता और दीर्घकालिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आई में स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार।
0: दक्षिण दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के सरकारी आवास पर आज टीबी यानी तपेदिक जांच अभियान चलाया गया। इस अवसर पर श्री बिधूड़ी ने लोगों से नियमित रूप से टीबी की जांच कराते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के लक्षणों के प्रति अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि टीबी का समय पर पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत जिला और यातायात पुलिस की सड़कों पर मौजूदगी बढ़ेगी। पुलिस आयुक्त ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को संयुक्त पैदल गश्त के निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दफ्तर के काम और आंतरिक बैठकों से बचने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिला और यातायात पुलिस की टीमें सप्ताह में 4 दिन संयुक्त रूप से गश्त करेंगी, ताकि सड़क अवरोधों को हटाया जा सके और यातायात जाम की समस्या का समाधान हो सके। केंद्र सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय का लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा शाम के दौरान गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के चलते ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम पड़ा है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने दीप विहार क्षेत्र में 20 करोड़ रूपये की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% छूट की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
4: 22 सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: हाँ जी, कैसे हालचाल? आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ पर जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है। और दोस्तों, आज तो मैं भी एक शायर बन के आ गया हूँ। माना कि मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अंदर की जो बातें हैं ना, जो अंदर की फीलिंग्स है, वो निकल जानी चाहिए और अच्छा होता है यार। और आज हमारे साथ में जो शख्स हैं, जो जनाब हैं, वो भी बस इसी के सरताज बनने वाले हैं हमारे स्टूडियो में। आज बहुत सारी बातचीत होगी आपके साथ, आपकी शाम को थोड़ा सा और खूबसूरती के साथ जो है हम ब्यूटीफुल बनाएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, वहीं शुरू होती है हमारी महफिल, दिलों की बात दिलों के साथ। आपका अपना रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद, जहां पर आज प्यार, मोहब्बत, इश्क और न जाने कौन कौन सी बातें होने वाली है।

0: लेकिन जो भी बातें होंगी वो सिर्फ आपके काम की होंगी और आपसे रिलेटेड होंगी, यानी कि आपको इंटरटेनमेंट का डोज भी देंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और अभी मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है अब उन्हें नहीं करने देंगे आराम, उनसे बातचीत करना है यार, यही तो हमारा काम है। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन में आपका।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू आनंद जी।
0: जी, हालांकि इनकी आवाज आपने पहले भी सुनी है, लेकिन ये अभी काफी सीरियस होके बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सर मतलब लंच वंच खा पी के आए हो ना आप स्टूडियो में हमारे?
1: नहीं नहीं बिल्कुल सही है, जरा एक शुरुआत होती है तो उससे फिर आगे बढ़ना होता है, तो वही मैं उस इंजन को स्टार्ट करने के।
0: बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप इंजन स्टार्ट कीजिए, हमने तो पूरी गाड़ी स्टार्ट कर दी है सर। वेल आगे बढ़ते हैं सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए जरा आपने आपको।
1: जी, मेरा परिचय क्या है कि मैं आप ही के बीच का हूँ।
0: बिल्कुल सर।
1: मेरा नाम मनोज मनु है
0: जी,
1: और शायरी और कविताओं से मुझे निस्बत है।
0: क्या
1: मैं
0: बात है?
1: अपने परिचय के बारे में चार मिसरे ही क्यों ना रखूं?
0: बिल्कुल इरशाद जनाब, मजा आ जाएगा फिर तो। आए हाय,
1: कहता हूँ कि अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है।
0: अरे वाह।
1: अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है, कौन है कैसा खबर है मुझको, सब होशियारी मुझ में है।
0: क्या बात है।
1: पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझ में है। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझ में है।
0: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। तो मनु जी एक बात, मैं आपको मनु जी बोल सकता हूँ ना सर?
1: क्या बात है मेरा
0: सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी आवाज में बेस इतना अच्छा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना बढ़िया आप डिलीवर कर रहे हैं अपना, लेकिन ये जो आपने अभी अपने आप को भी इन शब्दों में पिरो दिया मुरादाबाद और फिर अपने आप को भी कनेक्ट कर दिया, तो ये खूबसूरती कहाँ से आती है मुरादाबाद के कलाकारों में? अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूँ सबका कुछ ना कुछ रहा है मुरादाबाद की चीजों से रिलेटेड, अपने आप को भी उसमें शामिल कर देना, ये मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग जब लिखते हो तो उसके अंदर खुद को फील करते हो?
1: आपने सुना होगा कि अल्लाह अगर तौफीक ना दे इंसान के बस की बात नहीं।
0: एग्जैक्टली,
1: तो ये बस प्रभु का आशीर्वाद है।
0: क्या बात है,
1: जिसने जो शब्द अता किए हैं उनके माध्यम से जो जहन में आता जाता है, उतरता जाता है, वही कहा जाता है। कहते हैं ना कि शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है, पढ़ा जाता है,
0: पढ़ा जाता है, फील किया जाता है।
1: जी जी, तो बस वही जो वो दे देता है वही हम ले लेते हैं।
0: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया सर, और ऐसी खूबसूरत बातें जो है आज सुनते रहेंगे आप इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आपके शाम को खूबसूरत बना रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज वर्मा मनु जी, और आज आपकी शाम को स्पेशल बनाने के लिए कुछ तो अपनी डायरी में चिट्ठा लेकर आए हैं, पूरा एकदम भारी भरकम तैयारी के साथ आए हैं। तो सर शुरुआत कैसे होने वाली है, क्या है जो आप हमारे श्रोताओं को आज की शाम सुनाएंगे? लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं मैं, मतलब बता दूं आपको गाइज, जैसे मनु जी हमारे स्टूडियो में आए तो उन्होंने बोला कि आनंद जी अपनी रफ्तार थोड़ी कम रखिएगा, तो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई ऐसे में कौन सी एक्सप्रेस में सवार होता हूं जो सर ने मेरे को ये पहले से अलर्ट भेज दिया। ऐसा क्यों बोला सर आपने? माना कि आपका फ्लो वो अपना शायर वाला चलेगा, बट मेरा तो वो जॉकी वाला ही रहेगा ना सर।
1: जी, एक शेर कहा जाता है,
0: हर बार
1: बर्क रो था, वो बर्क रो था, कहाँ रह गया जाने पीछे, अब इंतजार करेंगे सकिश्ता पा उसका।
0: हाँ, अरे वाह,
1: सकिश्ता पा यानी कि जो धीरे धीरे कदमों से चलने वाले हैं, वो इंतजार करते रह जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोफेशन है और आप जुड़े हुए हैं, शहर मुरादाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत जो उसकी स्पीड है आपकी वो स्पीड काबिले तारीफ है, लेकिन ये जो शायरी है ये हसास का विषय है,
0: इसमें ठहराव
1: हसासों का विषय है,
0: और
1: इसमें ठहराव की बहुत जरूरत है, बस इसीलिए मैंने आपसे दर्ज की थी
0: कि नहीं तो मैंने वो पब्लिकली रख दी ना सर, देखिए इतनी अच्छी बात है, ताकि वो चीज हमें पता तो चले और हमारी ऑडियंस को भी पता चले।
1: नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, जब हम पब्लिक के सामने होते हैं तो हमारा अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ पब्लिक के लिए होता है,
0: क्या ही होता है, और उसी के लिए होता है।
1: बेशक इसमें कोई जरा सा भी गुंजाइश नहीं कहने की, मुरादाबाद की और आपके एफएम की जो जनता है, जो श्रोता है, वो निहायत खास हैं, कोई आम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं रेडियो एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बोला, और आप भी काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लग रहा है आरजे बन जाएंगे आप भी अगर ऐसी प्रैक्टिस चलती रही तो। खैर आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मनु जी आपसे बातचीत करके, और वैसे तो कई मर्तबा मेरी इनसे मुलाकात होती रहती है आते जाते रोड के किनारे, सड़क के किनारे हम लोग गुफ्तगू करने लग जाते हैं जब भी मिलते हैं, लेकिन आज जो ये इंट्रैक्शन हो रहा है ना सर, मेरा आपका पहली बार हो रहा है शायद ये कॉन्वर्सेशन ना?
1: जी जी, ये पहली बार ही है जो मैं हिम्मत समेट के आपके सामने हूँ।
0: अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, हमेशा इतना अच्छा करते हैं, मैं इवन आपके स्टेटस भी देखता रहता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, आप कनेक्टेड है मेरे साथ, तो जब भी कोई ओकेजन होता है सर का हम देखते रहते हैं, मान सम्मान और आपकी जो चीजें आप करते हैं मतलब बढ़िया है। और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास कलाकारी है, अगर वो पहचान के उसमें कुछ अच्छा करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है।
1: सही कहा आनंद जी, ये बिल्कुल आपकी निस्बत है, आपकी मोहब्बत है जो मुझे इतनी आपने सम्मान प्रदान किया है। मैं फिर अपनी दो लाइनें रहूं?
0: जरूर सर,
1: यही शेर में दो लाइनें दो मिसरे होते हैं जो आपके साथ साथ हमारे जो सामाईन जो श्रोतागण हैं
0: जी जी
1: उनके लिए भी है कि मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं।
0: वाह।
1: मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं, उसकी बख्शी हुई नेमत है मेरा कुछ भी नहीं। और चंद मिसरों को जो तरजीह अता करता है, ये तेरा हुस्ने समात है मेरा कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है,
1: ये तेरा हुस्ने समात है मेरा
0: गजब
1: कुछ भी नहीं।
0: गजब। मुझे लग रहा है कि दोस्तों कल सुबह अगर मैंने उर्दू के कुछ भी शब्द नए बोले तो उसमें सारा योगदान मनु जी का होगा। आज पूरी उर्दू सिखा के जाने वाले हैं, मतलब क्या इनके शब्द है, मतलब तलफ्फुज देख रहे हैं आप इनका कितना गजब का है सर। मतलब
1: शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करते हुए सर।
1: ये कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे लिए,
0: एब्सोल्युटली सर, आप डिजर्व करते हैं। और गाइस हम जो है आपकी शाम को ऐसे ही रॉकिंग बनाते रहेंगे, काम करते हैं, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो सर से कुछ बेहतरीन सा सुनेंगे जो आपकी शाम को और भी बेहतर से बेहतरीन बना देगा। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैंने कहा जी आपका खैर मकदम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आज मैं भी थोड़ा उर्दू में, थोड़ा शायराना अंदाज में मैं भी कुछ ना कुछ कहता रहूंगा। जब इतने खास लोग सामने बैठे हों शानदार प्रस्तुति के साथ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो मनु जी वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। और मैं चाहूंगा कि कुछ बढ़िया से अपने अल्फाजों में कुछ बढ़िया से हमारे लिसनर्स को सुना दें आप।
1: शुक्रिया आनंद जी, मैं फिर रखता हूँ दो मिसरे
0: जी।
1: तमाशा बन के रह जाए मरासिम,
0: वाह,
1: मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना। तमाशा बन के रह जाए मरासिम, मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना।
0: क्या बात,
1: उसी की जी हुजूरी मार देगी, मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे भी कुछ लिखते हैं सर, या यहीं पे ये लाइन जो है एंड हो जाती है?
1: जी लाइनें तो हैं, लेकिन जो मौजू है वो चीज सामने आती है।
0: क्या बात है, लेकिन सर एक बात तो है कि कहीं ना कहीं जो प्यार करने का तरीका होता है, जब आप शेर व शायरी के साथ आते हो तो उसका मजा डबल हो जाता है। आप लोगों तक वो बात पहुंचा देते हो जो एक्चुअली आप जानते हो, और जो सुन रहा होता है ना, जो उसको फील करता है, तो वो समझ पाता है। क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना, वो दिल से दिल तक का होता है। और ये बात जो आप अपने अल्फाज के थ्रू कह रहे हैं हमारे लिसनर्स से, जो अपनी शायरियों के थ्रू रख रहे हैं, ये ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे जो दिल से इस चीज को फील करते हो या इससे जुड़े हो कहीं ना कहीं।
1: नहीं, मैं समझता हूँ कि शायरी का जो अपना मकाम है, जो उसकी सफलता है
0: जी जी,
1: वो भी यही है कि जो मन कह रहा है वो मन सुने सामने वाला।
0: वही वही, बिल्कुल सही कहा,
1: कनेक्ट करता है। तो ये शायरी वास्तव में अपनी सार्थकता महसूस कराती है।
0: गॉट इट, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आजकल के प्यार के बारे में कुछ है आपके पास, कुछ इंटरेस्टिंग? आजकल का जो सोशल मीडिया वाला जमाना है, सोशल मीडिया वाला प्यार है, जहाँ एक घंटे के अंदर प्यार हो जाता है, वहीं दूसरे घंटे में लोग ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर कोई नया मिल जाता है। तो इस आजकल का जो जमाना चल रहा है, मैं अगर उसकी बात करूँ तो उस पर कुछ अगर आप रखना चाहें।
1: देखिए, चीज तो होती है, दरअसल क्या है, बाकी की चीजें मौका ही नहीं देती। जिंदगी इतनी तेज भाग रही है मौजूदा हालात में
0: 100%
1: कि उसे आप कुछ भी नहीं कह सकते, रोक नहीं सकते। जहां रुकते हैं तो दुनिया आगे निकल जाती है। लेकिन आप इस बारे में ये नहीं कह सकते कि जो कली, जो जो जो एक पौधा, उसके जो बीज मोहब्बत का उस दिल में फूटा था, वो दबके रह गया। हो सकता है वो खत्म हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। उनके लिए मैं दो लाइनें बताता हूँ आपको।
0: प्लीज, श्योर।
1: ये किसी शय का किसी तौर भी बदल न हुई, ये किसी शय का किसी तौर भी बदल न हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल न हुई।
0: क्या बात है,
1: ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है
0: जी।
1: तो जो सच्चाई है वो हमेशा सच्चाई रहती है, बस यही सच्चाई का एक सार्थक गुण है। ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल ना हुई। हमने माना कि तेरा साथ नहीं किस्मत में, मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: क्या बात है,
1: मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, कहते हैं कि सच्चा प्यार वही होता है जो मुकम्मल नहीं होता है, इसमें कितनी सच्चाई है कि सच्चा इश्क वही होता है जो आपको ना मिले? ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते मैंने सुना है। इवन मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल एकदम सच्चा वाला प्यार करते हैं, एकदम सत्यवान टाइप वाला, बट उनको वो जब नहीं मिलता तो वो कहते हैं सच्चा प्यार तो वही है जो नसीब ना हो। क्या सच में इसमें, इस बात में सच्चाई है? वैसे आप लोग इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं?
1: सच्चाई क्या है? सच्चाई दरअसल ये है कि जब तक, जैसे मैं एक आपको फिर वही शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा
0: जी, प्लीज।
1: हमारे एक उस्ताद शायर ने कहा है
0: जी जी,
1: आ तमन्ना तुझको रोलू वक्त वसल।
0: क्या बात,
1: वसल यानी कि मिलन का जो समय होता है
0: जी जी।
1: आ तमन्ना तुझको रोलू वक्त वसल, आज तू दिल से निकाली जाएगी। यानी कि जो चीजें पूरी हो जाती हैं फिर वो खत्म हो जाती हैं। और जैसे हमारे गालिब चचा ने भी कहा है कि वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर का पार होता।
0: क्या बात,
1: तो जाहिर सी बात है कि जो उस तीर की खलिश है, दर्द है, वो जब तक गड़ा रहता है तब तक मुकम्मल रहती है, लगातार रहती है। यही अधूरी मोहब्बत का सिलसिला भी है, वो पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं लगातार वो अपनी टीस बनाए रखती है, और जो पूरी हो जाती है वो अपना दम तोड़ देती है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसी तमाम जानकारियां जो आज हम सर से निकलवाते रहेंगे और तमाम ऐसे उनके दिल की फीलिंग्स कह सकते हैं जो आज वो हमारे साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट्स, अपनी बातें, अपनी शायरी, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर आज की शाम हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद लौट कर आएंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। मेरा नाम आनंद है।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन जिसमें आज हमारे साथ मनु जी मौजूद हैं। ढेर सारी आपको शेर व शायरी के साथ एक कह सकते हैं फ्लो बना रहे हैं आपका और मेरा एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी शाम को खूबसूरत बना रहे हैं। नए नए शब्दों से हमें रूबरू करा रहे हैं। ढेर सारी बातें उनके साथ चल भी रही हैं और उनकी अंदर की जो कलाकारी है वो भी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से।
1: शुक्रिया। थैंक
0: यू जी। मनु जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, और मतलब पूछना क्या, साफ शब्दों में कहूँ तो सुनना चाह रहा हूँ। शेर व शायरी और ये जो कविताएं हैं जो आप रचनाएं वो तो आप करते ही रहते हैं, इवन आप गीत भी बढ़िया गाते हैं, मैंने आपके सुने हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी आप अच्छा करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ वही नज्म की, क्योंकि शेर व शायरी से हटके कुछ अलग चीज लगती है मुझे नज्म, है ना? तो कुछ अगर आप नज्म पे चर्चा कर लें, कुछ बढ़िया सी सुना दें तो हमारे सुनने वाले श्रोताओं को डबल मजा आ जाएगा।
1: क्या बात है। वास्तव में नज्म अपने आप में एक मुकम्मल चीज़ है।
0: Absolutely.
1: और शायरी में जहाँ गज़लें अपने मुख्तलिफ शेर अलग अलग शेरों में अलग अलग बात कहती हुई चली जाती है, वो कहीं भी हो सकती है। नज्म की खासियत यह है कि ये जब उतरती है तो पहले अक्षर से शुरू होकर अपनी बात मुकम्मल करने तक उतरती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक मेरी एक पसंदीदा नज्म है
0: जी,
1: जिसका अनुवाद मैंने हसरत रखा हुआ है।
0: अरे वाह।
1: मैं आपको और दर्शकों के बीच में रखता हूँ।
0: पक्का पक्का, श्योर।
1: हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे।
0: क्या बात है।
1: ये देखिए एहसास किस तरह से पिरोते हैं एक नज्म के साथ, कैसे बहती है एक
0: फ्लो
1: नज्म है, जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है। हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे, कल मुकद्दर में ना हो मैं न रहूं, दिल के जज्बे जुबा से कहने दे। हाँ तेरी आस में जाने कितने, मैंने लम्हों को जिया सदियों सा, फासला तेरे दरमिया मेरा, फासला जैसे रहा सदियों सा, फासला तेरे दरमिया मेरा, फासला जैसे रहा सदियों सा, कतरा कतरा जो निचोड़ा खुद को, तो यह एहसास बयां कर पाया, देख ले तू जो तेरा जी चाहे, जिंदगी का ये मेरी सरमाया, शर्त वैसे ये नहीं होती, जो तुझे चाहे तू उसे चाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे। मैं जो इस दर्जा चाहता हूँ तुझे, इसके इजहार में हो सकता है, ये जो एहसास रिफाकत है मेरा, आखिरी आस भी खो सकता है, पर ये उम्मीद के साए भी तो उलझने जीस्त की बढ़ाते हैं, जो महल चुनते हैं रेजा रेजा, और फिर आप ही गिराते हैं, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, मुतमईन हो ले जो भी होना है, दिल के मिटने को या मोहब्बत को, हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे। तो देखा आपने कि ये रवानी
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप जो है शब्दों को पिरो रहे थे, और मतलब मैं तो कश्मकश में था कि सर ये मतलब कहाँ क्या क्या फ्लो बना रहे हैं, कहाँ मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, और इतनी बढ़िया आपने जो है शुरुआत करी नज्म की, और कहाँ से कहाँ आप ले गए, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, मतलब वो शब्द वाला सीन वही था, मतलब मजा आ गया। मैं पूरी गहराइयों के साथ,
1: आनंद जी होता यही है कि जो नज्म है वो उतरती है उसका
0: सच में,
1: उसका जो लुत्फ है वो यही लुत्फ है,
0: कसम से
1: बहुत अच्छा लगा मुझे। आखिरी मिसरे को जाकर ये मुकम्मल कर दे।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन।
1: तो मैंने आपके बीच रखी और आपको और श्रोताओं को मुझे यकीन है
0: पसंद आई होगी। बहुत मजेदार लग रही है, और आपके जो शब्द हैं, आपके जो अल्फाज हैं बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। नो डाउट आप इतना अच्छा बोल रहे हैं। और सर देखिए बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
1: जी प्रोफेशनली मैं ज्वेलर्स परिवार से ताल्लुक रखता हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: और बेसिकली मैं रामपुर जनपद के टांडा का निवासी हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: पिछले 2011 से हम लोग यहाँ पर मुरादाबाद शिफ्ट हुए हैं, पीतल नगरी।
0: अरे वाह।
1: और सही कहूँ तो जो मेरी साहित्यिक शुरुआत, साहित्यिक जन्म हुआ वो 2006 से मुरादाबाद से ही प्रारंभ हुआ। दादा महेश्वर तिवारी जी जैसी अजीम नवगीत की जो हस्ताक्षर,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: उनके बीच उनसे मिलना जो हमारे सौभाग्य की बात थी।
0: अरे वाह
1: जी। कृष्ण कुमार नाथ साहब, आदरणीय योगेंद्र वर्मा व्योम जी, मंसूर उस्मानी साहब, इन सब से जब मिलना हुआ, इनको सुनना हुआ, तो इनको सुनते सुनते धीरे धीरे वहीं से वो अनवरत यात्रा शुरू हुई है। तो वर्तमान में मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा।
1: और जेंडर्स का तो हमारा वर्क है तो वो चलता रहता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही वर्मा नाम दिमाग में आता है वो ज्वेलर्स तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, नो डाउट। वेल खैर कह सकते हैं कि एक अपना घर का,
1: वही
0: मतलब एक होता है ना कि आप शुरू से आप चलता आ रहा है।
1: जी जी, हमारा दादा लाई जो कारोबार है वो यही है।
0: वो यही है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर, और ऐसी खूबसूरत बातें और खूबसूरत जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आरजे आनंद के साथ हैं आप।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: पति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
7: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
8: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
7: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: पंक्तियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज

0: पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चावला टायर्स,
1: बड़ियों को हमारे टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।
5: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
2: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
8: और हूं आपकी दोस्त प्राची।
2: मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद। आप सभी का बहुत स्वागत है।
8: दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गांव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
8: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
2: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
9: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देशी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गाँव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया, इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख आ देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात की कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है।
1: बहुत कुछ, सुनिए। छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गांव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम दोनों की तरफ से नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्द ही मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल के संग। आज हम बात करेंगे आपकी फरमाइश की, आपके दिल से निकली हुई उस आवाज़ की भी, और शेयर करेंगे सभी के साथ और आपके और अपने साथ भी। और आज हम साथ के साथ एक बॉलीवुड हस्ती श्री ऋषि कपूर की भी के बारे में भी हम बात करेंगे। और कहते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ फिल्में नहीं करते, वो हमारी यादों का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो आज के शो में हम सुप्रसिद्ध ऋषि कपूर जी की बात करेंगे और उनके सदाबहार रोमांटिक हीरो होने का, जिनकी मुस्कान और अदाकारी आज भी दिलों में जिंदा है। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और बाद में बॉबी, कर्ज, चांदनी, प्रेम रोग जैसी फिल्मों से रोमांस की नई परिभाषा दी। इस अंदाज को थोड़ा सा शायरी में भी बयां करेंगे। कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधले हो जाते हैं, कुछ नाम इतिहास में खो जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो दिल में बसकर हमेशा याद आते हैं। तो अभी अगर आप बैठे हैं गाड़ी में और चला रहे हैं ट्रैफिक के बीच, तो उठाइए मोबाइल और कॉल करें 9837896896। और अगर आपके अंदर की छुपी हुई कोई भी शायरी, कोई भी बात अपने दिल से निकली हुई हमारे दिल तक पहुंचाएं और जुड़े रहें हमारे FM मुरादाबाद 89.6 से। तो लेते हैं छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक और शुरुआत करते हैं इस गाने से। मैं शायर तो नहीं।

मैं शायर तो नहीं, सिंगर का नाम है शैलेंद्र सिंह जी और मूवी का नाम है बॉबी। म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लिरिक्स लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने। ऋषि कपूर का ये वो गाना जो हर कोई गुनगुनाता रहता है, जो ऋषि कपूर साहब पे फिल्माया गया, और किस तरीके से इसकी जो लिरिक्स हैं वो आज भी अगर पहली लाइन गाओ तो आगे की लाइनें अपने आप हमें रिमेम्बर हो जाती हैं, याद आ जाती हैं। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी। 1973 में आई बॉबी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था और लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन बना दिया था। अभी मेरे पास एक मैसेज भी आया है हमारे एक लिसनर का। वो कहते हैं, अखिल भाई, मेरी और मेरी पत्नी का की पहली डेट पर हमने बॉबी देखी थी। क्या बात है साहब, तो मतलब आपकी पहली डेट 1973 के अराउंड हुई थी, तो अलग ही एक चल रहा होगा ज़माना, वो तो उस समय अलग ही एक माहौल चल रहा होगा। तो बहुत बढ़िया है आपने उस समय देखी, और ये उस समय का जादू था ऋषि कपूर साहब का। एक शायरी मैं कहना चाहूँगा इसी बात में, मुझे भी एक शायरी याद आई अभी। मोहब्बत की किताब में उनका नाम लिखा है, मोहब्बत की किताब में उनका नाम लिखा है, हर रोमांटिक गीत में उनका एहसास लिखा है। वो चले गए मगर यादों में आज भी हैं, हर धड़कन पर ऋषि कपूर का अंदाज लिखा है। तो ऐसे थे हमारे ऋषि कपूर साहब। चलिए सुनते हैं उनका एक और बढ़िया सा गाना जिसमें वो थे और बहुत ही उम्दा। उसमें कहते हैं ना कि जब भी वो आप वो गाना सुनेंगे तो आप भी कहेंगे अरे ये गाना है, ऐसा है वो गाना।

तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया जी पे फिल्माया गया ये गाना, बॉबी मूवी का सबसे ही फेमस, बहुत फेमस, अपने समय में सुपरहिट सॉन्ग कहलाने वाला ये गाना। और आज भी अगर ये गाना आ जाता है तो कहते हैं ना, अपने आप ही इंसान गुनगुनाने लगता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक हमारे लिसनर, जो आज इस दिल से दिल तक की बातों में हमारे साथ रहेंगे। चलिए बात करते हैं उनसे कुछ। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, आपके पीछे था, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है FM की, तो उसे हल्की सी आवाज़ को कम कर लीजिए। अपना आप अपने हमारे सभी श्रोताओं को बताइए आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं इस समय। क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं, ये यही बात दिल से दिल तक पहुंचानी है हमें, आपके दिल की बात भी हमारे पास तक पहुंचनी चाहिए। जरूर जरूर, ओ मेरी चांदनी, चांदनी और मेरी चांदनी, तो जरूर ये गाना प्ले करते हैं। कुछ कहना भी चाहेंगे, कोई शायरी या कुछ फरमाना चाहेंगे? ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत राजेंद्र जी, आपने इस तरीके से हमें बोल के हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे राजेंद्र जी, जिन्हें ऋषि कपूर के गाने सुनते ही उन्हें भी उनका एक फेवरेट सॉन्ग याद आ गया, जिसमें ऋषि कपूर साहब हैं, वो मेरी चांदनी, ये भी अभी सुनते हैं। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि ऋषि कपूर जी ने बचपन में भी मेरा नाम जोकर में भी अभिनय किया था, और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। बाद में उन्होंने कई दशकों तक बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाई। हमारे पास एक लिसनर का मैसेज भी आया है कि सर, आदित्य बोल रहे हैं हिमगिरी से, हिमगिरी से आदित्य सर का ये मैसेज आया है कि सर, मेरे पापा आज भी कर्ज फिल्म के गाने सुनते हैं। क्या बात है, इन पुराने गानों का ना कुछ क्रेज़ी अलग है। आज भी हम, मेरे पापा, आप सभी के पापा, जितने भी हमारे सब पुराने लोग हैं, आज भी ये जब गाने सुनते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं, हमें भी लगता है कि यार ये इन गानों की अलग ही जान है, और ये गाने हम आज के दौर में भी गुनगुनाने लगते हैं। यादों का मौसम जब भी आता है, कोई पुराना गीत गुनगुनाता है, और उन गीतों के साथ अक्सर एक चेहरा मुस्कुराता नज़र आता है। तो चलिए सुनते हैं ऋषि कपूर जी का एक और गाना, उनके ऊपर फिल्माया गया, ओ चांदनी।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक ही के। प्यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते हो? फिर किस बात से डरते हो?

इसमें जो सिंगर हैं जॉली मुखर्जी, उनके साथ ये गाना किसने गाया है डुएट में, जो श्रीदेवी जी पे फिल्माया गया, वो गाना खुद श्रीदेवी जी ने गाया है। तो कुछ बातें, कुछ टैलेंट कहते हैं ना कि ये गॉड गिफ्टेड होता है, तो वो था ऐसा टैलेंट श्रीदेवी जी के अंदर भी। और समय के साथ कलाकार बदल जाते हैं, लेकिन महान कलाकार हर दौर में खुद को साबित करते हैं। ऋषि कपूर जी ने रोमांटिक हीरो से लेकर दमदार चरित्र भूमिकाओं तक हर किरदार को यादगार बनाया, चाहे उनकी कपूर एंड सन्स हो, अग्निपथ हो, जैसी फिल्मों का उनका अलग ही अंदाज उसमें देखने को मिला। किरदार बदलते रहे, दौर बदलते रहे, पर किस्मत पर उनकी अदाकारी के रंग नहीं बदले। किरदार बदलते रहे, दौर बदलते रहे, पर उनकी अदाकारी के रंग नहीं बदले। जो दिलों में उतर जाए एक बार, उसके लिए मौसम नहीं बदले। तो ऐसे थे ऋषि कपूर साहब कि जिनकी अदाकारी के लिए दूर दूर तक उनकी चर्चाएं होती थी। और कुछ चर्चाएं तो ऐसी थी कि एक समय की बात है कि उन्हें दुबई से भी कॉल आई अंडरवर्ल्ड डॉन की। उन्होंने खुद उन्हें बुलाया, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है ऋषि कपूर साहब ने कि कैसे कैसे उनका क्या इंट्रक्शन था। तो ऐसी थी वो हस्ती जो हर किसी के लिए, चाहे वो नेता हो चाहे वो किसी भी पद में हो, वो उनका फैन हुआ करता था। तो चलिए सुनते हैं उनका एक और गाना, और इतना फेमस गाना कि आप खुद कहेंगे कि आज ये गाना हम भी गाएंगे साथ में।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
2: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: TNC अप्लाई।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे ओम शांति ओम, ऋषि कपूर जी का एक और बहुत बढ़िया प्यारा सा सॉन्ग, जिसका फिल्मांकन तो बहुत अच्छा है, साथ में बोल भी बहुत अच्छे रहे। चलिए जुड़ते हैं हम अपने एक नए प्रश्न से ऋषि कपूर जी के और सुनते हैं उनसे दिल से दिल की बात। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप सर?
7: बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हैं?
6: बढ़िया सर, बढ़िया। अपना नाम बताइए और बताइए मुरादाबाद में कहाँ से बोल रहे हैं आप?
7: मैं राजेंद्र ही बोल रहा हूँ। मेरे को आपके गाने सुनना बहुत पसंद लगता है और मैंने अभी आपसे गाना वो सुना था, नहीं रहा गया, फिर इसी को पूछ के आप गाने बजा रहे हैं और बहुत अच्छे गाने होते हैं, बहुत अच्छी फिल्म होती है, बहुत अच्छा लगता है आपने।
6: तो राजेंद्र जी, कोई बात? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी।
7: चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ।
6: सरिये साहब, हाथ मत जोड़िए, मगर हम जरूर इस गाने को प्ले करेंगे। कुछ तो बोलिए, कुछ आ जाए इंद्र जी, कोई अपनी कोई शायरी, कोई ऐसी कोई ऋषि कपूर जी की कोई याद, या कोई ऐसी फिल्म जिसकी डायलॉग आपको याद हो ऋषि कपूर जी के।
7: तो यादें हमेशा दिल में रहती है, कोई फिल्म ऐसी ना है ऋषि कपूर जी की जो बढ़िया ना हो, ना हमने देखी ना हो। एक कल फिल्म है, कल फिल्म का भी बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छी फिल्म थी, और ये नसीब पिक्चर इसका गाना सुनना चाह रहे हैं।
6: चलिए राजेंद्र जी, चलाते हैं इस फिल्म इसका गाना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जुड़े और हमें कॉल करके आपने अपनी बात बताई।
7: प्रोग्राम आपने स्टार्ट कर रखा है, दिल से दिल तक के लिए बहुत अच्छे गाने सुनाते हैं, फरमाइश पूरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
6: धन्यवाद राजेंद्र जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे राजेंद्र जी, जिनके दिल से आवाज निकली, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये गाना भी सुनते हैं। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि शाहरुख खान जी ने जब फिल्म दीवाना में शुरुआत की थी, तब उन्होंने बताया था कि ऋषि कपूर जी ने उनके शुरुआती दिनों में कितनी उनको प्रेरणा दी है, कितनी उनकी मदद भी की है। तो एक महानता होती है, यही महानता होती है जो खुद चमके और दूसरों को भी चमकने दे। एक हमारे और लिसनर हैं जिन्होंने अभी मैसेज किया, उनका नाम है निखिल। क्या बात है, निखिल कहते हैं, अरे अखिल भाई, आज के शो ने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं, और ऋषि कपूर की जो मूवी थी अग्निपथ, जो अभी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन भी थे, तो वो मूवी मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी में रही है। हाँ, तो निखिल जी, वो मेरी मूवी, मुझे भी वो मूवी बहुत अच्छी लगी थी जिसमें अग्निपथ में जिन्होंने ऋषि कपूर जी ने बहुत बढ़िया रोल किया था, बहुत ही जानदार वाला रोल किया था। एक शायरी उन्होंने भी लिखी है, सितारों की चमक ख़त्म हो जाती है, फूलों की महक बिखर जाती है, मगर सच्चे कलाकार की पहचान कभी वक्त से हार नहीं सकती। क्या बात कही निखिल भाई आपने, ये शायरी भी बहुत अच्छी लिखी है। धन्यवाद निखिल भाई आपसे इतना बढ़िया और इतना प्यारा मैसेज करने के लिए। चलिए राजेंद्र जी की दिल से निकली हुई आवाज़, चल चल मेरे भाई को सुनते हैं, जो ऋषि कपूर जी और अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया है। और आप भी हमसे जुड़ने के लिए 9837896896 पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप गाड़ी में हैं और आप उसके बाद भी हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, हमारे FM पे अपने से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पे, प्ले स्टोर में जाके मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ को आप लिखें, टाइप करेंगे तो आपके पास एक रेड कलर का लोगो आ जाएगा, उसे डाउनलोड करें और आप हमसे कनेक्ट भी रहें।

चल चल मेरे भाई, मूवी का नाम है नसीब और गाना गाया है मोहम्मद रफ़ी और अमिताभ बच्चन जी, ऋषि कपूर, मतलब अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की जो आप ये डायलॉग सुन रहे हैं और गाने सुन रहे हैं, उन्होंने खुद ही इसको फिल्माया भी है और गाया भी है इस पर, और लिरिक्स लिखी थी आनंद बख्शी साहब ने और म्यूज़िक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो ऐसा भाई तो यार मिलना चाहिए जो बड़े भाई से कहता रहे चल भाई अब तो घर चल बहुत हो गया। तो दोस्तों आज हमने याद किया उस कलाकार को जिसने लगभग 5 दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपनी अदाकारी से सजाया, और जाते जाते मैं एक आखिरी शायरी ज़रूर कहना चाहूँगा। कुछ लोग जाते नहीं बस नज़रों से ओझल हो जाते हैं, उनकी बातें उनकी मुस्कान यादों में बस जाती है, फिल्में ख़त्म हो जाती हैं पर्दे गिर जाते हैं, मगर कुछ कलाकार हमेशा दिल में रह जाते हैं। तो ऐसे ही थे कलाकार ऋषि कपूर साहब जो हमेशा हमारे दिल में हैं और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग। अपनों से प्यार कीजिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को दिल से जीते रहिए। एक चलते चलते एक गाना जो ऋषि कपूर साहब के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा, और अपनी तरफ से भी और आप सभी लोगों की तरफ से भी, ये गाना ऋषि कपूर साहब के लिए। और आपसे फिर मुलाकात होगी अब सोमवार को ठीक रात में 9 बजे 9837896896 पर आप कॉल करके या मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, दिल से दिल तक अखिल संग।

0: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 2200 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
0: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
2: अपोजिट
0: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
2: TNC अप्लाई।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।

0: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।